सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 100.5 FM पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आज दिन है रविवार, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई 2026। शुरू होती है हमारी आज की सभा। हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: And also infrastructure development that has happened.
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूर इज्जुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसानी। और आज इस कार्यक्रम में हम जानकारी लेंगे कृषि यंत्र के बारे में। जानकारी दे रही हैं अनीता तिर्की।
1: ट्रैक्टर जिसके सहारे विभिन्न कृषि यंत्रों का उपयोग कर कम खर्च और कम समय में अधिक से अधिक पैदावार लिया जा सकता है। यदि ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों का रख रखाव ठीक ढंग से किया जाए तो यंत्रों की मरम्मत खर्च कम लगता है और पूरी क्षमता के साथ 10 साल तक वो सेवा प्रदान कर सकता है। खासकर ट्रैक्टर में 25% तक डीजल की बचत होती है। ट्रैक्टर और अन्य जो कृषि यंत्र हैं उसके देखभाल के कुछ तरीके हैं। जैसे कृषि यंत्रों के देखभाल के लिए समय के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्रों का रोजाना देखभाल, साप्ताहिक देखभाल और लंबे अरसे तक ना प्रयोग होने पर देखभाल। ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों के इंजन ऑयल को डिपस्टिक द्वारा चेक करना है। आवश्यकता होने पर साफ तथा ठीक ग्रेड का तेल सही चिन्ह तक भरना है। फ्यूल टैंक में डीजल की मात्रा को चेक करना है। दिन भर काम करने के बाद शाम को डीजल पूरा करना बेहतर रहता है। रेडिएटर में पानी की मात्रा चेक करते रहना है और कम होने पर साफ पानी डालना है। एयर क्लीनर में तेल की हालत और मात्रा को चेक करना है। तेल गंदा हो तो बदल दे। ठीक ग्रेड का तेल सही चिन्ह तक भरें। बैटरी टर्मिनल चेक करें। बैटरी में पानी की मात्रा चेक करें। बैटरी के प्लेटों से पानी 3 मिलीमीटर ऊपर होना चाहिए। बैटरी में हमेशा डिस्टिल पानी का ही प्रयोग करें। सभी टायर में हवा चेक करें। आमतौर पर ट्रैक्टर के अगले पहियों में 28 पाउंड प्रति वर्ग इंच तथा पिछले पहियों में 12 से 16 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव होना चाहिए। सभी नट वोल्ट, विशेषता स्टीयरिंग, अगला और पिछला पहिया, इसके कसाव को चेक करें। यदि ट्रैक्टर और यंत्रों के द्वारा बहुत अधिक धूल मिट्टी में काम किया गया है तो उसे पानी द्वारा साफ करके सूखा कपड़ा से पोंछ दें। ध्यान से देखें कि

0: तेल, पानी या डीजल इंजन के किसी भाग से टपक तो नहीं रहा है? यदि ऐसा है तो कारण जानकर उसे ठीक करें। अगले एक्सल के स्पिंडल तथा स्टीयरिंग को लिंक ग्रीस करें। यंत्रों के साप्ताहिक देखभाल में रोजाना की देखभाल के लिए बताए गए सभी पॉइंट्स को चेक कर लें। बिजली के कनेक्शन चेक करें तथा साफ करके टाइट करें। बैटरी टर्मिनल की सफाई करके उन्हें कस दें और उन पर पेट्रोलियम जेली लगा दें। एयर क्लीनर की जाली को अच्छी प्रकार से डीजल द्वारा साफ करें। हवा के रास्ते या रेडिएटर की जाली को भी अच्छी तरह से हवा या पानी से साफ करें। फैन बेल्ट के कसाव को चेक करें। सबसे लंबी साइड में यह कसाव 5 किलोग्राम के खिंचाव से 1 से 2 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। यदि मैकेनिकल ब्रेक हो ट्रैक्टर में तो उसका फ्री प्ले चेक करें, यह 15 से 20 मिलीमीटर तक होना चाहिए। यदि ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक ब्रेक हो तो ब्रेक बॉयल चेक करें और जरूरत होने पर पूरा करें। लंबे अरसे तक ट्रैक्टर या यंत्रों का यदि प्रयोग नहीं हो रहा है तब उसमें इन बातों पर ध्यान दें, जैसे कि ट्रैक्टर या अन्य यंत्रों को अच्छी तरह से धोकर साफ करें और उसे सूखे कपड़े से पोंछ दें। यंत्रों को किसी सूखी जगह शेड के नीचे खड़ा करें। सभी चमकीले तथा बगैर पेंट किए भागों को साफ करके हल्की ग्रीस लगा दें। सभी ग्रीस निपलों द्वारा ग्रीस करें। इंजन ऑयल को निकालें। लुब्रिकेशन सिस्टम को प्लस करें तथा नया तेल डालें। बैटरी को उतार दें तथा अच्छी तरह से संभाल कर रखें। कूलिंग सिस्टम का पानी भी निकाल दें। यदि टायरों में पानी भर गया हो तो उसे निकाल दें। ट्रैक्टर को गुटकों के सहारे उठा दें ताकि टायरों पर ट्रैक्टर का वजन बिल्कुल ना रहे। इस प्रकार ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों की सही देखभाल कर इसके लाइफ को अधिक बढ़ा सकते हैं और उसकी पूरी क्षमता के साथ आप काम ले सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी और आज इस कार्यक्रम में हमने जानकारी ली कृषि यंत्रों के बारे में। जानकारी दे रही थी अनीता तिर्के। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब आज का चिंतन।

0: इस समय संसार में असत्य और कपट का बोलबाला बढ़ रहा है। ऐसे में सत्य की महत्ता को समझना और भी आवश्यक हो गया है। गौतम बुद्ध ने इस संबंध में कहा है कि सत्य को छोड़कर जो असत्य बोलता है, धर्म का उल्लंघन करता है, परलोक की जिसे चिंता नहीं है, वो आदमी बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में संकोच नहीं, वो कोई भी अनर्थ कर सकता है। इसलिए कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित ना करें और ना ही झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दे। असत्य का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। सत्य को कितने भी पर्दों में क्यों ना छुपा कर रख दिया जाए, एक ना एक दिन वो प्रकट हो ही जाता है। हमारे मनुष्यों ने यथार्थी कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन वचन और कर्म से सत्य बोलना चाहिए। जो विचार मन में हो वही वाणी में भी होनी चाहिए और उसी के अनुरूप ही मनुष्य का व्यवहार भी होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन वचन और कर्म से अलग रहने वाले पूर्ण रूपेण सत्य का आचरण नहीं कर सकते। क्योंकि सत्य सदैव कड़वा होता है, तो सत्य बोलने वाले समाज में कुछ अलोकप्रिय भी हो जाते हैं। सत्य के महत्व पर गांधी जी ने कहा है कि सत्य केवल शब्दों की सत्यता ही नहीं, बल्कि विचारों की सत्यता भी है। हमारी अवधारणा का सापेक्षिक सत्य ही नहीं, बल्कि निरपेक्ष सत्य भी है, जो ईश्वर ही है। गांधी जी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। सत्य को ईश्वर का प्रायवाची मानते हैं। इसी सत्य के प्रति निष्ठा है। हमारे अस्तित्व का एकमात्र औचित्य यही हो कि हमारी समस्त गतिविधि सत्य पर केंद्रित हो। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। संभव है कि सत्य के बिना भी उसे सफलता मिल जाए, किंतु आंतरिक शांति एवं समग्र संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन और वाचन था दिनेश कुमार लाल का। और आइए अब सुनते हैं भक्ति रचना का कार्यक्रम आराधना, और शुरुआत देश वंदना के साथ।

आप सुन रहे हैं भक्ति रचना का कार्यक्रम आराधना और देश वंदना के बाद अब ईस्ट वंदना। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखता, जो बिना आसक्ति के काम करता है, वही तो सच्चा योगी है। अर्थात सच्ची आध्यात्मिकता निस्वार्थ कर्म में निहित है। और श्री कृष्ण तो हमें ये कहते ही हैं कि सच्चा योगी बनने के लिए हमें परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

जहाँ राधा का नाम आता है वहाँ कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। उनका प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे शाश्वत और अटूट है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा है कि वो हर सांसारिक माया को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने कान्हा के प्रति समर्पित रहती हैं। उनका प्रेम सच्चे और शाश्वत प्रेम का आदर्श है।

मोहन लखे जो बढ़त सुख सो कछु कहत बने ना, नैनन कह रसना नहीं रसना कह नहीं नैन। श्री कृष्ण को देखकर जैसा दिव्य आनंद प्राप्त होता है उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जो आंखें देखती हैं उनके तो कोई जीव नहीं है जो वर्णन कर सके, और जो जीव वर्णन कर भी दे उसके आंखें नहीं है, और बिना देखे वो बेचारी जीव उसका क्या वर्णन करे।

मोहि मोह तुम मोह को, मोह न मोह कहूँ धारी, मोहन मोह न वारिये, मोहनी मोह निवारी। मुझे केवल आपके मोह का मोह है, मेरे मोह को आप अपने अतिरिक्त और कहीं केंद्रित न कीजिए। हे मोहन, आप इसका निवारण भी न कीजिए, अगर करना है तो मेरे प्राणों का अंत कीजिए।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 100.5 एफएम पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। और आइए अब आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी ले लें। थोड़ी देर में यानी 6:55 पर हम सुनेंगे संस्कृत समाचार। हिंदी समाचार का वक्त होगा 7:00। 7:05 पर सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। और आज इस कार्यक्रम में वृद्धावस्था में योगासन को लेकर जानकारी होगी। जानकारी के साथ जुड़ेंगे प्रमोद कुमार पांडे और उनसे बातचीत करने वाले हैं संजीव कुमार लाल। फिल्म संगीत सुबह सुरेली का वक्त 7:15 पर 7:45 में सुनिए खुला आकाश। आज इस कार्यक्रम में बात हिंदी गद्य के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान को लेकर। वार्ताकार हैं सूरज रंजन। समाचार प्रभात का वक्त 8:00, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 सुनिए प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर संवेद ज्ञान गान शिक्षा है। 9:05 पर सुनिए फिल्मी संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा 9:30। और आज इस कार्यक्रम में राग तोड़ी में ख्याल गायन, द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है। गायक कलाकार हैं राणा झा। संगत तबले पर कौशिक दास की और हारमोनियम पर संचाली नाग की। बाल सभा का वक्त होगा 10:00 और इसमें चर्चा गर्मियों के फल पहचाने, गायें खिलाएं, सेहत बनाएं, साथ ही छुट्टियों में बनाएं बर्ड हाउस। बाल गीत भी होगा, बच्चों के मुख से कार्यक्रम भी सुनेंगे और जानकारी होगी नन्ही मधुमक्खी के बड़े बड़े काम को लेकर। बाल कथा भी और प्रेरक व्यक्तित्व हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। प्रस्तुति नूतन प्रसाद की। 10:30 सुनिए आपका मनपसंद कार्यक्रम जोहार रांची। और 11:00 का वक्त होगा स्वर यात्रा के 90 वर्ष। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर झारखंड के लोक कलाकार हरि मुन्ना से अरविंद मित्रा की बातचीत। प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की। 11:30 सुनिए आपकी पसंद। 12:00 का वक्त होगा गृह लक्ष्मी का। आज इस कार्यक्रम में चर्चा योग और फिटनेस हर उम्र की जरूरत को लेकर। भेंट वार्ता होगी जल संरक्षण में महिलाओं की अहम भूमिका पर। जानकारी ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर क्राइम से बचाव को लेकर। प्रस्तुति नूतन प्रसाद की। 12:30 सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। कलाकार हैं विंध्यवासिनी देवी आज के कार्यक्रम में। 12:45 पर लोकगीत कार्यक्रम में आज सुनिए लोक रंग में खड़िया लोकगीत। कलाकार हैं अब्राहम कुल्लू।

दोपहर 1 बजे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार का वक्त 1:05 पर और प्रादेशिक समाचार सुनिए 1:10 पर। 1:20 पर उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी प्रस्तुत किया जाएगा और सुगम संगीत सुनिए 1:45 पर। मिडडे न्यूज़ का वक्त होगा दोपहर 2 बजे, 2:15 पर सुनिए दोपहर समाचार। जय भारती का वक्त 2:30 पर और प्रादेशिक समाचार सुनिए 2:55 पर। दोपहर 3 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडी सुनिए 2:25 पर और प्रादेशिक मुख्य समाचार का वक्त होगा शाम 4 बजे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैण्ड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः, डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेगनगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रवर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान्, यद्धि बहुविधैः संकटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैण्ड्स देशौ वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः, पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः। सः अवदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड 19 महामारीं तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा संकट समं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः सावहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विक विकासलाभः प्रपादितः भविष्यति, जनसंख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैण्ड्स देशो संयुक्तरूपेण सुदृढापूर्तिश्रृंखलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बद्धेभ्यः अधिका महत्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैण्ड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रायाः तृतीय चरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीया यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। सीबीएसई इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिक-2000-तमाब्दीयायाः राष्ट्रिय शिक्षानीतेः 23-अधिक-2000-तमाब्दीयस्य राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु तिस्रिषु भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीय मूलकं भवेत्। भारतीयर्तुविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहाय, पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्तिक्षेत्रेभ्यः, सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलं माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईक्कलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वन्द्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां, अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: Mm-hmm. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं वृद्धावस्था में योगासन को लेकर। जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद कुमार पांडे और उनसे बातचीत करने वाले हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, योग में एक बहुत बड़ी शक्ति है, योग में एक चमत्कार है और योग एक साधना है, योग एक विज्ञान है और योग में भक्ति है। यदि हम प्रातःकाल सवेरे उठकर योग क्रियाएं कर लेते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और बहुत सारी बीमारियों से हम दूरी रह सकते हैं। खासकर ऐसे साथी जो वृद्ध जन हैं, जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उनके लिए योग बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जीवन शैली से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां आप तक पहुंच रही है और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। लेकिन आप लगातार योग करते हैं, कुछ सरल योग क्रियाएं करते हैं तो वृद्धावस्था में आप बढ़िया जीवन जी पाएंगे और बहुत सारी बीमारियाँ आप तक नहीं पहुँचेगी। तो बुजुर्ग साथियों के लिए कौन कौन सी योग क्रियाएं हैं, कब करें, कैसे करें और इसका कितना चमत्कारिक प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं प्रमोद कुमार पांडे जी। प्रमोद जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: हमारे बुजुर्ग साथियों के लिए कौन कौन सी योग क्रियाएं ज़्यादा कारगर है जो उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है?
2: जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे लोग बुजुर्ग के तरफ जब प्रवेश करते हैं तो हमारी नस, नाड़ी, मांसपेशी, हड्डी कमज़ोर होने लगती है। वो काम करना धीरे धीरे पहले के बनिस्पत काफ़ी कम करने लगती है, जिसके वजह से तरह तरह की बीमारी के साथ साथ यहाँ तक एक समय आता है कि हम चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं
1: जी।
2: तो वो स्थिति हमारे शरीर में नहीं आए, हमारे साथ नहीं आए, वो दिन हमको नहीं देखना पड़े। जब तक हम, मरना तो सभी को है, लेकिन जब तक जिंदा रहें, स्वस्थ होकर अच्छे से घूम फिर कर चल कर किसी के ऊपर आश्रित न रहकर अपने जीवन को अच्छे तरह से चलाने के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले उठकर सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म करने के बाद एक सुंदर वातावरण में बैठ जाएं। खुला जगह में बैठते हैं, साफ सुथरे जगह में बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कभी भी योग करने के पहले ये ध्यान देना होगा कि जगह थोड़ा खुला हो, घर के अंदर बंद जगह में योग ना करें। अगर घर के अंदर करना भी है तो वो अपने खिड़की दरवाज़ा को खोलकर घर को अच्छी तरीका से साफ करके, ताकि साफ सुथरा घर रहेगा तो एक सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर आएगा। और गंदी जगह करेंगे तो फिर वैसा ही मन होगा और उतना उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो साफ सुथरे जगह में बैठकर सबसे पहले 5 मिनट ईश्वर के प्रति ध्यान, जिस ईश्वर को वो मानते हों उनके प्रति ध्यान कि हे ईश्वर, हमें बराबर स्वस्थ और निरोग रखिए, ऐसा कामना के साथ, ऐसी मन में भावना के साथ बैठ जाएं। अपने बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के जांघ के ऊपर रख

0: करते हुए और दोनों हथेली दोनों पैर के घुटने से टच करेंगे। सिर मेरुदंड एक सीध में नजर सामने के तरफ और बिल्कुल जिस तरह एक बुद्ध भगवान का प्रतिमा रहता है उस तरह बैठ जाएं। शरीर को शांत रखते हुए मन ही मन यह सोचेंगे कि हे ईश्वर हमें बराबर स्वस्थ और निरोग रखिए। ऐसा सोचते हुए कुछ देर के लिए ध्यान करेंगे। फिर सबसे पहला उनका अभ्यास होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जिस प्राणायाम के वजह से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा भरपूर मात्रा में चाहे वो कितनी भी उम्र हो वो बनी रहती है, और जब ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में होगी तो फिर उनका एक एक अंग स्वस्थ रहेगा। हमारे सेल, जिस सेल के वजह से ऑर्गन बना हुआ है, वो सेल का खाना है ऊर्जा, और ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर मिलती है या तो वॉकिंग के द्वारा, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है प्राणायाम के माध्यम से। तो जब हम प्राणायाम करेंगे तो ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा। तो बाएं नासिका को दबाएंगे, बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं नासिका को दबाते हुए दाहिने से लंबी श्वास भरेंगे और दाहिने नासिका से श्वास को खाली करेंगे, और फिर दाहिने से श्वास भरते हुए बाएं नासिका से खाली करेंगे। इस अभ्यास को, इस प्रक्रिया को कम से कम लगातार 5 मिनट तक जरूर करेंगे, और अगर 10 मिनट तक करते हैं बीच में थक जाने पर थोड़ी देर के लिए आराम की मुद्रा में बैठ जाएंगे, लेकिन कम से कम 10 मिनट का अभ्यास जरूर करेंगे सुबह और 10 मिनट का शाम। तो उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा तो हमारा सेल स्वस्थ रहेगा, सेल स्वस्थ रहेगा तो हमारा ऑर्गन स्वस्थ रहेगा, ऑर्गन स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमें कभी महसूस ही नहीं होगा कि हम बुजुर्ग हैं या हमारी उम्र 70 है, 75 है, 80 है, 85, ऐसा महसूस नहीं होगा। उनके मन में एक बहुत अच्छा आभास आने लगेगा कि हम तो एक बच्चे के समान, हमारा शरीर फुर्तीला हो गया है। कभी वैसा सोचेंगे ही नहीं कि हमारी उम्र इतनी हो गई है और हम ऐसा अभी घूम फिर रहे हैं। ये हो गया। फिर दूसरा प्राणायाम है, हमारा किडनी स्वस्थ रहे, लीवर स्वस्थ रहे, पाचन शक्ति स्वस्थ रहे। इसके लिए चूँकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सब अंग शिथिल पड़ने लगता है, तो हमारा किडनी कैसे स्वस्थ रहे, लीवर कैसे स्वस्थ रहे, पाचन शक्ति कैसे स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें कपालभाति प्राणायाम का 10 मिनट का अभ्यास, कम से कम 10 मिनट, एक बुजुर्ग साथियों को 10 मिनट का अभ्यास जरूर करना चाहिए। 10 मिनट करेंगे तो उनका पूरा लाभ उनके शरीर के ऑर्गन पर पड़ेगा। सबसे पहले आसन लगा लेंगे। आसन के लिए हम लोग एक मैट पर, जमीन पर बैठते हुए जमीन के ऊपर मैट रखेंगे या दरी कालीन जो भी रखें, स्वच्छ वातावरण में बैठेंगे और बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के जांघ के ऊपर रखेंगे, शरीर बिल्कुल एक सीध में, जिस तरह हमारा कमर मेरुदंड बराबर जब हम खड़े रहते हैं एक सीध में सीधा रहता है, उस तरह अपने आप को बैठे बैठे ही सीधा रखेंगे, और पहले अंगूठे से पहली अंगुली को आपस में मिलाते हुए नज़र सामने और अपनी आँख को बंद करेंगे। ध्यान कपाल के भ्रूमध्य पर यानी टीके लगाने वाले स्थान पर, इस भाव के साथ कि मैं अभी कपालभाति प्राणायाम करने जा रही हूँ, और इस अभ्यास से हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारा पाचन तंत्र, हमारा फेफड़ा, हमारा हार्ट, हमारा मस्तिष्क, सारा का सारा ऑर्गेन इस अभ्यास से स्वस्थ होने जा रहा है। ऐसा सोचते हुए दोनों नासिका से सिर्फ श्वास को 1 सेकंड में ध्यान देंगे कि 1 सेकंड में एक ही बार श्वास को बाहर की तरफ खाली करेंगे। इस बात का ध्यान जरूर देंगे कि बहुत ज़्यादा तेज गति से अभ्यास को नहीं करेंगे और बहुत धीमी गति से भी नहीं करेंगे। 1 सेकंड में एक बार दोनों नासिका से श्वास को बाहर खाली करेंगे। पेट हमारा खुद ब खुद अंदर के तरफ जाएगा, पेट पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। पेट बहुत धीमी गति से वो पेट अंदर के तरफ जाएगा। ध्यान सिर्फ हमारा श्वास पर, एक चक्र यानी एक बार जब हम अभ्यास करेंगे तो कम से कम 60 बार ध्यान देंगे कि हमारा नासिका से श्वास बाहर के तरफ खाली हो। इस तरह एक राउंड में 10 मिनट का अभ्यास करेंगे यानी 600 बार एक मानसिक गिनती के साथ, पक्का गिनती तो नहीं किया जा सकता, एक मानसिक गिनती रहेगा कि इस आसपास में हम दोनों नासिका से श्वास को बाहर खाली कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो देखेंगे हमारा किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, पाचन तंत्र, हार्ट, सारा का सारा ऑर्गेन इसे ठीक रहेगा
1: जी। एक सकारात्मक सोच के साथ यदि हम योग क्रियाएं करते हैं तो जाहिर सी बात है हम स्वस्थ रहेंगे। प्रमोद जी, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वृद्धावस्था में बहुत सारी बीमारियां से आप घिर जाते हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखा जाए कि हम ये योग ना करें और इन बीमारियों में इस योग से हम दूरी बनाएं।
0: बुजुर्ग साथियों से ये मेरा आग्रह रहेगा कि वो आसन से उनको बहुत ज़्यादा बचना है। जैसे सूर्य नमस्कार अगर वो पहले से करते आ रहे हैं तब तो ठीक है, अन्यथा सूर्य नमस्कार को वो नहीं करेंगे। और भी बहुत सारा आसन है जो कि उनको नहीं करना है। आसन में सिर्फ तीन चार ही आसन, उनको चार पांच आसन करेंगे तो उसमें वो स्वस्थ रहेंगे। जैसे मरकट आसन होता है, मरकट आसन बहुत आसान वाला आसन है, उसको वो करेंगे। पवन मुक्तासन होता है, उस आसन को जरूर करेंगे। फिर नौकासन से भी थोड़ा दूरी बनाएंगे, नौकासन भी उनको नहीं करना है, नौकासन नहीं करना है। वज्रासन करना है, आसन में जब आसन कुछ कर लेंगे, मरकट आसन जिससे हमारा स्पाइन स्वस्थ रहता है, स्पाइन हेल्दी रहता है और बैक पेन का समस्या नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा। उसके बाद वो शलभासन कर सकते हैं
1: जी।
0: फिर पवन मुक्तासन, उससे हमारा पेट काफ़ी स्वस्थ और मजबूत होता है, पेट के अंदर की बीमारी को दूर करता है। वृद्धावस्था में पेट भी धीरे धीरे, सारा ऑर्गन कमज़ोर होता है तो पेट भी, और पेट सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पेट कमज़ोर हो गया तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो फिर हम ऐसे ही बीमार होने लगेंगे
1: जी।
0: तो इसमें पवन मुक्तासन भी काफ़ी फायदा देगा।
1: तो वृद्धावस्था में बहुत सारी योग क्रियाएं उर्जित भी हो जाती हैं, कुछ प्राणायाम आप जरूर करें और एक अच्छे योग विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही आप योगासन करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रमोद कुमार पांडे जी, आज बड़ी अच्छी आपने बातचीत करी कि वृद्धावस्था में कौन कौन से योग क्रियाएं करें और कैसे हम स्वस्थ रहें। और मित्रों, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, अगले दिन एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हमने जानकारी ली वृद्धावस्था में योगासन को लेकर। जानकारी के साथ जुड़े थे प्रमोद कुमार पांडे और उनसे बातचीत की संजीव कुमार लाल ने।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। नींद में डूबी रात जब सुबह सूरज की किरणें देख अंगड़ाई लेती है। नींद में डूबी रात पर जब पड़ती हैं सूरज की किरणें, पड़ती हैं ना, तो वो अंगड़ाई लेती रात अलसाई आंखों से कुछ यही तो कहती है।

भोर हुई और पंछियों के कलरव ने मानो साज छेड़ दिया हो, और फिर ये मन भी पुलकित उठता है।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: आप सुन रहे कार्यक्रम सुबह सुरीली।

सपनों की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है और सपने हकीकत से हमेशा अलग होते हैं। जैसे पांव जमीन पर नहीं पड़ते, वैसे ही कभी कभी लगता है कि कई दिन से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ सपनों में ही है, हकीकत से तो उसका कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन जिंदगी में कभी कभी सपने और हकीकत मिल भी जाते हैं।

और फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे नए सपने, नई उमंगें अंगड़ाइयाँ लेती हैं, और फिर वो दिन सुहाना होता है जब हमारे मन मुताबिक होता है, और उसके बाद तो फिर सब कुछ अच्छा सा लगने लगता है, कुछ इस तरीके से। और जब साथ साथ सुरीला नगमा हो तो वाकई सफ़र सुहाना होता है।

0: और सुबह सुरीली का आखिरी नगमा सुनिए।
1: अरे

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश। आज इस कार्यक्रम में वार्ता है हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को लेकर। वार्ताकार हैं सूरज रंजन।
1: नमस्कार। जब हम किसी विशाल भवन को देखते हैं तो हमारी नजर उसकी गुंबद और दीवारों पर टिक जाती है, लेकिन उस भवन की नींव जो जमीन के नीचे दबी है और जिसने भवन का पूरा भार उठा रखा है, उसे अक्सर हम भूल जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उसी मजबूत नींव का नाम है। हिंदी साहित्य का इतिहास गवाह है कि आधुनिक काल का दूसरा चरण जो सन 1900 से 1918 तक चला, उसे द्विवेदी युग कहा जाता है। यह किसी राजा महाराजा के नाम पर नहीं, बल्कि एक ऐसे साहित्यकार के नाम पर पड़ा जिसने अपनी लेखनी से हिंदी भाषा की दिशा और दशा ही बदल दी। लेकिन दोस्तों, द्विवेदी जी के योगदान को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में भारतेंदु हरीशचंद ने हिंदी गद्य का द्वार तो खोल दिया था, लेकिन उस समय हिंदी की हालत क्या थी? वह अपनी शैशवावस्था यानी बचपन में थी। उस दौर की हिंदी भाषा में एक तरह की अराजकता फैली हुई थी। लेखकों की कलम पर कोई रोक टोक नहीं थी। गद्य में ब्रज भाषा के शब्द भरे पड़े थे तो कहीं स्थानीय बोलियों जैसे बैसवाड़ी और बुंदेली का मिश्रण था। व्याकरण के नियम शिथिल थे। लिंग, वचन और कारक का प्रयोग लेखक अपनी मर्जी से करते थे। भाषा का कोई मानकीकृत रूप नहीं था। विषय भी काफ़ी सीमित थे। साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन, उपदेश या रीतिकालीन श्रृंगार तक सीमित था। ज्ञान विज्ञान के विषयों का घोर अभाव था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि भारतेंदु युग में गद्य के अनेक रूप प्रचलित थे। ऐसे समय में हिंदी को एक ऐसे माली की ज़रूरत थी जो जंगली झाड़ियों को काटकर इस भाषा को एक सुंदर बगीचे का रूप दे सके, और वह दक्ष माली बनकर आए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कहानी 1903 में एक नया मोड़ लेती है। उस समय इंडियन प्रेस के मालिक बाबू चिंतामणि घोष ने सरस्वती पत्रिका की जिम्मेदारी महावीर प्रसाद द्विवेदी को सौंपी। श्रोताओं, यहाँ एक बहुत ही प्रेरक तथ्य है। द्विवेदी जी उस समय झांसी में रेलवे की अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन हिंदी की सेवा के लिए उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और मात्र 20 रुपये महीने के वेतन पर सरस्वती का संपादन स्वीकार किया। 20 रुपये, सोचिए त्याग का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। सरस्वती के संपादक की कुर्सी पर बैठते ही वे केवल संपादक नहीं रहे, वे एक कठोर अनुशासक बन गए। उनका नियम पत्थर की लकीर था। उनके ही शब्दों में, जो रचना व्याकरण सम्मत नहीं है वह सरस्वती में नहीं छपेगी। वे आने वाली रचनाओं को ज्यों का त्यों नहीं छापते थे। वे लेखकों की अशुद्धियां सुधारते,

वाक्यों को कसते और भाषा को परिष्कृत करते थे। वे लेखकों को डांटते भी थे और अच्छा लिखने पर सार्वजनिक रूप से उनकी पीठ भी थपथपाते थे। यह उनकी पाठशाला थी जहां से मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और निराला जैसे रत्न निकले। आपको राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त तो याद होंगे। गुप्त जी स्वयं द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु मानते थे। और प्रेमचंद, जब प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए तो उन्हें पहला बड़ा मंच सरस्वती ने ही तो दिया था। द्विवेदी जी ने एक एक करके लेखकों की पूरी फौज तैयार की। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसका प्रभाव हम आज तक महसूस करते हैं। वह था खड़ी बोली आंदोलन। द्विवेदी युग से पहले एक अजीब रिवाज था, गद्य तो खड़ी बोली में लिखा जाता था लेकिन पद्य यानी कविता सिर्फ ब्रज भाषा में होती थी। द्विवेदी जी ने इस दीवार को तोड़ दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जो भाषा हम बोलते हैं, जिसमें हम सोचते हैं, कविता भी उसी में होनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग नहीं होनी चाहिए, कविता में भी वही शब्द आने चाहिए जो गद्य में आते हैं। उन्होंने भाषा और व्याकरण की शुद्धता पर बल देते हुए हिंदी लेखकों को विभक्तियों के सही प्रयोग, विराम चिन्हों के महत्व और वाक्य विन्यास की शुद्धता सिखाई। उन्होंने शब्दों के मनमाने प्रयोग पर रोक लगाई। उदाहरण के लिए उन्होंने हलंत जैसी अशुद्धियों और वर्तनी की त्रुटियों को दूर करने के लिए लेखमालाएँ चलाई। उन्होंने बालमुकुंद गुप्त जैसे विद्वानों से भी व्याकरण पर शास्त्रार्थ किया, जिससे अंततः हिंदी भाषा को लाभ हुआ। साथ ही द्विवेदी जी ने हिंदी शब्द संपदा के विस्तार पर भी जोर दिया ताकि हिंदी भाषा के प्रयोग का दायरा बढ़ सके। द्विवेदी जी संस्कृत निष्ठता के पक्षधर तो थे लेकिन वे कट्टर नहीं थे। वे उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उन शब्दों को स्वीकार करने के पक्ष में थे जो हिंदी में घुल मिल गए हैं। फिर भी उनका जोर इस बात पर था कि हिंदी अपनी प्रकृति न खोए। उन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण की भी नींव रखी। सिर्फ भाषा ही नहीं, उन्होंने साहित्य का विषय भी बदल डाला। उस समय कविताएं अक्सर श्रृंगार रस, नायिका भेद या मनोरंजन तक सीमित होती थी। द्विवेदी जी ने लेखकों को झकझोरा। उनका मशहूर कथन सुनिए जिसने लेखकों की आँखें खोल दी। उनके शब्दों में, कविता का विषय मनोरंजक और उपदेश परक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। चीटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। परिणाम यह हुआ कि हिंदी के लेखक अब केवल फूलों और भंवरों पर नहीं बल्कि देश प्रेम, समाज सुधार और ज्ञान विज्ञान पर लिखने लगे। उन्होंने हिंदी पाठकों को कूप मंडुकता यानी कुएं के मेढक वाली सोच से बाहर निकालकर विश्व के ज्ञान विज्ञान से जोड़ा। अक्सर लोग सोचते हैं कि साहित्यकार का काम केवल मनोरंजन करना है, लेकिन द्विवेदी जी इसे नहीं मानते थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में इस बात को बहुत गहराई से उठाया है। डॉक्टर शर्मा बताते हैं, द्विवेदी जी केवल व्याकरण सुधारक नहीं थे, वे हिंदी नवजागरण के योद्धा थे। उन्होंने हिंदी जनता को अंग्रेजी साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ खड़ा किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनकी पुस्तक संपत्ति शास्त्र, जो 1908 में प्रकाशित हुई थी। यह हिंदी में अर्थशास्त्र की पहली मौलिक पुस्तक मानी जाती है। इसमें उन्होंने भारत की गरीबी और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। उन्होंने दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को हिंदी पाठकों तक पहुँचाया। सोचिए दोस्तों, एक साहित्यकार अर्थशास्त्र पर लिख रहा था ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। यही नहीं, उन्होंने आलोचना को भी नया आयाम दिया। उससे पहले आलोचना का मतलब सिर्फ वाह वाह करना या किसी को भला बुरा कहना होता था। द्विवेदी जी ने कालिदास की निरंकुशता पर लिखकर यह साहस दिखाया कि अगर महाकवि कालिदास भी व्याकरण की गलती करेंगे तो उन्हें भी टोका जाएगा। साहित्य उनके लिए ज्ञान राशि का संचित कोष था।
उन्होंने अनुवाद

0: अनुवाद के जरिए भी हिंदी को समृद्ध बनाया। संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और मराठी के श्रेष्ठ साहित्य को वे हिंदी में लाए। बेकन के निबंधों का अनुवाद करके उन्होंने हिंदी में निबंध विधा को एक नया बौद्धिक आयाम दिया। वे पत्रों के माध्यम से लेखकों को सुझाव देते थे। यदि कोई लेखक अच्छा लिखता तो वे उसे सार्वजनिक रूप से सराहते, यदि गलत लिखता तो निजी पत्र लिखकर सुधारने को कहते। यह उदारता और कठोरता का अद्भुत संगम था। 1920 में स्वास्थ्य कारणों से द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन छोड़ दिया, लेकिन तब तक वे अपना काम कर चुके थे। हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ठीक ही लिखा है, द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य को वह रूप प्रदान किया जिससे वह भारत की राष्ट्रभाषा बनने की अधिकारी हो सकी। यदि भारतेंदु ने हिंदी गद्य की नींव रखी थी तो द्विवेदी जी ने उस पर एक भव्य और सुदृढ़ भवन खड़ा किया। आज हम जिस मानक हिंदी का प्रयोग शिक्षा, मीडिया और प्रशासन में कर रहे हैं, वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अथक परिश्रम, त्याग और दूरदर्शिता का ही परिणाम है। तो श्रोताओं, यह थी कहानी उस युग निर्माता की जिसने अपनी कलम को छेनी बनाकर एक पूरी भाषा को गढ़ा। उम्मीद है आज जब आप हिंदी में कुछ लिखेंगे या पढ़ेंगे तो एक पल के लिए उस सरस्वती के साधक को ज़रूर याद करेंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश। आज इस कार्यक्रम में वार्ता थी हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को लेकर। वार्ताकार थे सूरज रंजन।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 100.5 FM पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

थोड़ी देर यानी 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़, ठीक इसके बाद यानी 8:15 पर थोड़ा सा इंतजार।

0: תבלין ניגע.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री
0: के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को
1: रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त।
0: प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार

0: पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद

0: सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के

0: बाद प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस: इंडिया एंड द नेदरलैंड्स एलिवेट देयर टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉलोइंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज डच काउंटर पार्ट रॉब येटन। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रीच गोथेनबर्ग टुडे ऑन अ टू डे विजिट टू स्वीडन to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, "India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade," and described the Netherlands as one of India's key European partners.
2: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
1: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, "Democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach." Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, "India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense."
2: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है।
1: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson, to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the prime minister's broader European tour and his first visit to the continent since the landmark India-European Union Free

0: समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की मांग दोहराते हुए कहा, आदिवासी समाज की पहचान के लिए अलग धर्म कोड जरूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। जेईई एडवांस्ड परीक्षा को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति। पलामू, गढ़वा और लातेहार को छोड़ राज्य के अन्य जिलों में आज और कल मेघगर्जन के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी के विकास में योगदान के लिए नीदरलैंड के कोच की सराहना। देशवासियों से भारतीय टीम के समर्थन की अपील। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से अपील करते हुए कहा है कि देश के करोड़ों आदिवासी समाज के लोगों के अस्तित्व, आस्था, संस्कृति और पहचान के सम्मान के लिए अलग सरना धर्म कोड जरूरी है। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि जनगणना में आदिवासी समाज को अलग आदिवासी या सरना धर्म कोड मिलना चाहिए ताकि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को उचित मान्यता मिल सके। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत झारखंड में घर घर सर्वे का कार्य शुरू हो गया। पहली बार डिजिटल माध्यम से हो रही इस जनगणना में स्वगणना के बाद प्रगणक और पर्यवेक्षक घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करेंगे। यह अभियान 14 जून तक चलेगा। जनगणना निदेशालय के अनुसार राज्य के 24 जिलों में इस कार्य के लिए लगभग 65,000 प्रगणक और 10,858 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पहले चरण में मकानों की गिनती, मकानों को नंबर देने और नक्शा तैयार करने का कार्य किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। जिला प्रशासन ने जेईई एडवांस परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त आयोजन को लेकर रांची के परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश आज सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन के अनुसार शहर के 2 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किया गया है। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सिमडेगा पुलिस ने ऑपरेशन रेड हंट के तहत कार्रवाई करते हुए पीएलएफआई के धनेश्वर यादव उर्फ कारगिल को रांची से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ बैजू राव ने बताया कि वह बानो थाना का वारंटी है।
1: बानो थाना में एक पीएलएफआई के सक्रिय उग्रवादी संगठन के सदस्य करीब 10 वर्षों से फरार चल रहे थे, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर उसे हिरासत में भेजा जा रहा है।
0: रांची में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने अल्बर्टेका चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया।
2: जब तक 5 राज्य में चुनाव हुआ तब तक किसी तरह का कोई वृद्धि नहीं हुआ। आज जैसे चुनाव खत्म हुआ 5 राज्य का रिजल्ट आया, धनाधन पेट्रोल डीजल दूध आदि सीएनजी में दाम बढ़ा रही है।
0: इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने महंगाई पर काफी नियंत्रण किया हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थों पर 115 देशों में मूल्य वृद्धि हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल, ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR

0: न्यूज अंडरस्कोर रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में वट सावित्री का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ कल मनाया गया। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने आज सुबह पारण कर व्रत पूरा किया। कोडरमा थाना क्षेत्र के मिटको कॉलोनी में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोडरमा के SP कुमार शिवाशीष ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
1: 14 मई 2026 को मिटको कॉलोनी में श्रीमती नेहा राज हत्या कर दिया गया। टोटल 2 अक्यूज हैं इस मर्डर के केस की। इसका कारण ये था कि जो मृतिका हैं, उनके हस्बैंड शंभू राणा का इलिसिट अफेयर चल रहा था देवंती देवी के साथ। जब इसके बारे में देवंती देवी के हस्बैंड को पता चला तो उन्हें द्वेष के भावना में आके हत्या कर दिया गया।
0: मौसम विभाग के अनुसार 19 मई तक पलामू, गढ़वा और लातेहार में लू चलने की संभावना है। वहीं आज और कल राज्य के अन्य जिलों में बादल छाए रहने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने तथा गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी के प्रति समर्थन और प्रोत्साहन व्यक्त किया है। नीदरलैंड्स के हेग दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी के विकास में योगदान के लिए नीदरलैंड्स के मुख्य कोच सजोर्ड मार्जिने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस वर्ष नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होने वाले FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप में भारतीय टीम का समर्थन करने की अपील भी की।
2: जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है, वैसे ही भारत की हॉकी में नीदरलैंड्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कोच मरीन का अहम रोल है कि वर्ल्ड कप जो भी कोई जीते, लेकिन इतना पक्का है कि इस ओलंपिक में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जरूर जीतेगी।
0: झारखंड स्टेट कबड्डी एसोसिएशन की विशेष आम सभा की बैठक आज सुबह 10 बजे से जमशेदपुर में आयोजित की जाएगी। झारखंड स्टेट कबड्डी एसोसिएशन ने बताया कि संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। हजारीबाग जिला चेस एसोसिएशन द्वारा 4th HDC ऑल इंडिया ओपन फाइट रेटिंग टूर्नामेंट 2026 का आयोजन हजारीबाग में किया जा रहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में विधायक प्रदीप प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें देशभर से 800 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट 2 चरणों में होगा। पहला चरण 20 मई तक ओपन वर्ग के लिए और दूसरा चरण 21 से 24 मई तक 1800 से कम रेटिंग वाले खिलाड़ियों के लिए होगा, जिसमें कुल 6,11,000 रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने बालूघाटों के लीज मंजूरी और नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, नीट UG पेपर लीक मामले में महिला लेक्चरर गिरफ्तार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 6 बड़े बालूघाटों के लीज डीड फाइनल, मॉनसून से पूर्व रिकॉर्ड स्टॉक की तैयारी। हिंदुस्तान ने झारखंड के अदालतों में हाईब्रिड मोड में सुनवाई की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, JTET से खुलेगा शिक्षकों के सहायक आचार्य बनने का रास्ता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की मांग दोहराते हुए कहा, आदिवासी समाज की पहचान के लिए अलग धर्म कोड जरूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। JEE एडवांस्ड परीक्षा को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति। पलामू, गढ़वा और लातेहार को छोड़ राज्य के अन्य जिलों में आज और कल मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी के विकास में योगदान के लिए नीदरलैंड की कोच की सराहना की। देशवासियों से भारतीय टीम के समर्थन की अपील। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और 100.5 FM पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और आपके साथ है आपकी रेडियो।

रेडियो सखी आरती। आइए अब कार्यक्रम हम सुनते हैं संवेद गान शिक्षा। असमीज जिसके बोल हैं ए माटी रे, गीतकार हैं सतीश दास।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे,
0: ए माती रे, मोरो मोते,
1: मोरो मोते,
0: माती के,
1: माती के,
0: सुमीलो,

0: माती के सुमिलो, माती के सुमिलो हो गया ना यहाँ तक, आगे लिखो। एई माती ते, एई माती ते जीवन, एई माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना, ये एई माती ते जीवन सोबी, जीवन जी कैसे ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीवन सोबी आकी आकी दो बार आकी आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद, दूर आकाहार, ये जो ना आकाश श को बोलते हैं वहाँ ख की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में, आका खार भी नहीं आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो, दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर ख नहीं बोलना ह, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे।
0: इसके आ गया है आहा आहा, फिर मातिर बुकुत, मातिर बुकुत, मौनोर मालोती, बूटोलो मौनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, एई माती रे मोरो मोते, फिर दूसरा अंतर है मौनोर कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे
0: हुरोर, हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे
0: पापोरी रे आजी,
1: आजी
0: इतना हो गया ना
1: जी।
0: आगे हुकुमार, थापो ना हुजुवा, हुकुमार थापो ना हुजुवा, आगे लिखा है ना
1: जी।
0: हुंदौर
1: हुदीनौर,
0: खुदीनौर नहीं खनी ख, खुदीनौर
1: खुदीनौर
0: नौतून,
1: नौतून
0: दृष्टि,
1: दृष्टि
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि
1: दृष्टि
0: दृष्टि शनि सही बोलना, दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ, आगे ना
1: जी हाँ।
0: अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं, स्वर दीजिए जरा।

0: नाहुजुआ यहाँ खूब भर के आवाज जोर से बना।
1: हुकुमार थापो नाहुजुआ,
2: हुकुमार थापो नाहुजुआ,
1: मौन और

0: वैसे कौनो ना हुआ खून, ऐसे बोलना एक बार।
1: नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: अभी आप सुन रहे थे संवेद गान शिक्षा असमीज में, बोल थे एमआरटी रे, गीतकार थे सतीश दास।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रस रंजन। तेरे बिना अधूरी है मेरी जिंदगी, तेरे बिना अधूरी है मेरी जिंदगी, जैसे बिना चांद के रात अधूरी है। हर सांस में तेरा नाम है, तू ही मेरी सबसे खूबसूरत जिंदगी है।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: I know na,
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
7: अनजान ऐप से बचें,
5: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंजन। तू मेरी धड़कन तू मेरा सुकून, तेरा साथ हो तो हर लम्हा है खूबसूरत, तेरे बिना ये दिल अधूरा सा लगता है, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी सबसे प्यारी जरूरत।

एक चेहरा है जो आँखों में बसा रहता है, एक चेहरा है जो आँखों में बसा रहता है, एक तवस्सुर है जो तन्हा होने नहीं देता। उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, उतर आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए ही बनाया है।

आप सुन रहे हैं रस रंजन। तुम फिर उसी अदा से अंगड़ाई लेकर हंस दो, तुम फिर उसी अदा से अंगड़ाई लेकर हंस दो, आ जाएगा पलट कर गुजरा हुआ जमाना। अभी आए अभी जाते हो, अभी आए अभी जाते हो, जल्दी क्या है दम तो ले लो, फिर चाहे मुझसे तुम कोई भी कसम ले लो।

सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता। हम बहुत दूर निकल आए हैं, हम बहुत दूर निकल आए हैं चलते चलते, अब ठहर जाएं कहीं शाम के ढलते ढलते। रसरंजन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। और आज इस कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं राग तोड़ी में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं अब मोरे राम।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, और आज इस कार्यक्रम में हम सुन रहे थे राग तोड़ी में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी, बोल थे अब मोरे राम विराम रे। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी, जिसके बोल थे अल्लाह जाने। गायक कलाकार थे पंडित राणा झा, तबले पर संगत कौशिक दास और हारमोनियम पर संचाली नाग के।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: और आइए अब शामिल होते हैं बाल सभा में। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी गर्मियों के फल पहचाने, खाएं, खिलाएं, सेहत बनाएं, छुट्टियों में बनाएं बर्ड हाउस, होंगे बाल गीत भी, बच्चों के मुख से भी सुनेंगे, जानकारी होगी नन्ही मधुमक्खी के बड़े बड़े काम को लेकर, बाल कथा भी होंगे। प्रेरक व्यक्तित्व हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत और प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की।

0: गर्मी के फल न्यारे न्यारे, मीठे रंग रंगीले प्यारे, फलों का राजा कहलाता आम, मम्मी पापा भैया दीदी सभी करते उसे सलाम। खरबूजा तरबूज भी है खूब भाते, गर्मी सारी दूर भगाते, आड़ू चीकू लीची गोल मटोल, खाओ मिलकर खूब तुम, क्योंकि होते गर्मी के फल अनमोल।
1: वाह दीदी वाह, ये तो बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई, और ये कविता बच्चों को भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि गर्मी के फल न्यारे न्यारे, रंग रंगीले, प्यारे प्यारे होते हैं, और गर्मी का मौसम आ चुका है बच्चों, इसलिए सूरज दादा आसमान में तेज चमकने लगे हैं आजकल।
0: हाँ भैया, सूरज की तेज चमकती किरणें हमारे शरीर को गर्मी तो प्रदान करती है, पर आवश्यकता से अधिक गर्मी हमारे सेहत को नुकसान भी पहुंचाती है। यानी गर्मी के इस मौसम में हम यदि थोड़ी सी भी लापरवाही बरतें तो बीमार पड़ सकते हैं बच्चों।
1: ऐसे मौसम में हम सभी को चाहिए ठंडक, ताकत और ताश की। और ये सब हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? हमें स्वादिष्ट रंग रंगीले और रसीले फलों से, जो कि इस मौसम में खूब मिलता है।
0: तो बच्चों चलिए जान लेते हैं गर्मी के फलों की पहचान और उनके फायदे के बारे में, फलों की रंग बिरंगी दुनिया की सैर करके। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फलों के राजा आम की। बताइए आप में से कितने बच्चों को आम खाना पसंद है? अरे ये क्या, सभी ने हाथ उठा दिए, मतलब सभी बच्चों को आम बहुत अच्छा लगता है ना?
1: हाँ बच्चों, पीला पीला, रसीला, गुद्देदार, मीठा मीठा आम किसे नहीं पसंद है। जानते हैं बच्चों, आम खाने से शरीर को खूब ऊर्जा मिलती है, साथ ही विटामिन ए और विटामिन सी भी मिलता है, जो कि आंखों और त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है।
0: अब बात करते हैं बच्चों तरबूज की। बड़ा सा दिखने वाला हरा हरा तरबूज, काटो तो अंदर से दिखता लाल लाल, है ना ये कुदरत का कमाल। जानते हैं बच्चों, इसको खाने से गर्मी के इन दिनों में शरीर को ठंडक मिलती है और पानी की कमी शरीर में नहीं होती है।
1: इसी तरह बच्चों, खरबूजा भी गर्मियों का खास फल होता है। इसको खाने से ठंडक मिलती है, पाचन तंत्र सही रहता है और शरीर में जल की कमी नहीं होती है।
0: सब फल मिलकर हमें सिखाते, रोज हमें तुम खाओगे, ताकत सेहत ऊर्जा से हर कदम आगे बढ़ते जाओगे, हर कदम आगे बढ़ते जाओगे।
1: वाह, तो बच्चों फलों की बातें निराली लगी ना? और कुछ बच्चों को बाहर से खरीदा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स या अन्य खाने की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, पर बच्चों वो सब वस्तुएं खाने में भले ही स्वादिष्ट लगे पर सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है।
0: फल जो होता है ना बच्चों, वो प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार होता है, उससे हम लोगों को कभी हानि नहीं पहुंचती है बल्कि शरीर को लाभ होता है। इसीलिए बाजार के पैकेट बंद चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि जो होता है खाने से बचिए और मम्मी पापा से बोल कर फल खरीदवा कर ही खाइए।
1: आप लोगों को तो लीची बहुत अच्छी लगती है ना बच्चों? सचमुच सफेद गुदे वाली छोटी सी लीची खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है बच्चों। इसमें भी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए सेहतमंद होते हैं।
0: इसी तरह पपीता, ककड़ी, खीरा इत्यादि भी जरूर खाइए बच्चों। पपीता पेट को स्वस्थ रखता है, वही खीरा ककड़ी शरीर में पानी की कमी को दूर करता है।
1: हाँ बच्चों, रोजाना एक फल जरूर खाइए, परंतु एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि खाने से पहले फल को खूब अच्छी तरह से धो लीजिए और बहुत समय पहले से कटे फल भी नहीं खाने चाहिए, ताजा फल ही खाएं।
0: फल खाएंगे शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी रहेंगे आप खेल में चैंपियन और पढ़ाई में भी चैंपियन।
1: तो बच्चों ये तो थी फलों की बात, और अब आप लोगों की गर्मियों की छुट्टी भी हो गई है ना, तो इन छुट्टियों में कुछ खास चीज बनाएं तो कैसा रहेगा बच्चों?
0: क्या खास चीज भैया, बच्चों के साथ साथ हमें भी तो बताइए कि इस छुट्टी में बच्चों को आप क्या बताने वाले हैं।
1: दीदी दरअसल गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हम सभी लोग कहीं घूमने की योजना बनाने लगते हैं, या बच्चे लोग पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद पर ध्यान देने लगते हैं, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने नन्हे पंखों वाले दोस्त यानी प्यारी प्यारी सुंदर सी चिड़ियों के लिए भी कुछ खास कर सकते हैं।
0: आपका मतलब मैं समझ गई भैया, कि आप इस गर्मी की छुट्टी में बच्चों से बर्ड हाउस बनाने की बात कह रहे हैं, और ये आज के परिदृश्य में बहुत जरूरी भी है।

0: बच्चों, यदि आप अपने घर की बालकनी, छत या बगीचे में एक छोटा सा बर्ड हाउस बनाकर लगा देंगे तो जब चिड़ियों की नजर उस पर जाएगी तो वो खुशी खुशी उसमें रहने के लिए आने लगेंगी।
1: हाँ बच्चों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बर्ड हाउस के लिए आपको बहुत सामान की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए तो आप पुराने डिब्बों, लकड़ी, नारियल के खोल इत्यादि बेकार पड़ी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सुंदर सा चिड़ियों का घर बना सकते हैं।
0: बर्ड हाउस बनाकर जब आप अपने बालकनी या बगीचे में टांगेंगे तब साथ ही पास में थोड़ा दाना और एक कटोरी में पानी भी रख दीजिएगा। जब चिड़िया दाना चुगने आएगी तो अपनी प्यास भी बुझा सकेगी और बर्ड हाउस देखेगी तो आज नहीं तो कल, यानी धीरे धीरे एक ना एक दिन रहने की शुरुआत भी उसमें कर देगी।
1: हाँ बच्चों, इसका एक और फायदा ये भी है कि चींची करती चिड़िया जब रहने आएगी तो वो दृश्य आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने को प्रकृति के बेहद करीब पाएंगे और घर की वजह से चिड़ियों की संख्या भी बढ़ जाएगी।
0: बर्ड हाउस लगाते समय ध्यान रखें बच्चों कि इसे शांत सुरक्षित जगह पर ही लगाइए और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मत लगाइएगा।
1: बर्ड हाउस का ऊपरी हिस्सा अच्छी तरह से बंद करें ताकि बरसात में पानी उसके अंदर न जा पाए।
0: तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कीजिए ये खास काम बच्चों, ताकि चिड़ियों को भी मिले आराम। और जब सुबह सुबह प्यारी प्यारी चिड़ियों की चहचहाहट से खुलेगी आपकी नींद, देखिएगा फिर मिलेगा चैन, सुकून, ताजगी और कितना ज्यादा आराम।
1: तो चलिए बच्चों, बातें तो और भी होती रहेंगी, कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए। तो आइए सुनाते हैं एक प्यारा सा बाल गीत।

आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: तो बच्चों कैसा लगा ये बाल गीत? अब तो आपके साथी भी तैयार हैं कुछ सुनाने के लिए, आइए सुना जाए उनसे।
1: क्या नाम है आपका?
2: सुप्रभात, मेरा नाम पावनी प्रियम है। मैं आज आप सभी के समक्ष

0: एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नीत सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ल पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
1: वाह, बहुत अच्छी कविता। आपका क्या नाम है और आप क्या सुनाएंगी?
2: सुप्रभात, मेरा नाम स्तुति आर्या है और आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सरहद के रखवाले रण में कूच कर जाएंगे, देशभक्ति जोश जज्बा दिलों में भर जाएंगे। महकते शब्दों की खुशबू हम जग में फैलाएंगे, सद्भावों की मोती लेकर जन मन में बस जाएंगे। हर्ष खुशी आनंद भर विजय तिरंगा लहराएंगे, भारत माँ के जयकारों में आकाश गूंज जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।
1: भारत माँ के जयकारों से आकाश गूंज जाएंगे। वाह, बहुत अच्छी कविता। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम आकांक्षा है, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सूरज की किरणों से सीखो। सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो, कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठी बोल सुनाओ।
1: वाह, बच्चों ने तो बहुत अच्छी अच्छी कविता सुनाई दीदी, और अब कुछ जानकारी की बातें और होनी चाहिए, तो अगली जानकारी क्या है दीदी?
4: जानकारी के तहत हम बच्चों को बताएंगे भैया कि नन्ही मधुमक्खी के बड़े बड़े काम।
1: आपको बताते हैं कि कितने बड़े बड़े काम करती है ये छोटी सी मधुमक्खी, है ना?
4: बिल्कुल भैया। बच्चों, सबसे पहले तो मधुमक्खियां हमें स्वादिष्ट और ताकत देने वाला शहद देती हैं, जो कि मीठा तो होता ही है, साथ ही सर्दी जुकाम जैसे कई रोगों को ठीक करने का काम भी करता है।
1: हाँ बच्चों, इसके साथ ही मधुमक्खियों का इस धरती पर सबसे महत्वपूर्ण काम है फूलों का परागण करना। जब मधुमक्खियां फूलों से रस लेने के लिए उस पर बैठती हैं, तब फूलों के छोटे छोटे परागण उसके पैरों और शरीर पर चिपक जाते हैं।
4: ऐसे में जब मधुमक्खियां दूसरे फूल पर जाकर बैठती हैं, तो वही पराग कण वहाँ यानी दूसरे फूल पर पहुँच जाते हैं। इसका फायदा ये होता है बच्चों कि फूलों में फल और बीज बनने लगते हैं।
1: इस परागण के चलते ही कई नई किस्मों के पौधे भी तैयार होते हैं। जब अलग अलग पौधों का पराग मधुमक्खियों के पैरों और शरीर से चिपक कर एक दूसरे पर गिरते हैं, तब
4: इतना ही नहीं, मधुमक्खियों का ही मेहनत का प्रतिफल होता है बच्चों कि हम सभी को तरह तरह के फल और सब्जी खाने को मिलते हैं। यदि ये नन्ही मधुमक्खियां ना हो तो हमें आम, सेब, तरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू इत्यादि खाने को नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। मधुमक्खियां किसान भाइयों की दोस्त भी कही जाती हैं, क्योंकि वे परागकण के माध्यम से फूलों में फल और बीज तैयार करवाती हैं।
1: बच्चों, मधुमक्खियां हमेशा मिलजुल कर अपना काम करती हैं। उनके छत्ते में हर मधुमक्खी के काम की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। कोई भोजन खोजती है, कोई शहद बनाती है और कोई छत्ते की रक्षा करती है। सबसे खास बात यह है कि मधुमक्खियां

0: कभी आलस नहीं करती हैं और हमेशा अनुशासन में रहती हैं, जिसे हमें भी सीख लेनी चाहिए।
1: बच्चों, पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियां पर्यावरण को स्वस्थ रखने में भी बहुत सहयोग करती हैं, इसीलिए उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए।
0: इसीलिए तो कहते हैं दीदी
1: कि मधुमक्खी कितनी प्यारी, तुम मेहनत से न डरती हो, फूलों के रस लेकर मीठा शहद बनाती हो,
0: भांति भांति के पुष्पों पर सुबह सुबह ही मंडराती हो,
1: डॉक्टर और वैद्य तुम्हारे शहद के गुण गाते, खुद ना चखती कभी, सदा हमें ही खिलाती हो।
0: वाह, दीदी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है बच्चों, और उम्मीद है कि आपको भी ये कविता अच्छी लगी हो और मधुमक्खियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी आप लोगों को हो गई है। तो अब कुछ मनोरंजन भी बच्चों का होना चाहिए दीदी। तो चलिए बच्चों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है ए बगुला सफेद टीका देता जा, और इसके रचनाकार हैं श्री सतीश चंद्र चौधरी।
1: मुर्गी की बाग के साथ साथ सुशील जग उठा। उस समय बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। उसने बगीचे के फूलों की ओर देखा। बगीचा फूलों से लदा हुआ है। आज रामू और चीमू फूल बटोरने नहीं आए। सुशील सोचने लगा, इसका कारण क्या हो सकता है। देर करने से पिताजी यहाँ पहुँच आएंगे। पिताजी ने उन्हें फूल बटोरते हुए देख लिया तो उन्हें डांटने लगेंगे। पहले भी कभी कभी ऐसा हुआ है। रामू और चीमू को सुशील रोज इस तरह इंतजार करता था। आज भी उसने यही किया, लेकिन आज उनके आने के आसार ही नहीं दिखते। अब तो उसके स्कूल जाने का समय भी हो जाएगा। जब वे नहीं आए तो सुशील स्कूल जाने को निकल पड़ा। पैंट की जेब में रामू और चीमू के लिए दो टुकड़े रोटी लेता गया। रामू और चीमू का घर उसके स्कूल जाने के रास्ते में पड़ता है।
0: रामू चीमू रोज फूल बटोरने यहाँ आते थे। उस समय सुशील उन्हें रोज रोटियां खाने को देता था। रोटी खाकर वे मारे खुशी के नाचने लगते थे, लेकिन आज भी क्यों नहीं आए, ये समझ में नहीं आया। वो बहुत से कारण सोचने लगा। रामू चीमू की बात वो बार बार भूलना चाहता है, लेकिन कहाँ भूल पाता है। उसे बार बार उस दिन की बात याद आती है जिस दिन उससे उनका परिचय हुआ था।
1: उस दिन वह अपने दादा के साथ नदी किनारे घूमने गया था। वहाँ से जब लौट रहा था तो दादा ने कहा, मुन्ना उन दो बच्चों को तो देखो। सुशील ने घूम कर देखा कि दो लड़के आकाश में उड़ते हुए बगुलों से कुछ कह रहे हैं। बगुला बगुला टीका देता जा, कौन सा टीका भाई, सफेद टीका देता जा। दोनों फिर एक साथ गाना गाकर बगुलों को बुलाते। बगुला ए सफेद टीका लगा जा, हमारी बातें सुनता जा, बगुला ए सफेद टीका लगा जा।
0: सुशील को ये लड़के बहुत अच्छे लगे। वो उनके पास जा पहुंचा, बच्चों का नाम पूछा तो रामू और चीमू बताया। कुछ ही दिनों में सुशील के साथ उनकी दोस्ती हो गई। इनसे दोस्ती के कारण सुशील के पिता ने अपने बेटों को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन सुशील कभी भी इनसे दोस्ती न छोड़ सका, बल्कि दोस्ती बढ़ती गई।
1: रामू और चीमू यहाँ के नहीं थे, अपने रोजगार के लिए यहाँ आकर बस गए थे। इनके माँ बाप मरे हुए जानवरों की हड्डी इकट्ठी करते और बाहर के बाजार में बिक्री करते थे। इसी व्यवसाय में किसी तरह गुजारा चलता था। रामू की माँ रोज भगवान की पूजा करती थी और इसीलिए रामू और चीमू फूल लाकर माँ को दिया करते थे। इन्हीं फूलों को लाने के लिए दोनों भाई रोज पौ फटते ही आकर यहाँ से फूल बटोर बटोर कर ले जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज वे क्यों फूल बटोरने नहीं आए। सुशील को इस विचार ने तंग कर रखा था।
0: इस तरह सोचता सोचता सुशील उसके घर के नजदीक जाकर रुक गया। सुशील ने पूछा कि आज फूल बटोरने वे क्यों नहीं आए, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। इतने में रामू के माँ बाप आगे आए और कहने लगे, हम लोग आज ये जगह छोड़कर जा रहे हैं, रामू और चीमू भी चले जाएंगे। सुशील को इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन रामू की माँ ने बताया,
1: हाँ छोटे बाबू, हमारा हड्डी उठाने का काम फिलहाल यहाँ से खत्म हो गया। अब नई जगह की तलाश में यह स्थान छोड़ रहे हैं। दूसरी जगह हम हड्डी उठाने का काम करेंगे।
0: इस बात से सुशील को बड़ा कष्ट पहुँचा। वो रामू और चीमू की ओर देख रहा था। वे भी सुशील की ओर एक टक देख रहे थे। उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे।
1: अंत में रामू अपने माँ बाप के साथ जाने लगा। उसके बाबा ने गाड़ी में घोड़े जोत दिए। रामू और चीमू ने सुशील से विदा ली। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सुशील भी रो रहा था। उनकी गाड़ी चलने लगी, पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेजी से।
0: उस चलती हुई गाड़ी की ओर सुशील एक टक देखता रहा। हठात उसको रामू और चीमू के लिए लाए हुए रोटी के टुकड़ों की याद आई। उसने उसे अपनी जेब से निकाला, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। रोटी के टुकड़े हाथ में लेकर गाड़ी के पीछे वो दौड़ना चाहता था कि पीछे से किसी ने उसे गोद में उठा लिया। मुड़कर देखा तो उसी के दादाजी हैं। वो दादाजी की छाती से चिपक कर फफक फफक कर रोने लगा। दादाजी के मुंह से निकला, शिशु भगवान होता है, उसके सामने जाति धर्म भाषा की कोई दीवार नहीं होती।
1: सुशील बार बार दोहराने लगा, ऐ बगुला सफेद फूल लेता जा, ऐ बगुला सफेद टीका देता जा।
0: तो कैसी लगी कहानी बच्चों? बहुत अच्छी कहानी थी, है ना? और दीदी, बच्चों को हम लोगों ने कहानी भी सुना दी, उनका मनोरंजन भी हो गया, और अब कुछ जानकारी की बातें और होनी चाहिए। तो चलिए, हर हफ्ते हम बच्चों को एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं, और वो प्रेरक व्यक्तित्व हैं
1: प्रकृति की सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत।
0: बच्चों, भारत की धरती ने अनेक महान कवियों और साहित्यकारों को जन्म दिया। उन्हीं महान साहित्यकारों में से एक नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी का। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे, और उनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, मानवता और सुंदर भावनाओं का अद्भुत मेल दिखाई देता है। चलिए, उनकी एक कविता से हम शुरुआत करते हैं।
1: मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, ना बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए।
0: मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैं गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो बच्चों, इस तरह की अनेक कविताएं सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी। बच्चों, हम आपको बता दें कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ी गांव कसौनी में हुआ था। उनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता। चारों ओर ऊंचे पहाड़, हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाएं थी। यही प्राकृतिक सुंदरता आगे चलकर उनकी कविताओं की पहचान भी बनी।
1: उनका बचपन आसान नहीं था बच्चों। जन्म के कुछ ही घंटे बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। दादी उन्हें बहुत प्यार करती थी और कहानियां सुनाया करती थी। इन्हीं कहानियों से उनके मन में कल्पना और संवेदनशीलता का विकास हुआ।
0: बच्चों, बचपन में पंत जी का नाम था गोसाई दत्त। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। वे बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, और उन्हें अकेले बैठकर प्रकृति को निहारना बहुत अच्छा लगता था। वे बादलों के बदलते रंग, पहाड़ों की सुंदरता और फूलों की खुशबू को बड़े ध्यान से महसूस करते थे।
1: कहा जाता है कि बचपन में वे पेड़ों और पक्षियों से भी बातें किया करते थे। उन्हें लगता था कि प्रकृति भी इंसानों की तरह मुस्कुराती और बोलती है। यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति जीवित दिखाई देती है। वे पढ़ाई में भी अच्छे थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से ही वे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य में रुचि लेने लगे थे। स्कूल में शिक्षक उनकी कल्पना शक्ति और सुंदर लेखन की प्रशंसा करते थे।
0: बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति से बहुत प्रेम था। उनकी कविताओं में पहाड़, फूल, झरने, पक्षियों का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, छोड़ द्रुमो की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन पंक्तियों में प्रकृति के प्रति उनका गहरा प्रेम दिखाई देता है। बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत की राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभक्ति भी उनकी कविताओं में झलकती है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो पंत जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता 15 अगस्त 1947 में राष्ट्र की स्वतंत्रता का भव्य स्वागत किया। इन पंक्तियों में राष्ट्र के प्रति उनका अपार हर्ष और देशभक्ति झलकती है। चीर प्रणमय ये पुण्य अहन, जय गाओ सूरगण, आज अवतरित हुई चेतना, भू पर नूतन नव भारत, फिर चीर युगों का तमस आवरण, तरुण अरुण सा उदित हुआ, परिदीप्त कर भुवन, सब हुआ अब विश्व सब धरणी।

0: का जीवन आज खुले भारत के संग भूखे जड़ बंधन।
1: पंत जी बचपन से ही बहुत भावुक थे। किसी को दुखी देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। वे मानते थे कि हर इंसान को प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। उनकी कविताओं में यही संवेदनशीलता झलकती है। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इन पंक्तियों में वे बताते हैं कि इंसान सबसे सुंदर है क्योंकि उसके पास प्रेम और समझ की शक्ति है।
0: बच्चों, जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका मन कविता लिखने में अधिक लगने लगा। उन्होंने प्रकृति और जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोना शुरू किया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत आदि। उनकी रचना चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया।
1: सुमित्रा नंदन पंत का जीवन आप लोगों को कई अच्छी बातें सिखाता है। बच्चों, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन और उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेकर अच्छा इंसान बनने का प्रयास हमें भी करना चाहिए।
0: तो बच्चों, ये थे महान कवि सुमित्रा नंदन पंत। और दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो हमें बच्चों से विदा लेनी होगी। लेकिन बच्चों, चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो नूतन प्रसाद की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
2: जय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा, और आज इस कार्यक्रम में चर्चा हुई गर्मियों के फल पहचाने, खाएं, खिलाएं और सेहत बनाएं, छुट्टियों में बनाएं बर्ड हाउस, बाल गीत, बच्चों के मुख से भी हमने कुछ सुना, जानकारियां रही नन्हे मधुमक्खी के बड़े बड़े काम को लेकर, बाल कथा भी सुनी हमने, और प्रेरक व्यक्तित्व थे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी देर में सुनिए कार्यक्रम जोहार रांची।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।
3: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुबह की इस सुनहरी बेला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम जोहार रांची में। मैं हूं आपके साथ अर्चना
0: और मैं हूं आरती। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एक नई सुबह की नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और ढेर सारी सकारात्मकता।
6: तो उठ जाइए, मुस्कुराइए और इस खूबसूरत सुबह का स्वागत कीजिए पूरे उत्साह के साथ। कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और प्रभु स्मरण से हो तो पूरा दिन सुख शांति और ऊर्जा से भर जाता है।
0: और सुबह का समय केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने, आत्मा को सुकून देने और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे सुंदर समय होता है।
6: बिल्कुल सही कहा आरती। जब उगते सूरज की पहली किरण धरती को रोशन करती है, पक्षियों की मधुर चहचहाट वातावरण को संगीत से भर देती है और ठंडी हवाएं मन को छूती है, तब ऐसा लगता है मानो

0: पूरी तरह शांति और भक्ति से भर दे।
1: और चूंकि मैं और अर्चना आज बड़े दिनों बाद मिले हैं, इसलिए बातें थोड़ी लंबी हो रही हैं, और इसलिए इसे आगे भी बढ़ाते हैं कि देखिए, भजन केवल संगीत नहीं होते, ये हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी भावनाओं का सुंदर संगम भी होता है। भजन सुनते सुनते मन शांत होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और भीतर एक नई शक्ति का एहसास होता है। तो आइए ना,
0: तो आइए इस सुबह में हम सब मिलकर प्रभु का स्मरण करें, अपने मन की सारी
1: चिंताओं को
0: कुछ देर के लिए दूर रखें और खुद को भक्ति के रंग में रंग लें।

0: सच में कितना सुकून देने वाला यह भजन था अर्चना। उम्मीद है भक्ति के इन मधुर सुरों ने आपके मन को भी सुकून दिया होगा और आपके दिन की नई दिन को नई ऊर्जा से भर दिया होगा।
1: बिल्कुल। और इस अब इसी सुहानी सुबह में आगे बढ़ते हैं एक और जरूरी जानकारी की ओर। घर से बाहर निकलने से पहले जान लेते हैं रांची और आसपास के इलाकों के मौसम का हाल, ताकि आपका दिन और भी बेहतर तरीके से बीते।
0: बिल्कुल। और मई के इस महीने में झारखंड का मौसम कभी तेज धूप तो कभी अचानक बादल और बारिश के रंग दिखा रहा है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि आज यानी 17 मई 2026 को और रांची और आसपास का मौसम कैसा रहने वाला है।
1: बिल्कुल। मौसम विभाग के अनुसार जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है तो आज हल्के बादल छाए रहेंगे और मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रहेगा और हल्की ठंडी हवाएं महसूस की जा सकती है।
0: और अगर तापमान की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान लगभग 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान तकरीबन 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
1: और दोपहर के समय धूप थोड़ी तेज रह सकती है, इसलिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पानी साथ रखें और तेज धूप से बचने की कोशिश करें।
0: देखिए, पिछले कुछ दिनों से झारखंड में मौसम का मिजाज तो बदल रहा है और कई जगहों पर गरज और चमक के साथ बारिश भी देखने को मिली। अब कल ही की बात ले लीजिए अर्चना, कल इतनी उमस भरी गर्मी थी, कल शाम बहुत ज्यादा गर्मी थी और देखिए फिर आज फिर ऐसे अनुमान है कि बारिश हो सकती है और फिर बादल छाए रहेंगे।
1: इसीलिए तो शाम के समय आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ इलाकों में हल्की हवा चलने की संभावना भी है। आज भारी बारिश की संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन मौसम का बदलता मिजाज कभी भी हल्की फुहारों का एहसास करा सकता है
0: और हवा की गति लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। सूर्यास्त आज शाम करीब 6:23 पर होने का अनुमान जताया गया है।
1: तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का दिन गर्मी और हल्के बादलों के बीच बीतेगा। सुबह और शाम का मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहेगा, जबकि दोपहर में गर्मी अपना असर दिखा सकती है।
0: तो श्रोताओं, आप मौसम का आनंद लीजिए, लेकिन अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। पर्याप्त पानी पीते रहिए, हल्के कपड़े पहनिए और अब इसी सुहाने मौसम के एहसास के साथ वक्त हो गया है एक प्यारे से गीत का।
1: आइए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: आरती, आज की दुनिया में अगर किसी चीज ने इंसानों को सबसे तेजी से जोड़ा है तो वह है संचार और सूचना तकनीक। मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों ने हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि अब दूरियां सिर्फ नाम की रह गई हैं।
1: बिल्कुल, और इन्हीं आधुनिक संचार सेवाओं और ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के महत्व को समझाने के लिए हर साल 17 मई को विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी ITU की स्थापना की याद में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 17 मई 1865 में हुई थी।
0: आज तकनीक ने शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और सामाजिक जीवन हर क्षेत्र में नई क्रांति लाई है। जहां तकनीक हमें आगे बढ़ा रही है, वहीं तेज रफ्तार जीवन शैली और बढ़ता तनाव हमारी सेहत पर भी असर डाल रहा है।
1: और आपको बता दें कि आज एक दूसरा महत्वपूर्ण दिवस भी है अर्चना, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है आज। तो आजकल देखिए, काम का दबाव, देर तक मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल, अनियमित दिनचर्या और तनाव, ये सब हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्या को बढ़ा रहे हैं। और इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और सेहत को अच्छा रखने के लिए खेल कूद भी बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: तो खेल जगत की अगर बात करें तो वर्ष 1987 में भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। अपनी शानदार बल्लेबाजी और अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाले गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।
1: बिल्कुल, और देखिए, आज ही के दिन 2010 में भारतीय मुक्केबाजों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते

0: वे सभी 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह समेत दिनेश कुमार, परमजीत समोटा, अमनदीप, सुरन जॉय और जय भगवान ने अपने अपने वर्ग में जीत हासिल कर भारत का गौरव बढ़ाया। विजेंद्र सिंह को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर घोषित किया गया और भारत ने टीम चैंपियनशिप भी अपने नाम की।
1: बिल्कुल, और अब नजर डालते हैं 17 मई को जन्मे कुछ विशेष व्यक्तियों पर। साल 1749 में जन्म हुआ एडवर्ड जेनर का, जिन्हें चेचक के टीके के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। चिकित्सा विज्ञान में उनका योगदान मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
0: 1897 में प्रसिद्ध हिंदी और ब्रज भाषा के कवि और साहित्यकार धीरेन्द्र वर्मा का जन्म हुआ। उनके साहित्यिक कार्यों ने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: 1953 में हिंदी सिनेमा की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।
0: और अब आखिर में बात उस आवाज की जिसने गजलों को घर घर तक पहुंचाया। जी हाँ, आज ही के दिन साल 1951 में जन्म हुआ मशहूर गजल गायक पंकज उधास का। अपनी मखमली आवाज, दर्द भरे अंदाज और यादगार गजलों के लिए पहचाने जाने वाले पंकज उधास ने संगीत प्रेमियों के दिलों में एक अलग ही मुकाम बनाया।
1: सही कहा आरती, और जैसे उनके जो कुछ बहुत ही फेमस गाने हैं, जैसे चिट्ठी आई है, नाकेजरे की धार और आहिस्ता, उनकी गजलें आज भी लोगों की जुबान पर है। तो आइए पंकज उधास साहब को याद करते हुए सुनते हैं उनका एक बेहद खूबसूरत सा नगमा।

0: और देखिए इस खूबसूरत गीत के साथ अब धीरे धीरे वक्त आ पहुंचा है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कि जोहार रांची का आज का ये सफर आपके दिल को सुकून, चेहरे पर मुस्कान और मन में नई ऊर्जा देकर गया होगा।
1: बिल्कुल, और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हर सुबह आपके लिए कुछ नया, कुछ अच्छा और कुछ प्रेरणादायक लेकर आए।
0: जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी कुछ पल खुद के लिए निकालना भी बहुत जरूरी होता है। सुबह की ताजी हवा, अपनों की मुस्कान, अच्छे विचार और मधुर संगीत, यही छोटी छोटी बातें जीवन को खूबसूरत बनाती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। अगर सोच सकारात्मक हो, इरादे मजबूत हो और मन में विश्वास हो तो हर दिन जिंदगी को बेहतर बना सकता है।
0: बिल्कुल अर्चना, और हर सुबह नई रोशनी लेकर आती है, हर दिन जिंदगी को सजाती है। हर सुबह नई रोशनी लेकर आती है, हर दिन जिंदगी को सजाती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कान ही हर गम को भुलाती है।
1: और एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार और अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी के हर छोटे छोटे पल को खुलकर जीते रहिए। तब तक के लिए रेडियो सखी आरती और
1: अर्चना को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार, जोहार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर यात्रा के 90 वर्ष। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर झारखंड के लोक कलाकार हरि मुंडा से अरविंद मित्रा की बातचीत आप सुनेंगे। अभी प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।

0: तो भाई बहन मन ई जे मधुर धुन रोड़े मन सुनले नी ई है के सारंगी। और सारंगी आज देखब नी कि कोई भी मंच में बड़ा कम और बिरले देखे के लिए मिलेला। धीरे धीरे एक ऐसा वाद्यंत्र है जे आज हमरे मन कर बीच से विलुप्त होते जाते, कलाकार भी विलुप्त होते जाते हैं, बजवैया भी बहुत कम है। आकाशवाणी कर देश से निकल के बाहरी दुनिया तक कर पहुँच है 1936 ईस्वी में इकर स्थापना करल जा रहे। इकर जे उद्देश्य है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये तीनों के उद्देश्य के लेके ये आगे बढ़ते जाते और 90 साल कर लंबा सफर पूरा कर चुके। तो आज ये दिन में, आज ये मौका में आज हमरे मन एक ठो कलाकार के बुलाए है। और ये कलाकार भी कोई आम कलाकार ना लगे, बड़ा कोई साधारण कलाकार ना लगे, बल्कि इनकर भी सफर अगर देखब नी आकाशवाणी रांची में 50 साल कर पूरा हो चुके है। तो इनकर कैसे जुड़ना होलक, कैसे इनकर आकाशवाणी से जुड़ाव होलक, इनकर अनुभव के आज हमरे मन जानब, इनकर लंबा सफर के आज हमरे मन जाने कर कोशिश करब। तो चलू हमरे मन भेंट करीला, अपन स्टूडियो में इनके हमरे मन बुला ही। तो भाई सबसे पहले तोर और बहुत बहुत स्वागत है, जोहार।
1: जोहार।
0: अपन परिचय दे दो, कहाँ का रहे वाला ही और नाम का होलक।
1: हमारा नाम होलक हरी मुंडा, गांव लेपसर, पंचायत तरंगा, पोस्ट ऑफिस चोरिया, प्रखंड चान्हू, जिला रांची के निवासी ही।
0: बहुत बढ़िया हरी मुंडा जी, जिसन के हम जाना थी रोड से बातचीत हमर होलक, तो रे बताली कि लगभग 50 साल पूरा हो गलक रोड आकाशवाणी रांची में।
1: हम 1977 सितंबर 27 तारीख से सारंगी वादन यहाँ आकाशवाणी में शुरू करी और आज बजा थी तो पूरा 50 साल हो।
0: बहुत बधाई रोड के, बहुत बधाई। और कितना गर्व कर बात है कि आकाशवाणी रांची जे की इकर मूल उद्देश्य है कि जे भी स्थानीय कलाकार हैं, जे लोक कलाकार हैं, लोक संगीत है, ऐसे के संरक्षित करे करी कर अपन एक उद्देश्य है। और उके पूरा करते करते रोमन संगे संगे चलते चलते आज रोड 50 साल पूरा हो गलक नहीं।
1: हाँ।
0: तो जाने खोजब कि जब पहला धाव रोरे आकाशवाणी रांची आए रही से बरा कर रोड कैसा अनुभव रहे, कैसे रोरे इकर से जुड़ली।
1: उस समय चिट्ठी दे के बुलाल जात रहे, उकर बाकायदे 15 दिन के पहले चिट्ठी भेजल जात रहे, तब उकर फिर एक्सेप्टेंस माने स्वीकृति पत्र आए के फिर हमने जमा कर डाक द्वारा या फिर आए के तब फिर बोला था कि भाई आर्टिस्ट आवी, कलाकार आवी, बजावे, ऐसा रहे।
0: तो कैसे आली, मतलब जुड़ाव कैसे हो लग रहा।
1: हाँ, जुड़ाव पहले हम सब शुरू कर रही सारंगी वादन तो सीख रही, तो 1977 में शहीद दिवस मनाल जात रहे 23 तारीख के, पत्र में देख ली समाचार पत्र में कि शहीद दिवस मनाल जाते। उस समय हमारे केकरू परिचय नहीं रहे, हम बजात तो रही गांव घर में लेकिन केकरू से कोई परिचय नहीं रहे। हम वहाँ चुपचाप आ गेली और वहाँ कोई परिचय रहे तब आखिरी तब हम बैठल रही हुआ, तब वहाँ सब निकल गए रहे, वहाँ के अध्यक्ष और संत कुमार पांडे और लाल रणविजय नाथ सादेव रहे। हमके पूछना बाबू कहाँ घर है रे, गीत उत गावी ले का। तब कही नहीं हम तो गीत नहीं गावी, हल्का फुल्का गावी ले लेकिन सारंगी बदावी ले। तब तो दोनों बहुत प्रभावित हुए और रणविजय नाथ साहब कहना नाम पूछना तो कल हमारा नाम होलक हरी मुंडा, तो रणविजय नाथ साहब ना कि हम मुंडे परिवार से ही ऐसा बोलना। तो धोती पहन ले रहे और संत कुमार पांडे भी धोती पहन ले रहे और वहाँ का अध्यक्ष भी, तब संत कुमार पांडे भी प्रभावित होना, पांडे जी हमके अपन डरा ले गए। रात के बहुत बढ़िया विचार वह दिन बनल कि हमारे घर दू गो लेडी मन है गीत गवैया और हम गीत भी जोड़ी ल और गावी ल भी तो रावरे सारंगी बजावी ल, तो एक ठो मंदिरचा खोजो और हमने आकाशवाणी में ऑडिशन देव स्वर परीक्षा देव कही के कली बहुत बेस। हम तो वह चाहते रहे कि कैसे आकाशवाणी पहुंचू।
0: हाँ हाँ।
1: तो मार्ग अपने स्वतः मिल गल। तब तो वहाँ हमने जब आए गली आकाशवाणी वह साल माने तुरंत दरखास्त पड़ गलक और वह साल 77 में ही जुलाई में हकाल आकाशवाणी के मैदान जो है अखन दक्षिण साइड ने वहाँ सब तारों तरफ कर कलाकार मान आ रहे हैं, बहुत कुछ रहे तो सब कोई बजात ने अपन अपने दल में, तो हमने भी बजात रही। तो उसी क्रम में सुगिया बहन और तत्कालीन बांसुरी वादक दे रहे हैं जगदीश प्रसाद ठाकुर जेके रोजनी लकड़ा नाम है, तो ऊ रहे वो दोनों घूम घूम के देखत रहे हैं। तो ऊ मने कुछ ही दूरी में हमके जाके देखने तो वो मन आपस में बोलना है कि बहुत अच्छा लड़का बजाते है सारंगी लेकिन गायक पक्ष कमजोर है, तो इनके अलग से मौका देवल जाए। तो हमके सुगिया बहन हकालें नागपुरिये में कह बाबू सुनू तो हम कल का कही गली बैठ के तो रावर एक छो दरखास्त लिखो, तो हम कहली दरखास्त का दरखास्त लिखा तो नहीं हेडिंग बता लें कि आकाशवाणी केंद्र निदेशक के कहें लिखे का और राव के एक छो अलग से बजाए खोई सारंगी कहें ग्रुप के साथ तो बजाते ही, लेकिन सिर्फ रव के अकेले धुन बजाए के तो दल तो फेल कर गलक। वह जो हम अकेले जो बजा ली सेकरे में पास कर ली और एखन तक आकाशवाणी में आज 50 साल पूरा दे ली।
0: बहुत बधाई फिर से, बहुत बहुत बहुत बधाई। तो से बेरा उम्र और कितना होत रहे?
1: से एखन 27 लगभग रहे।
0: अच्छा, तो रुकी याद है से बेरा कौन धुन के रोरे बजाए?
1: हाँ, याद तो है,
0: तनी सुनाब तो।

0: ओहरे कचकच बड़ा बढ़िया बहुत बेस लागलक, लेकिन जाने खोजब कि कौन धुन रहे कौन राग रहे कौन
1: मर्दानी झूमर में है। ओकर बोल है

0: बहुत बेस बहुत बेस बहुत बढ़िया गीत। आज 50 साल पूरा हो गया गीत कर नहीं ते केकर लिखल रहे रो खुद से लिखल है कि
1: केकर लिखल नहीं लागे बहुत पुराना गीत है के कौन कवि लिखे का करे कर
0: माने लोक गीत है
1: लोक गीत है
0: सुनते सुनाते आओ यह तो है। और आकाशवाणी का यह उद्देश्य भी है और कि जितना भी कलाकार हैं जितना भी छोट बड़ जितना भी लोकल हेराल जितना कलाकार हैं सबके एक ठीना जुमा करे कर इकर उद्देश्य है आकाशवाणी कर। और इस सफर में आगे बढ़ते हैं जाते जितना भी आज कर दौर में भी जितना कलाकार मन है उमन के भी संरक्षित करे कर कोशिश आकाशवाणी कर है। और जैसा कि हमारे मन सबको जानीला हरि मुंडा जी कि लगभग 99% जो आबादी है हुआ तक आकाशवाणी कर पहुँच है। चाहे भी कोई भी ऐसा मौका हो चाहे आपदा कर मौका हो चाहे बहुत खुशी कर मौका हो सब ठीना आकाशवाणी कर पहुँच है। अब देखब कि देखो कहे ना नहीं कि समय कर मांग है जब दुनिया बदलेला तो अपने आप के भी बदले कर आदमी के जरूरत पड़ेला। अगर खुद के अगर आदमी नहीं बदली नहीं तो आदमी हेराई जाए तो वह दौर में आकाशवाणी भी चलते जाते। पहले कर दौर रहे रोरेमन जी देख रही हम तो जे दौर कर उड़े बात करे थे से दौर में तो हम रहबो नहीं करी तो से बेरा कर दौर और आइज कर दौर काफी कुछ बदल चुकी है। तो पहले कर जमाना में जब रुड़े आए रही से बेरा आकाशवाणी में का चीज रहे तनी हम जाने खोजब हमरे मन कर सुनू या भाई महन मन भी जानब रोन कर माध्यम से जानब कि आकाशवाणी में पहले कैसन का रहे।
1: श्रेष्ठ समय आकाशवाणी एगो साधारण अथी में रहे जहाँ अखन अथी होल वहाँ घर में रही सब घर नहीं बन रही तरह कर सुविधा नहीं रहे और इस पुल द्वारा उनकर अथी होत रहे रिकॉर्डिंग
0: फीता वाला नहीं
1: फीता वाला हाँ वही रहे।
0: अच्छा तो उकर में और क्या क्या साधन बन रहे ऐसा सारा माइक उक सब व्यवस्था रहे
1: माइक उक रहे सुविधा
0: और वाद्य यंत्र मन
1: वाद्य यंत्र तो उस समय सारंगी बांसुरी कही अलाव रहे मतलब साफ लिखल रहत रहे आकाशवाणी कर चिट्ठी में कि सारंगी बांसुरी छोड़ के अन्य सात्र माने साज का आवश्यकता नहीं है उसको अलाउ नहीं करल जाए ऐसा रहे हारमोनियम नहीं बजा सकत रही बेंजो नहीं बजा यहाँ का ट्रेडिशनल चीज बांधल जात रहे सारंगी और बांसुरी के ही टोहिला के फिर मानल जात रहे
0: टोहिला भी तो अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। तो हिया से मान लो कोई कलाकार ठीना अगर वाद्य यंत्र न खे तो देवल भी जात रहे
1: हिया रहे एक ठो सारंगी दिलीप नाथ महलिकर लेकिन भरसक कहते रहे कि अपना साज लेते आओ तो वो भी क्रम अलग हमारे साथ एक बार ऐसा कोई अच्छा कलाकार आ रहे हैं तो उस समय दिलीप नाथ महली जो यहाँ कर अस्थाई कलाकार हैं वो नहीं रहे तो हमके प्रमोद कुमार राय जो संतु भाई के नाम से प्रचलित रहे वो कहना है हरी जी से रावरे आए ही तो ये कलाकार बढ़िया है और अच्छा के होवे के चाही तो क्या रावरे महली के सारंगी बजाए पारबे हम कहली कि के तो छुई के देखे हुई तो उनके हम देख ली थोड़ा सा 2 मिनट तो कहली हाँ बाजी तो उस सारंगी के हम बजाए रहे
0: तो से बेरा कौन धुन के निकसाय रहे
1: उ धुन के थम के आज नहीं आवत है सेखन तो जे गीत गाए रहे सेकरे साथ संगत कर रही हम
0: और उकर बाद लगातार और सफर आगे बढ़ते
1: हाँ बढ़ते गला उकर बाद हमार परिचय सबसे समझू कि जखन यहाँ रांची में आकाशवाणी नहीं रहे सेखन पटना से होत रहे कार्यक्रम और उ पीरियड में पांडे वीरेंद्र नाथ जात रहे पटना गीत गावे उनकर साथ भी गावे के मौका मिललक हमके कई एक बार
0: यहाँ से रोड़े जात रही पटना
1: नहीं हम पटना नहीं गए वो जात रहे
0: अच्छा, अच्छा।
1: लेकिन उनकर साथ भी बैठ के बजाय के मौका मिललक और वो कहत रहे कि हरी बाबू से सारंगी के हमारे घर में राखू और समय समय पर आऊ कह के लेकिन कल हम उलझल रही लो ऐसा आवे हमके संभव न
0: तो जब आकाशवाणी रांची का स्थापना

0: होलक तो कतना रोरे मन के फायदा ही कर होलक जितना भी कलाकार मन ही रोरे मन
1: सबके फायदा होलक जैसन सखन रहे नहीं खोज खोज के अथी करल जात रहे जब होत रहे तो अच्छा और उस समय रहे कि मतलब वो पूछे वाला भी और गायक वाला भी सबके अच्छा जानकारी रहत रहे ये नहीं कि मैंने ये सब राग को कब गाया जाता है ऐसा ऐसा पूछल जात रहे अखन तो कुछ जानकारी न खे तो गीत डाले कोई समय उस समय मौसम संबंधी गीत होत रहे और गवैया के भी पूछत रहे कि गायन का समय कब है ऐसा पूछत रहे बहुत आदमी फेल कर जात रहे
0: तो मतलब आकाशवाणी जे है हमरे कर जितना भी संस्कृति है गीत संगीत है लोक कला है सबके संरक्षित करके राखे में एकदम मुख्य भूमिका अपन निभाएल नहीं।
1: हाँ।
0: अच्छा एक चीज बताओ हरि मुंडा जी जब पहिल धाव रोरे हियाँ बजा के बजाए रही से बरा जब रोरे घर घूर के गेली अपन गांव घूर के गेली आदमी मन कर कैसन रिएक्शन रहे का मन कर कहना रहे
1: मतलब गाँव घर में सुन ले की हरि भाई जाते सारंगी बजाए रेडियो तो कई बजे बाजी से लाइव होते रहे रिकॉर्डिंग नहीं होता लाइव होते रहे प्रोग्राम तो सब रेडियो खोल खोल के सुनत रहे कि बहुत बजा बाजल बहुत अच्छा बाजल
0: बहुत खुश
1: हाँ ई गीत के बजा ले ई गीत के बजा ले गाँव में कहते रहे धुन रहे ई रा कर धुन रहे ऐसा कह के सब कोई बहुत और उस समय से हमार माने ऊ आसपास अभियो माने हुजंकर दसों गांव हमके बहुत अच्छा से सब जाने में
0: बढ़िया बढ़िया। तो देखो पहले कर तो दौर रहे कि वो ट्रांजिस्टर रहे रेडियो खोलत रहे ऊपर मीटर के मिलात रहे तब जाके रेडियो बाजत रहे लेकिन अब तो काफी कुछ तकनीक बदल जाए है अब तो मोबाइल के खोलो ऐप के निकालो और चिपो कर बादे गाना शुरू भे जाए रेडियो शुरू भे जाए कितना अंतर देखत ही रोरे
1: देखो दुनिया परिवर्तन कर तो अथी है परिवर्तन नहीं हुई तो विकासो नहीं हुई
0: तो मतलब अब मोबाइल का जमाना आ जाए है तो अब तो बड़ा सुलभ पहले से ज्यादा अब सुलभ हो जाए है आदमी ठीक ना।
1: हाँ अखन सब कहत है कि भाई यूट्यूब में तो रहो पूछे ना हम के
0: आकाशवाणी का ऐप भी है उगर माध्यम से भी आदमी मन सुन सके ना
1: कई बार कई आदमी कहने कि भाई तोर वहाँ यूट्यूब में हो हम कहीं तो सर्च करके देख तो सुने ना यूट्यूब में भी बाजत थे ले सुने ना
0: तो मतलब नया दौर में भी कलाकार मन के आकाशवाणी बचाए कर आगे कोशिश में लागल है। अच्छा एक चीज बताओ रोज ये यंत्र हम देखा थी जेके सारंगी का है ना काफी पुराना बुझाते हैं हमके
1: नहीं ज्यादा पुराना ना के हम समझो कि बहुत सारंगी बना ली बहुत कोई मैंने कहना कि हम सीख तो हम फ्री में बहुत के सारंगी बना बना के दे ली लेकिन कोई सीखल नहीं और संरक्षित के लिए हमके मन बंधु परिषद जो बरियात रोड में है वहाँ मांग रहे हैं सारंगी दूठो जेकर में हमके ऊपर पारिश्रमिक दे रहे हैं मैंने 10,000 रुपया और फिर 22-23 में खेलगांव में फिर एक ठो सारंगी बनाए के दिल्ली और इकर बाद 23 के रामदयाल मुंडा संग्रहालय जो मुराबादी है वहाँ हमार देख रेख में 5 ठो सारंगी बनाए के देवल है
0: और आपन बनाल
1: और वहाँ अथी एक ठो तो अपने बनाल के दिल्ली और वहाँ 5 दिन मान 8 दिन का वर्कशॉप रहे जेकर में मिस्त्री मन के हम बनवा ली हमारे देख रेख में बन लगे
0: रोरे जे एखन धरले ही से कतना दिन कर है
1: इकर लगभग 10 साल हो गए
0: कैसे के का तरी बना ली बड़ा एकदम इकर में तो देखा थी एक से एक यंत्र लागल है।
1: असल में ना शुरू होलक हमारे खेत जगह चना खेत रहे ना स्कूल पीरियड में हमके उस समय चना के मैना चिड़िया मन खात रहे तो माए बाप कहने कि स्कूल जात के पहले जा खेत दे रहे उहे पीरियड में मल्हार जाती मन कर उहे जगह डेर आ रहे एक तो कटहर गज के नीचे उहे मन के देख ली सारंगी बजाए कर हम प्रभावित हो ली पहले तू मन छुए नहीं देना हमके लेकिन बाद में 8 दिन रहली तो छुए देना है तो देखनी कैसे ऐसे तो कैसे बाजेलू मन से हम जानकारी ले ली तो कहना है भाई कर में तो ई से ई है तार फार तू को ज्यादा जंत्र तो नखे तो लकड़ी के रहे खोल बना ले चमड़ा से छारल है ई घोड़ा कर बाल है तार है तो सब देख ली तो घोड़ा के बाल कहाँ उपलब्ध हुए तो उस समय तक केकरो से परिचय नहीं तो वो मन कह रहे हैं कि मोरेबा का रस्सी से भी बाजेल तब मोरेबा का रस्सी से बजात रहे उस समय घोड़ा के बाल नहीं मिल रहे बाद में जब परिचय हो रहे तो गांव घर में अगल बगल में साहु महाजन मने घोड़ा लाना था तू मन से मांग ली तो स्वतः मन दे देना बहुत खुश होना कि हमारे गांव घर का एक तो कलाकार घोड़ा के बाल मांगा थे तो का है एक उमन खुशी खुशी दे
0: तो ये कौन लकड़ी कर बनल है
1: ये एक ठो लकड़ी है जठरोपा
0: अपन से बना ली सारंगी है। आज तो देखो मंच में हमके बड़ा कम देखे के लिए भेटाएला हरि मुंडा जी तो कैसे तो धीरे धीरे तो विलुप्त होते जाते
1: नहीं विलुप्त होने का कारण इकर में अब के कहल जाए
0: आकाशवाणी तो अपन देखो पूरा काम करत है, और जितना भी कलाकार है रूढ़ मन देखो आई जरूर 50 साल पूरा हो गलक, तो 50 साल कर मौका में आई जरूर मन के रूड़ के हमारे मन

0: का ही बोला ही सच सम्मान रूप के फिर से हमरे मन सुनत थी और तब आकाशवाणी तो अपन पूरा उद्देश्य के पूरा करते जाते हरि मुंडा जी, लेकिन हमके लागे ला कि जे भी कलाकार हैं उमन के अगला पीढ़ी तैयार करे कर दरकार है, जैसन कि रोरे ही अगर रोरे अपन कला के अगर दोसर के अगर नहीं बाँटब तो रोठिना सिराई जाए, लेकिन अगला के बाँटब तब तो अगला जानी, तो हमके लागे ला कि कलाकार मन कर भी बड़ा भूमिका होएला कि अगला पीढ़ी तैयार करे कर।
1: नहीं नहीं इकले तो जब तक आदमी के धैर्य बांध के जोगी नहीं बनाल जाए कहन तो कहावत है देहात में तो तरह से नहीं हुई उके तो खुद कही कि भाई हम सीखब तब नहीं कहे कि वहाँ अखन आब राखल है राम दयाल मुंडा का अथी में पाँच ठो हुआ दू ठो एक ठो हुआ और उकर बाद हमके अचानक राम दयाल मुंडा कर बेटा फोन करना है तो कि नहीं हमके एक ठो सारंगी बनाए दे तो उनके एक ठो सारंगी बनाए दिली
0: तो देखो नया पीढ़ी मतलब सीखे खोजा
1: सीखे लेते हैं। उकर बाद बेड़ो कॉलेज कर एक प्रोफेसर हमके कही रहे हैं तो उकर बाद वो मटिया दे रहे हैं
0: तो फिर हम रोड आकाशवाणी कर रोड सफर है सेकर बटे हम घूरे खोजब हरि मुंडा जी जब रोड़े पहिल धाव वाली उकर बादे रोके लगातार हिया कार्यक्रम मिलते चल गया
1: हाँ।
0: तो रोड़े हिया फिर जे ऑडिशन हुए रहे बी हाई रोड़े भी हो
1: हाँ, आगे तो बीर ग्रेड रही उकर बाद फिर बी हाई ग्रेड कर अथी होलक उकर बाद सब भाषा भाषी में संगत करे कर मौका मिललक नहीं उरा मुंडा हो खड़िया संताली पचपनगनिया कुरमाली खोरठा सभी भाषा में यहाँ
0: का अच्छा, सब भाषा में रोले बजाए ले
1: हाँ, जितना क्षेत्रीय भाषा सब में संगत कर ली है।
0: देखो हमरे मन कर नागपुरी कर बात अगर हम करब नी दिकर हर मौसम कर हर पहर कर एक ठो गीत अपन होएला
1: हाँ।
0: और सब कर अलग धुन भी होएला
1: हाँ।
0: एखन कर समय में जे धुन बजाल जाएला से के रोले तनिसन बजाए के सुनाब तो
1: एखन जैसे बैसाख आ गेलक नहीं तो उदासी राग गामे हमनी कर क्षेत्र में स्वर है

0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उदासी राग हो,
1: हाँ, उदासी राग
0: बहुत बढ़िया। तो हरि मुंडा जी रोर से हम जाने खोजब कि जब आकाशवाणी से रोरे जुड़ ली तो हियाँ रोर कुछ तो अनुभव ऐसा हो भी कुछ ऐसा सुखद अनुभव जे कि हमरे मन रोर से जाने खोजब ऐसा कोनो बात है तो बताओ। तो अपन जो पुराना अनुभव है से कि हम जाने खोजब कुछ सुखद अनुभव जे रोन के हो है।
1: जब हियाँ से जुड़ ली तो बहुत आदमी एक ठो भावना रहे अगल बगल में एक ठो कि नहीं माने बिरहोर मलार सारंगी बजाएं ऐसा भावना रहे। जब सुन लें कि हरि मुंडा तो सब आदमी भौचक रह गए कि मुंडा भी बजा ले सारंगी। और यह क्रम में बता थी जब बिरसा चौक में बिरसा जयंती मनाल जात रहे तो उस समय हम भी रही तो गीत मन बहुत गानों कर बाद हमार नाम लेने की मांडर से आए हैं हरि मुंडा उ सारंगी बजाएंगे। तो एक मुंडा लड़का वही जंकर रहे जब मुंडा सुनलक तो उछल पड़लक और हमार आसरा देखा थे मन से घायल कि कखन उतरी कर भेंट करब। तो ऐसा मन से खन जाति कर भी सोचते रहे कि मलारे भर बजाए न सारंगी ऐसा भावना रहे।
0: अच्छा हियाँ
1: उनकर से होलक शिबू भाई जे रहे यहाँ कर जे दुर्गा पांडे नाथ राय उनकर से प्रफुल्ल कुमार राय से बिंदेश्वरी मिश्र से नईमुद्दीन मिर्दहा से इतना पुराना कलाकार। अब खोरठा में शिवनाथ प्रमाणिक ए के राय शिवनंदन पांडे गरीब उराव भाषा से जत्रु उराव रायसन उराव मैंने मुंडारियो भाषा से रामदयाल मुंडा से चार बार आकाशवाणी में अथी कर ली बजा ली। तो और कतना कतना से उन्होंने कह के न कह सबकर से बजा ली
0: और कभी दिल्ली भी जाए कर मौका लगा।
1: हाँ दिल्ली भी गली हम सारे।

0: के चूहा काट देवत रहे ना चमड़ा के तब एथी ठोक दे रही टीन के तो वहाँ के जो बिलास सालवे रहे कहला कि नहीं नहीं नहीं आपका आयरन नहीं चलेगा नो नो नो कह के कहा था तो फिर कहने कि सर तो हमको दीजिए दो घंटा का समय इसको हम तुरंत चेंज करते हैं कहले नहीं अबर हम आपको देते हैं। फिर दूसरा साल उदयपुर हकाए रहे उन्हें फिर कहने कि आपका सारंगी चेंज हुआ कि नहीं तो हम कह दी हाँ हो गया फिर बजाय रही
1: तो दिल्ली आकाशवाणी कर बात रही बता
0: नहीं आकाशवाणी में दिल्ली में नहीं जा रही वो थी अखरा एक ठो रहे मंच वहाँ जा रही और माने कहूँ कि मती पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कर बुलाहट रहे।
1: अच्छा अच्छा
0: अच्छा दिल्ली तो हम तीन चार बार गली बजावे पटना में हकाले एथी मेला सोनपुर मेला में हुआ जा रही उकर बाद आर्मी डे बनावे हकाए रहे पटना में दो बार आकाशवाणी में सारंगी बजाई और आर्मी डे गली फिर सोनपुर मेला गली आकाशवाणी भेज रहे हैं।
1: पहचान दिवाक में आकाशवाणी कर कितना बड़का भूमिका है कितना का मानी लरूरे।
0: हम तो बिल्कुल साधारण है गरीब परिवार कर कहूँ किसान परिवार खर गरीब तो नहीं कह सका थी मैंने जी एक खाक पर रह जमी लेकिन जो पहचान आकाशवाणी देलक वो पहचान उनके बुझाएल कि विविध भारती से भी बाजलक गीत बहुत जगह कला के चलते बोली इंडिया कर हमके बुझाएल कि कोई ऐसा राज्य नहीं है जे कि 10 से 15 व्यक्ति हरि मुंडा के नहीं जाने भले गांव घर कर नहीं जानते लेकिन जाने हरि मुंडा की है सारंगी वादक से और खास करके सारंगी वादक के बहुत आदमी च्वाइस से देखे ना ऐसे तो अखन बहुत तरह का साज निकल है लेकिन इके है कि यही ट्रेडिशनल चीज है। और उदयपुर में जब बुलाए रहे विलास सालवे तो कहने कि सारंगी आगे चलेगा उस दिन खाली धुन रहे बाजे तो कहली कि कैसे हुई होगा कह के कहे कि इसमें बहुत सा तार है इसमें अगर हमारा धुन से इसको कहेंगे तो नहीं जुड़ सकता इसलिए इसी का धुन में हम लोग मिलाते हैं उसके बाद हम आगे आगे चलेंगे तो हमके लीड करे कोई रहे और हम बहुत अथी करें वहाँ और माने रेत के बजाय वाला और भी रहे हैं एक ठो रहे और आसाम बटे कर एक ठो उड़ीसा कर रहे हैं लेकिन उमन में आधुनिकता रहे और ये सारंगी ने कहने कि यही ट्रेडिशनल चीज है
1: मतलब आकाशवाणी रोके काफी पहचान दे लग गोटा देश दुनिया में रोके पहचान दिवाक में इकर बहुत बड़ भूमिका हरि मुंडा जी जिसन की हमरे मन सबको जानी ला कि वंदे मातरम कर 150 साल पूरा हुई चुकी है तो ई मौका में हमरे मन हर कोई वंदे मातरम के सत सम्मान हमरे गावत भी तो हम चाहब कि रोरे भी तनिसन सारंगी में इकर धुन के निकसाऊ।

0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगलक हरिमुंडा जी। रोरे आकाशवाणी से जुड़ली और लगातार सेवा रोरे देते आवत ही। आकाशवाणी कर भी एक उद्देश्य है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। एकर उद्देश्य भी है कि सूचना शिक्षा और मनोरंजन जितना भी कलाकार हैं सबके संरक्षित करे कर एक ठो प्रयास में आकाशवाणी लगातार 90 साल से जुटल है और आगे भी कर यात्रा लगातार जारी रही। रोरे मन जितना भी कलाकार है इमन कर भी आकाशवाणी कर बहुत बड़ भूमिका है कि रोन मन के संरक्षित करके रखलक। आगे जैसन के रोरे बताली कि आकाशवाणी से जुड़ ली तो रुके गोटा देश कर आदमी मन रुके जान लें सारंगी कर माध्यम से। तो ऐसा ऐसा जितना भी कलाकार हैं सिके आकाशवाणी उमन के बचाए के राखे में अपन बहुत बड़ भूमिका अदा करते आवे थे। तो हरिमुंडा जी जाते जाते रोर से हम जाने खोजब कि जे भी नवा कलाकार हैं जे छोट छोट छुआ मन है जे गीत संगीत और ऐसा वाद्य यंत्र से जुड़ल हैं उमन के रोड़े का संदेश देवे खोजिला और आकाशवाणी कर जे श्रोता मन है उमन के रोड़े का संदेश देवे खोजिला।
1: हम चाहब कि इके सरकार से चाहे जैसे भी हो गवर्नमेंट एखन तो बहुत अखरा और झखरा सब बना थे लेकिन इके संरक्षित करे के लिए इके आगे बढ़ाए के लिए कलाकार जे सीखत है सीखे मान दे देवे के पड़ी। बजाते सके तो नहीं जे सीखी सीखे देवे को मान दे सिखा सके मिले चाहे नहीं मिले लेकिन जे सीखे चाहते के मान दे गवर्नमेंट दे तभी के सीख सकत है हमके बुझाएल हमारे तो यही नजर आवेल।
0: और आधुनिकता जे एखन धीरे धीरे हमरे मन कर गीत संगीत में आते जाते उके का देखी ल रे कैसे देखी ल।
1: देखो वो आधुनिकता समय के अनुसार वो ठीक है लेकिन आधुनिकता कर कलाकार मन से भी हम आग्रह करब वो तो इलेक्ट्रिक से बाजत है वो मन के वॉल्यूम कम करके सारंगी के भी संगे बजाय चाहिए या बांसुरी के भी तो सब बाजी तोहिला भी जहिया जब हो रहे दूरदर्शन के उद्घाटन श्यामली हॉल में उस दिन भी हमने जाए रही और जगदीश प्रसाद ठाकुर बजात रहे बांसुरी हम सारंगी तोहिला में एक तो हनी पंसारी रहे सबकर अच्छा आवाज़ आ रहे तो खास करके ऑपरेटर मन भी गलती है और जो आधुनिक साज जो बजात है ना वो मने खाली कर सोचे ना कि हमारे आवाज़ जाए ऊ के सोचे खोए अगर वॉल्यूम ठीक करके अगर सारंगी के साथ चले तो बाजी
0: एकदम सही बात है भाई कि हमरे मन के अपन जे भी पारंपरिक चीज है से के हमरे मन के बचाए के रखना है चाहे गीत हो चाहे वाद्य यंत्र हो आई जे उके बचाए कर बहुत दरकार है। आकाशवाणी लगातार इकर में जुटल है अपन जे भी कलाकार हैं जे भी वाद्य यंत्र हैं जे प्राचीन सभ्यता संस्कृति है से के धीरे धीरे आगे बढ़ाए में आकाशवाणी बड़ा मुग्ध योगदान है। तो हरिमुंडा जी रोरे हमरे मन कर स्टूडियो में आली अपन 50 साल कर जे अनुभव है आकाशवाणी से जैसे कैसे रोरे जुड़ ली और इकर माध्यम से रोके कैसे कैसे पहचान मिलक सारा सफर के रोरे बड़ा बढ़िया से बता ली। तो आशा करीला रोर इसने लगातार सफर आगे बढ़ते जाए आकाशवाणी से रोरे इसने जुड़ ले रहो तो रोरे अपन समय के दिली आकाशवाणी से जुड़ ली इकर ले बहुत बहुत धन्यवाद लगे तब जोहार
1: जोहार।

0: बहुत बहुत धन्यवाद हरिमुंडा जी, लय तब
1: जोहार जोहार।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वर यात्रा के 90 वर्ष, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर झारखंड के लोक कलाकार हरिमुंडा से बातचीत कर रहे थे अरविंद मित्रा, और प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा धनबाद से।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा, फॉर्मर प्रोफेसर इन एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन SNMCS धनबाद।
1: मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
2: जी हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर, एक कल्पना कीजिए कि आपके घर में पाइप, पानी की पाइपलाइन है और उसमें अचानक दबाव बढ़ जाए तो क्या होगा, या तो पाइप फट जाएगी या लीक करेगा। इसी प्रकार के शरीर में जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो शरीर की रक्त नलिकाएं, जिनको कि आम भाषा में नस बोलते हैं, उन पर दबाव बढ़ता रहता है, उससे रक्त नलिकाओं की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है और नुकसान की वजह से वहां पर जो फैट, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हृदय को खून पहुंचने में कठिनाई होती है और मरीज को कभी कभी सांस फूलना, छाती में दर्द होना, ये शिकायतें शुरू हो जाती है। ये एक वार्निंग है, अगर इस अवस्था में अगर मरीज ने डॉक्टर का संपर्क नहीं किया तो आगे जाकर के ये प्राण घातक भी हो सकता है, जो कि हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, वो भी पेशेंट को हो सकता है।

सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओम नंद केसरी, धनानंद केसरी, विनोद केसरी, बड़ा बाम्बो सुपाई से, साई से, देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश तांती, ललित प्रधान और देवेन, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा, आप सब ने सुनना चाहा है फिल्म यादों की बारात का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं मजर सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन। तो आइए आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं आपको।

0: हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा धनबाद से। डॉक्टर, ज्यादा नमक सच में दिल के लिए खराब होता है?
1: यह भी एक वैज्ञानिक रूप से स्थापित तथ्य है कि ज्यादा नमक खाने से होता क्या है कि शरीर में पानी रुकने रहता है तो शरीर में जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, उसके कारण से ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। और नमक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से स्ट्रोक यानी कि लकवा, किडनी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज या आंखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आंख एकदम दिखना बंद हो जाता है। तो मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर जो कि ज्यादा नमक खाने की वजह से हो सकता है, उस पर दुष्प्रभाव हार्ट पर, ब्रेन पर, किडनीज पर और आंखों पर पड़ता है और आदमी को हाइपरटेंशन की वजह से कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं।
0: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
2: अगले गाने की फरमाइश की है आदर्श नगर कांके रोड रांची से सूरज कुमार, वासुरंजन, नम्रता, प्रवीण, प्रियंका, श्वेता, विनीता, सोनी, सोनिया, रेखा, अनुमेदा, दीपक, रोशन, सोनू, शुभम, तान्या, सत्यम, रंजीत, अमन, अंशु, सौरभ, मयंक, आशुतोष, कविता, मीना, देवी, नैना, मोहित और अपूर्वा। ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर बिहार से प्रभात ठाकुर, अरुणिमा आलोक, दिव्या, दीक्षा, श्रुति, राकेश, नन्हे, श्रेया, हेमलता, रमन, बेबी, देव, तेजो, मनीष, माधव, सुमन, कृति, अभिषेक, रंजन, अनुराग, चंदन, मनोज, सीमा, हनी, ऋषभ, बबलू, डब्लू और इनके परिवार के समस्त सदस्य। आप सब ने सुनना चाहा है फिल्म सरस्वती चंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

0: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा धनबाद से। क्या बीपी डायरेक्टली लिंक्ड है हार्ट डिजीज से?
1: जी हाँ, हाई बीपी से होता क्या है कि एक हृदय एक निश्चित दबाव में काम करता है, मतलब ब्लड प्रेशर होने से रक्त नलिकाओं में दबाव हो जाता है। इससे होता क्या है कि हार्ट को या दिल को उस दबाव के अगेंस्ट में खून को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ता है। क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं या तो मोटी हो जाती हैं या और वीक हो जाती हैं, और उसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर इत्यादि बीमारियां पेशेंट को हो सकती हैं।
0: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
2: अगले गाने को सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर वीरक, जैतक वीरक, मिका वीरक। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दंतेरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पीपरिया से दुर्गा राम साहू। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म कारवा का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है आर डी बर्मन।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण

0: जीवन के विकास का होना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: अगले गाने की फरमाइश की है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर, श्रीमती सरिता ग्वानकर, प्रिंस एकांश ग्वानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वानकर, प्रणीता ग्वानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश ग्वानकर, श्रीमती वैशाली ग्वानकर, श्वेता सुमित ग्वानकर, कुमारी ध्वनि ग्वानकर, कोटा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमर राव से वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा, सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आप सब ने सुनना चाहा है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: जिंदगी एक प्यारा सफर है, हर पल में एक नया असर है। हंसते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही खुशियों का असली घर है। नमस्कार सखियों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी खुशबू, आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और सखियों, इस सफर में मेरे साथ आपकी एक और रेडियो सखी है और वो है राखी। राखी, कैसी हैं आप?
1: बस अच्छी हूं और बहनों को कहती हूं नमस्कार। आपकी रेडियो सखी राखी हाजिर है बहनों आपका कार्यक्रम लेके। और तुम कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छी हूँ राखी। हाँ। और यही प्रार्थना है कि सभी सखियाँ भी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी।
1: बिल्कुल सखियों, आज के समय में अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है, फिर चाहे उम्र कोई भी हो। तो खुशबू, जब स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं तो आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग की, है ना, और फिटनेस की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा विराम।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा धनबाद से। क्या बीपी डायरेक्टली लिंक्ड है हार्ट डिजीज से?
2: जी हाँ, हाई बीपी से होता क्या है कि एक हृदय एक निश्चित दबाव में काम करता है, मगर ब्लड प्रेशर होने से रक्त नलिकाओं में दबाव हो जाता है। इससे होता क्या है कि हार्ट को या दिल को उस दबाव के अगेंस्ट में खून को पूरे

0: शरीर में पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ता है। क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं या तो मोटी हो जाती हैं या और वीक हो जाती हैं, और उसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर इत्यादि बीमारियां पेशेंट को हो सकती हैं।
1: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: विराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है बहनों आपके ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, और आपके साथ हैं हम दो सखियां राखी और खुशबू।
4: बिल्कुल राखी, और जैसा कि तुमने बताया कि आज हम चर्चा करेंगे योग और फिटनेस की, क्योंकि सखियों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और हम सभी न जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से परेशानियों से घिरे हुए हैं, और इसका मुख्य कारण है अनियमित दिनचर्या, गलत खान पान, तनाव, प्रदूषण और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण लोग छोटी उम्र में ही कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, है ना।
1: तो ऐसे समय में योग और फिटनेस का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं खुशबू। और योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक और मानसिक शांति भी देता है। सखियों, बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो दिनचर्या है उसे योग और सही जीवन शैली की आदतों से सही रखें और अपनी आदतों को सुधारें।
4: बिल्कुल, और क्यों फिटनेस का मतलब है शरीर का स्वस्थ होना, चुस्त दुरुस्त होना और ऊर्जावान होना। इसलिए आज फिटनेस हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाता है, और नियमित योग करते रहने से शरीर मजबूत होता है, मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक भी आती है।
1: योग हर उम्र के लिए लाभदायक है, जैसा कि बहनें जानती हैं। सखियों, आज योग में कई तरह के की चीज़ें शामिल भी की गई हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब तो है ही है। आजकल बहुत तरह की पद्धतियां उसमें अपनी तरफ से भी लोगों ने शामिल की है, लेकिन फ़ायदा सबका है, है ना। तो मतलब यह है कि शरीर को फिट रखने का एक सटीक तरीका है योग, जिसमें शरीर के सभी अंग सक्रिय होते हैं और सुचारू रूप से काम करने लगते हैं, और ये सभी जो हैं क्रियाकलाप वो शरीर को रोगों से दूर रखने में मदद करते हैं। योग करने से रक्त संचार, या यूं कहें कि शरीर में खून का प्रवाह भी सही हो जाता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है,
4: और इसके साथ ही यह तनाव, चिंता और साज को भी कम करने में बहुत ही मदद करता है, और इसलिए यह हर उम्र के लिए जरूरी है। जैसे कि राखी, योग करने से बच्चों का जहाँ शारीरिक विकास तेजी से होता है, एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में ध्यान लगता है, मानसिक संतुलन बना रहता है, वहीं युवाओं के लिए यह तनाव कम करने, शरीर को फिट रखने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। तो बुजुर्गों के लिए शरीर में लचक को बनाए रखता है, दर्द को कम करने और मानसिक शांति बनाए रखने में भी मदद करता है, और साथ ही बढ़ती उम्र के असर को भी दूर करता है।
1: यानी कि हर उम्र के लिए उपयोगी है योग, भले ही आसन अलग हो, प्राणायाम कौन सा करना है, ये सब आप योग गुरु के निर्देश में करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे सखियों, आजकल लोग जिम या आधुनिक व्यायाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं ज़्यादा, लेकिन योग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है।
4: इसलिए तो कहा जाता है सखियों, योग और फिटनेस स्वस्थ जीवन शैली की चाबी है, और हम यदि प्रतिदिन योग करें, यानी डेली योग करें, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए योग को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें।
1: बिल्कुल, और शारीरिक मानसिक फिटनेस की तुमने बात की, तो उसमें एक और भी चीज है जो हमें बहुत मदद करती है, क्योंकि उससे हमारा मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, और जब हम प्रसन्न रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, और वो चीज है संगीत।
4: बिल्कुल,
1: तो चलो अपने कार्यक्रम में बहनों को भी एक सुंदर सा गीत सुनवाते हैं।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: विराम के बाद आपका स्वागत करते हैं हम आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और खुशबू आगे क्या लेकर आए हैं बहनों के लिए, हम बताओ।
9: राखी सखियों को हम आगे सुनाएंगे एक भेंट वार्ता और आज का विषय है जल संरक्षण में महिलाओं की अहम भूमिका। और आज बातें हो रही हैं सर्वेश्वरी मिश्रा जी से जो कि एक शिक्षिका भी हैं और वो हमें बता रही हैं कि किस तरह से महिलाएं हैं जल का सही उपयोग करके उसके बचत में बड़ा योगदान दे सकती हैं। तो आइए सुनते हैं सखियों राखी और सर्वेश्वरी मिश्रा जी की ये भेंट वार्ता।
10: जल है तो कल है, जल संरक्षण आज समय की आवश्यकता है और यह एक सबसे बड़ी चुनौती भी मानी जा सकती है। जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं आज की महिलाएं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है इसमें। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और आज की हमारी अतिथि हैं सर्वेश्वरी मिश्रा। आप पेशे से एक शिक्षिका तो है ही, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सर्वेश्वरी जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने कार्यक्रम में। नमस्कार।
11: नमस्कार राखी जी। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
10: हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है।
11: देखिए जल संरक्षण की बात की जाए तो महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं क्योंकि उचित मायने में वे जल की सबसे बड़ी उपभोक्ता होने के साथ साथ उसकी सबसे सशक्त संरक्षक भी होती है। क्योंकि महिलाएं घर में जल के उपयोग, उसकी बचत, उसकी हर एक बूंद का महत्व समझती है। रसोई से लेकर बच्चे की परवरिश तक, घर की जिम्मेदारी, हर एक चीज में जल का उचित उपयोग और उसकी बचत का संस्कार सबसे पहले सभी को वही सिखाती है। तो उनकी भूमिका तो है ही महत्वपूर्ण
10: जी। घर और समाज में पानी की जो बर्बादी होती है उसे रोकने में महिलाएं कैसे अपना योगदान दे सकती हैं?
11: हाँ, जैसे मुझे लगता है कि घर हो या समाज की बात की जाए तो पानी की बर्बादी रोकने के लिए महिलाएं जो हैं वो अपनी रोजमर्रा की आदतों से काफी बड़ा योगदान दे सकती हैं। जैसे जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करें, फिल्टर या एसी वगैरह से जो पानी बचते हैं तो वो अतिरिक्त पानियों का उपयोग वो पौधों में प्रयोग करें। इसके साथ ही वे बच्चे और परिवार को भी पानी की एक एक बूंद का महत्व समझा सकती है। वास्तव में महिलाएं जो हैं उनकी छोटी छोटी सावधानियां जो होती है ना वो जल संरक्षण को एक अच्छी आदत और समाज की जिम्मेदारी बना सकती हैं।
10: जी हमें ये भी बताएं सर्वेश्वरी जी कि वर्षा जल संचयन को
11: जी
10: अगर बढ़ावा देना चाहें हम तो महिलाएं क्या भूमिका उसमें निभा सकती हैं?
11: देखिए वर्षा जल संचयन जो है तो उसको तो हमें अपनाना ही चाहिए और महिलाएं जो होती है उसमें बढ़ चढ़ कर आगे भाग लेती हैं। ये एक मुझे लगता है एक आंदोलन की तरह है। वे घर की पहली शिक्षक होती हैं, परिवार की मार्गदर्शक होती हैं। तो इसके पानी बचाने की जो आदत है बच्चे में या परिवार में वो आसानी से उसे विकसित कर सकती है। और वो है कि जैसे छत पे जो पानी टपक रहा होता है तो उसे वो एकत्रित करने की व्यवस्था कर सकती हैं, उसका वो रोजमर्रा के कार्य में उपयोग कर सकती हैं, जैसे वही पौधे को पानी देना हुआ या कूलर वगैरह में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बल्कि वो आस पड़ोस वालों में भी है कि महिलाओं को जागरूक कर सकती हैं, छोटी छोटी बैठक जैसे महिलाएं करती हैं ना किटी पार्टीज वगैरह उसके माध्यम से, या और ऐसे भी संगठन बना के वो लोगों को संदेश दे सकती है, उसके लिए काम कर सकती है, तो ये मुझे लगता है वो कर सकती है सही तरीके से।
10: अब बात करते हैं आज की युवा पीढ़ी की, तो क्या आज की युवा पीढ़ी पानी के महत्व को सही तरीके से समझ पा रही है?
11: आज की जो युवा पीढ़ी है वो पानी के महत्व को ऐसा तो है कि वो समझती है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही नहीं समझती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा उसमें काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, वो करते हैं वर्क, जैसे सेव वाटर या वर्षा जल संचयन जैसे वो अभियान चला रहे होते हैं एक तरफ, या सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो लोगों को जागरूक करते हैं।

0: कहीं ना कहीं जो उनसे भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, थोड़ी लापरवाही मैं देखती हूँ आजकल जो आज की पीढ़ियों पर मतलब देखने को मिलता है। कोई नल खुला करके भूल जाते हैं या छोटी छोटी नादानियां जो उसपे उनका ध्यान नहीं जाता है। ऐसे तो वो बातें बहुत अच्छी करेंगे, जागरूक भी रहते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तब वो उतने व्यवहारिक नहीं हो पाते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि बचपन से ही हम उन्हें जल के महत्व का एहसास दिलाएं और रोक टोक करें थोड़ा उनकी लापरवाही में, तो उनकी आदत बदल सकती है और व्यवहारिक तौर पर वो जल संरक्षण के लिए जागरूक और अधिक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है,
1: जी
0: क्योंकि जो युवा पीढ़ी है हमारी वो वही सीखते हैं जो वो अपने आसपास देखते हैं, इसलिए उन्हें केवल हम दोष नहीं दे सकते हैं, बल्कि हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा उनके सामने, खुद ही की आदतों को सुधार कर जो वो देखें और सीखें।
1: जी अब हम बात करते हैं मुख्यतः समाधान की। तो क्या समाज में पानी बचाने की जो आदत है उसे विकसित करने के लिए कुछ खास कदम उठाना चाहिए, क्या करना होगा?
0: जी बिल्कुल, उठाना तो चाहिए ही, क्योंकि वैसे पानी बचाने के लिए भाषण नहीं, आदतें हमें बदलनी होगी, क्योंकि भाषण लोग बड़े बड़े देते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम इसे अपनाना भूल जाते हैं। समाज में जो पानी बचाने की शुरुआत है, हमारे रोजमर्रा की छोटे छोटे कामों से हम कर सकते हैं, जैसे ब्रश करते समय नल बंद रखें, RO या फिर सब्जी धोने के बाद जो पानी बचा हो उसे हम पौधों में इस्तेमाल करें, बेवजह पानी खर्च ना करें। इस तरह से हम छोटी छोटी आदतों को सुधार कर हम सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि हर मोहल्ले में जल प्रहरी जैसे छोटे छोटे समूह भी बना सकते हैं जो लोगों को जागरूक करें, समझाएं, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि अगर आज हमने पानी नहीं बचाया तो कल केवल प्यास ही नहीं संघर्ष भी भरेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि हम जल ही जीवन है ऐसा सिर्फ कहें नहीं, बल्कि जल संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करें।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही। अब चलते चलते एक आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि आज के बच्चे कल के युवा हैं और इसका भविष्य भी है, तो महिलाएं बच्चों में आदत कैसे विकसित करें बचपन से ही?
0: ये बच्चों में तो जो हमें है बचपन से ही जल संरक्षण की आदत विकसित करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि वो देखकर सीखते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो अगर घर में देखेंगे कि उनकी मम्मी पापा या जो भी घर के परिवार वाले जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पानी का जैसा प्रयोग कर रहे हैं, तो वो वैसा ही करेंगे, वही संस्कार बच्चों में भी आएंगे। वो अगर वो जल संरक्षण कर रहे हैं, उनके घर वाले अपना सहयोग दे रहे हैं, जल की कीमत समझ रहे हैं, तो बच्चे भी समझेंगे, क्योंकि जैसा कहा गया है ना कि बच्चे माटी का स्वरूप होते हैं, हम उन्हें बचपन में जैसा आकार देंगे वैसा स्वरूप ही वो ग्रहण करेंगे। तो इस बात की जिम्मेदारी पूरी तरह से मतलब हमारी घर वालों की है, समाज की भी है, क्योंकि यदि समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर थोड़ा थोड़ा प्रयास करे तो जल संकट जैसी बड़ी समस्या को भी हम कुछ हद तक नियंत्रित कर ही सकते हैं, खत्म भले ना कर सके।
1: सर्वेश्वरी जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और प्रायोगिक तौर पर बताई जो कि हर किसी के लिए उपयोगी है। सर्वेश्वरी जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी?
0: जी, मैं उनसे अपनी पंक्तियों के माध्यम से एक छोटा सा संदेश पहुंचाना चाहूंगी। ध्यान देंगे, बूंद बूंद में सांस धरा की, बूंद बूंद में सांस धरा की, बूंद बूंद में राग धरा की, इन बूंदों को कम ना आको, ये मिल जाए तो प्यास बुझाए, ये मिल जाए तो प्यास बुझाए, एक ही क्षण में प्रलय ले आए, इनकी ताकत इनकी शक्ति से ही जुड़ा है हमारा जीवन, से ही जुड़ा है हमारा जीवन, क्यों ना हम एक कदम बढ़ाएं, क्यों ना हम एक कदम बढ़ाएं, जल की हर एक बूंद बचाएं, जल की हर एक बूंद बचाएं। धन्यवाद।
1: बहुत

0: Sehat-sehat kan doa kakak. Terima
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता, और विषय था जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। और आज की भेंटवार्ताकार थी सर्वेश्वरी मिश्रा जी, और बातें हो रही थी राखी से। राखी, अब हम अपनी सखियों को आगे क्या सुनाने वाले हैं?
2: जल संरक्षण की बात कर रहे हैं तो फिर एक गीत सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो बहनों, फिर से आपका स्वागत करते हैं हम आपके कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और खुशबू, चलते चलते बहनों को और क्या हम जानकारियां देने वाले हैं?
1: आज हम जानकारी देने वाले हैं सखियों को ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में, क्योंकि राखी, आज का युग इंटरनेट और तकनीक का युग है। मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे जोखिम भी आ गए। आज हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन करते हैं, जैसे कि पढ़ाई, बैंकिंग, खरीदारी, टिकट बुकिंग, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है सच में। साइबर क्राइम वह अपराध है जो इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से किया जाता है। बहनों, ये तो हम जानते ही हैं। इसमें हैकिंग, फर्जी कॉल, बैंक फ्रॉड जो होता है, पासवर्ड की चोरी, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना और ऑनलाइन जो है बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं जो कि एक उदाहरण है। कई लोग जो है लालच में फंस जाते हैं आसानी से, जब उनको लालच दिया जाता है। इसके कारण भी इस साइबर

0: फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, और लालच भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कोई बोलता है कि हम बहुत सारे इनाम जीत चुके हैं, हमारे खाते में इतनी राशि आ चुकी है, या फिर जानकारी की कमी के कारण भी इसके शिकार हम आसानी से बन जाते हैं। लेकिन इससे बचने का सबसे उपयोगी तरीका ये है कि हम सबसे पहले अपना पासवर्ड जो है वो मजबूत बनाए और समय समय पर उसे बदलते रहे, और किसी भी अनजान आदमी के साथ अपना OTP, बैंक डिटेल या पासवर्ड साझा नहीं करें।
0: हाँ, सोशल मीडिया पर अपनी जो निजी जानकारी है वो कम से कम साझा करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध लिंक या मैसेज पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोबाइल और कंप्यूटर पर आजकल जो है एंटीवायरस का भी ऑप्शन है ना, उसका उपयोग कीजिए, और केवल सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट का ही उपयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और ऑनलाइन भुगतान करते समय भी काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट हम बहुत करते हैं, इसलिए वेबसाइट का URL ध्यान से जांचना चाहिए। और साथ ही बच्चों और युवाओं को भी साइबर सुरक्षा के बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए, ताकि वे ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकें।
0: हाँ सखियों, बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन जो भी है गेमिंग और किसी भी प्रकार का जो इस तरह का है वहाँ पे खेल वगैरह, उससे बचना चाहिए, ताकि हम किसी प्रकार की ठगी के शिकार ना हों। और ये तो ऐसी जानकारी है कि इसकी सीमा भी बहुत बड़ी है, तो इसीलिए बाकी की जानकारियाँ हम अगले कार्यक्रम में देंगे बहनों। और चलते चलते बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की,
1: और अब अपनी दो सखियों राखी और खुशबू को दे इजाजत।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब समय हो चला है कार्यक्रम भारत भारती का, जिसमें आप सुनेंगे मैथिली भाषा में आंचलिक लोकगीत विंध्यवासिनी देवी और साथी की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती के तहत आंचलिक लोकगीत मैथिली भाषा में, बिंदवासिनी देवी और साथी की आवाजों में।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग में खड़िया लोकगीत अब्राहम कुल्लू और साथी की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग में खड़िया लोकगीत अब्राहम कुल्लू और साथी की आवाज़ों में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. The two leaders will also address the European Round Table for Industry alongside European Commission President Ursula von der Leyen. This visit is the third leg of Prime Minister Modi's UAE and European tour and his first to Europe since the India-EU Free Trade Agreement took effect in January 2026. India has strongly condemned attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz, calling them unacceptable. India's permanent representative to the UN, P. Harish, said targeting civilian crew and disrupting freedom of navigation cannot be justified. He was speaking at a special meeting of the United Nations Economic and Social Council on safeguarding global energy and supply flows.
1: Targeting of commercial shipping, endangering civilian crew, impeding freedom of navigation in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. Open and predictable trade flows must be preserved and fragmentation avoided. Coordinated efforts are needed to stabilize energy markets and support countries facing external and fiscal pressures. Strengthening multilateral financial support mechanisms will also be critical in this regard. This crisis underscores the importance of combining immediate response with long-term transformation.
0: Mr. Harish's remarks came days after an India-flagged commercial vessel was attacked off the coast of Oman. Within days of levying high customs duties on precious metals, the government has imposed import curbs on silver. Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. A major rail accident was averted in Ratlam, Madhya Pradesh this morning. Fire broke out in the B1 coach of the Thiruvananthapuram Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express, train number 12431. The incident took place between Luni Richa and Vikramgarh Alot stations in the Kota division around 5:20 a.m. There has been no casualty in this incident. The cause of the fire is being investigated. The field operations for the house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 have commenced in five states and union territories. These states and union territories are Rajasthan, Meghalaya, Maharashtra, Jharkhand and Municipal Corporation of Delhi area in Delhi NCT as part of the ongoing nationwide census exercise. Meanwhile, house-to-house house listing operations by enumerators are presently in progress in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Telangana and Uttarakhand. The World Health Organization, WHO, has declared the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo and Uganda a public health emergency of international concern. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced the decision after more than 300 suspected cases and 88 deaths were reported. WHO in a social media post clarified the outbreak does not meet the criteria for a pandemic emergency like COVID-19 and advised against closing international borders. World Hypertension Day is being observed today. The theme for this year is controlling hypertension together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. Southwest monsoon has advanced into some parts of Arabian Sea, Bay of Bengal, many parts of Andaman Sea and Andaman Islands and entire Nicobar Islands. According to the IMD, southwest monsoon is likely to set in over Kerala on 26th of this month. Meanwhile, the weather agency has predicted heat wave conditions in Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala at 3:30 p.m. today. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals in Delhi at 7:30 p.m. In badminton, world number 4 Indian pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Roli, Carnado and Daniel Martin. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा विवाद मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से मांगी पूरी जानकारी, 23 मई को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया प्रतिबंध, मुक्त से प्रतिबंध श्रेणी में रखी गई चांदी अब आयात के लिए सरकारी लाइसेंस जरूरी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में हुए शामिल, देश के 100 जिलाधिकारियों को भी सूची में मिला स्थान। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को लेकर राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे मरीजों को दी जा रही है सलाह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा ऑस्ट्रेलिया दौरे और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी टीम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स में हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
3: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े नियुक्ति विवाद मामले में गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष गौतम कुमार चौधरी ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार को नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसमें नियुक्ति से जुड़े कार्यालय आदेश, विषयवार और श्रेणीवार प्राप्तांक, जिलावार मेरिट सूची सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। SDPO बैजू राम ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
5: JSSC और राज्य सरकार दोनों को पिछले 2.5 से डायरेक्शन मिला था रिवाइज मेरिट लिस्ट सबमिट करने के लिए। JSSC के द्वारा आज रिवाइज मेरिट लिस्ट सबमिट कर दिया गया है और राज्य सरकार के द्वारा जो दस्तावेज लाए गए थे वो कुछ अपूर्ण थे, पूरे कंप्लीट नहीं थे, तो कोर्ट ने उनको एक हफ्ता का और समय दिया गया। अब अगले शनिवार को इस केस की फिर से सुनवाई होगी।
3: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने पिछले सप्ताह कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी गवर्नेंस, नवाचार, संकट प्रबंधन और जनभागीदारी जैसे मानकों को शामिल किया गया। इस सूची में देश भर के 100 जिलाधिकारियों को स्थान मिला है। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग की DFO सबा आलम अंसारी के साथ मानगो से सटे दलमा पहाड़ की तलहट्टी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। प्रस्ताव के तहत चंद्रावती नगर, गोपाल नगर, कुमरुम बस्ती और पारडी के आसपास पार्क, तालाब, पाथवे और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। विधायक ने कहा कि दलमा की तलहटी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहां पर्यावरण अनुकूल विकास कार्य किए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एटीआईआर न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिकों को नियमित व्यायाम करने, फल और सब्जियों का अधिक सेवन करने और वजन नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या शिकायत के लिए 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध है। रांची पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले दो दिनों में 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान 220 से ज्यादा लंबित वारंटियों को अभी निष्पादन किया गया, जिसमें रांची पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। रांची पुलिस ने कहा है कि अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध पर कार्रवाई के लिए भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। रांची के कांके थाना क्षेत्र में पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त चेतावनी जारी की है कि ईंधन की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी या सप्लाई रोकने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस ने निर्देश दिया है कि सभी पंपों पर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य रखी जाए, स्टॉक और सरकारी दरें बोर्ड पर प्रदर्शित हों और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों और खुले बर्तन में पेट्रोल डीजल देने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। साथ ही भीड़ होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने को कहा गया है। थाना प्रभारी साक्षी जमुआर ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवघर जिले की पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। देवघर के एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
6: तो गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वहां पे छापामारी की गई, तो वहां पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग गांजा अगरतला से लेके आए थे और यहां पे डिलीवर करने वाले। उसके बाद उन तीनों का प्रयोक्ति बयान के आधार पे और 3 नाम सामने आए और वो तीनों देवघर के रहने वाले थे जो उनसे गांजा खरीदते थे और यहां पे सप्लाई करते थे।
3: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भोजपुरी और मगही भाषा पर कहा है कि जिन भाषाओं को बिहार में ही पूर्ण मान्यता नहीं मिली है, उन्हें झारखंड में अलग दर्जा देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड की अपनी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की समृद्ध पहचान है, जिनके संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य की मूल भाषाओं और संस्कृति को मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है।
7: भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, वो कुछ जिलों में बोली के रूप में जाना जाता है। मगही आपका बोली के रूप में जाना जाता है और भोजपुरी और मगही को तो खुद वह आपका बिहार में इसका मान्यता नहीं है और ऐसे में यहाँ पर उन भाषा का दर्जा देना ये कहीं से भी उचित नहीं है।
3: भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा है कि महिला टीम आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में तैयारियों पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले आगामी FIH महिला हॉकी नेशंस कप के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। बता दें कि भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा विवाद मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से मांगी पूरी जानकारी। 23 मई को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया प्रतिबंध। मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखी गई चांदी अब आयात के लिए सरकारी लाइसेंस जरूरी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में हुए शामिल। देश के 100 जिलाधिकारियों को भी सूची में मिला स्थान। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को लेकर राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे मरीजों को दी जा रही है सलाह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, ऑस्ट्रेलिया दौरे और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

अब समय हो चला है कार्यक्रम अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत का। आज आप सुनेंगे ठुमरी खमाज में सिद्धेश्वरी देवी की आवाज में। तबले पे संगत दे रहे हैं चतुरलाल और सारंगी पर सबरी खान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी खमाज। कलाकार थी सिद्धेश्वरी देवी, इनके साथ तबले पर संगत दे रहे थे चतुरलाल और सारंगी पर सबरी खान। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब वक्त है सुरों की उस महफिल का, जहां हर एहसास गजलों की मिठास में घुल जाएगा। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए कुछ बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में, बस थोड़ी ही देर में।

0: हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा धनबाद से। डॉक्टर, अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है क्या?
1: एकदम सही सवाल पूछा आपने। ये अक्सर मरीज हमारे पास में आते हैं, चाहे शुगर के मरीज हो या बीपी के मरीज हो, कि डॉक्टर साहब मेरा तो बीपी कंट्रोल हो गया, मेरा शुगर कंट्रोल हो गया, अब मैं दवाई बंद कर देता हूँ, या कुछ दवाई बंद करके भी आते हैं। मैं इस मामले में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से आम जनता से अनुरोध करूंगा कि कभी भी बीपी और शुगर की दवाइयां बिना चिकित्सीय सलाह के बंद नहीं करें। होता क्या है, मैं बीपी के बारे में बात करूंगा, होता क्या है कि हमारी रक्त नलिकाएं और हृदय एक निश्चित दबाव पर काम करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। बीपी की दवाएं इस दबाव को नियंत्रित कर रखती हैं ताकि हृदय, मस्तिष्क, किडनी और आंखों को नुकसान न पहुंचे। जब कोई व्यक्ति अचानक दवा बंद कर देता है तो कई बार ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है, जिसको कि रिबाउंड हाई बीपी बोलते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो लगातार उच्च रक्तचाप नलिकाओं को अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है। इससे दिल का दौरा, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी कम होना और हार्ट फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
0: पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
2: आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में ये गजल, जिसके बोल लिखे हैं फयाज हाशमी ने और संगीत से सजाया है निसार बज्मी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: International shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
4: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
5: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
7: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ है कार्यक्रम की हम सफर अर्चना। हुआ जाता है कैसे मुल्क पर कुर्बान, लिख देंगे हम अपने खून से घर घर में हिंदुस्तान लिख देंगे। आइए सबसे पहला गाना हम सुनते हैं फिल्म परदेसी बाबू से। आवाज है आनंद राज आनंद की। इसके गीतकार और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

मेरी सांसें मेरा लहू मेरे बदन में रहा, मेरा मुल्क हर वक्त मेरे जहन में रहा। मैं मरा तो अंदाज भी इतना गजब था कि तब भी ये तिरंगा मेरे कफन में रहा। तो आइए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

करता हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर या फिर कभी जिंदगी ना मिले। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म सरफरोश से सोनू निगम रूप कुमार राठौर की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर इंदिवर, इसरार अंसारी, निदा फाजली और संगीतकार हैं जतिन ललित।

कुछ नशा इस तिरंगे की यान का है, कुछ नशा इस मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये जो हिंदुस्तान की शान का है। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म केसरी से, बी प्राक की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने और संगीत से सजाया है आरको ने।

फौजी भाइयों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं राष्ट्र के लिए, हम सब के लिए। इसके साथ ही फिर मिलने के वादे के साथ मैं अर्चना आज की इस कड़ी से लेती हूँ विदा।

अभी आप सुन रहे थे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल का जनसंवाद अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज उन्होंने हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड 31 और 32 के विभिन्न इलाकों का पैदल भ्रमण किया। मौके पर उन्होंने स्थानीय जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य सरगना अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ सूरज सिन्हा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 20 लाख रुपए सुपारी के लिए कटहल मोड़ के छड़ सीमेंट व्यवसायी राधेश्याम साहू पर जानलेवा हमला करने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप है।
1: अनिल टाइगर का जो केस हुआ था जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसमें जो मेन आदमी था वह सूरज सिन्हा था। जमीन संबंधी विवाद था। उस विवाद में सूरज सिन्हा को कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग के लिए एक सुपारी मिली थी जिसमें उसे अनिल टाइगर की हत्या करनी थी। उसे टोटल 5 लाख रुपए दिए गए थे इस काम को करने के लिए।
0: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारियों को सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी गवर्नेंस, नवाचार, संकट प्रबंधन और जन भागीदारी जैसे मानकों को शामिल किया गया। इस सूची में देश भर के 100 जिलाधिकारियों को स्थान मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए मोबाइल के पुनर्वितरण को लेकर साहिबगंज के सिद्धो कानो सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मोबाइल धारकों के बीच मोबाइल का वितरण कर जनविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम उपायुक्त दीपक दुबे, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह और वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है।
2: 300 के आसपास मोबाइल फोन जो स्टोलेन अथवा लॉस्ट थे उनको रिकवर करने में सफल रहा है। जो आप सूचना है वो अपन माध्यम से अगर पुलिस विभाग को देते हैं तो एक तंत्र जो है उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस करते हुए उसको ट्रेस भी करते हैं और उसको सम्मान नागरिकों को वापस भी करते हैं।
0: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग के जिला वन पदाधिकारी सबा आलम अंसारी के साथ मानगो के सटे दलमा पहाड़ की तलहटी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। प्रस्ताव के तहत चंद्रावती नगर, गोपाल नगर, कुमरुम बस्ती और पारडी के आसपास पार्क, तालाब, पाथवे और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। विधायक ने कहा कि दलमा की तलहटी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहां पर्यावरण अनुकूल विकास कार्य किए जाएंगे। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिकों को नियमित व्यायाम करने, फल और सब्जियों का अधिक सेवन करने तथा वजन नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या शिकायत के लिए 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एक फूल दो माली का ये गीत अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं प्रेम धवन और संगीतकार हैं रवि।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: करना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज हमारे दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश मिश्रा।
2: छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा के घने जंगल और दुर्गम क्षेत्र के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। वहां एक दंपत्ति बीते 3 दशक से निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य सेवा की अलख जगा रहा है। ये कहानी है डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले की। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार ने इस बार पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें चुना है। उनके इस प्रेरक सफर की कहानी आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। सबसे पहले तो रामचंद्र सर और सुनीता मैडम, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने के लिए।
3: धन्यवाद।
2: रामचंद्र सर, आप ये बताइए कि आप बस्तर कब पहुंचे और कैसे आपके मन में ये प्रेरणा आई कि आपको बस्तर के क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में काम करना है?
4: मैं रहने वाला सतारा महाराष्ट्र का हूँ और जब मैं BAMS डॉक्टर कोर्स के लिए जब पढ़ाई कर रहा था तो एक डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्जर करके एक डॉक्टर था, यूरोप में उसका जन्म हुआ लेकिन वो अफ्रीका में चला गया और वहां से आदिवासियों के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। तो डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्जर की ये जो कहानी है वो मैं कहीं किसी समाचार पत्र में पढ़ा था। उसका जीवन ही उसके आत्मकथन है, वो मुझे अंग्रेजी में एक छोटा सा किताब मिला, वो मैंने पढ़ने के बाद वो मेरी थोड़ी सी प्रेरणा हुई। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रकाश अमटे जो गढ़चिरौली में काम करते हैं वहाँ कुछ साल के लिए काम में जाने का मैंने विचार किया, वहाँ मिला मैं उनको, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ लेप्रसी का कोई मैं कोर्स नहीं किया था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। लेकिन बाद में ये एक वनवासी कल्याण आश्रम करके एक संस्था है, उन लोगों को मालूम हुआ कि ये आदमी कहीं तो आदिवासी क्षेत्र में जाके कुछ काम करने का सोच रहा है, तो वो मेरे से संपर्क उन्होंने किया और उन्होंने मुझे ये किया कि आप नासिक और डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है उस बॉर्डर में आप काम कर सकते हो। तो वहां मैंने 4 साल भिल्ल आदिवासियों के बीच में काम किया और वो उनका जो जीवन है, उनकी जीवन की कठिनाई, स्वास्थ्य की उनकी असुविधा इतनी सारी, ये सब देखने के बाद मेरे अंदर से प्रेरणा जागृत हो गई कि ये हम काम कर सकते हैं। और वही से मेरा धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मुझे मन की तैयारी हो गई कि मैं लंबे समय के लिए आदिवासी क्षेत्र में काम करूंगा। फिर हमारे संस्थाओं ने हमको बताया कि भाई महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा समस्या है, वहां जाके काम करना चाहिए। तो फिर मेरे मन में यह हो गया कि मैं महाराष्ट्र के बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाके अधिकारियों को बताया, 89 की बात है ये। हाँ, तो फिर 90 में हमारा शादी हो गई और 10 दिन के अंदर हम दोनों बस्तर में बारसूर में आ गए हम लोग।
2: सुनीता जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि शादी के बाद लोग कुछ समय खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं और ये बड़ी रोचक बात है कि डॉक्टर रामचंद्र जो है उनका कमिटमेंट अलग था, उससे पहले से आपने एक कमिटमेंट कर रखा था अपने जीवन को लेकर के। आपके जीवन में ये चुनाव कैसे तय हुआ?
3: हाँ, इसका 2 प्रमुखता से मुझे लगता है कारण है ये विचार मेरे मन में आने का, क्योंकि मेरे घर में जो वातावरण है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए मेरा मामा था जो ज्यादा रूप से काम करता था और बाकी भी घर के सदस्य कोई कुछ ना कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत काम करते थे, तो उसके कारण और पुणे का एक जो सांस्कृतिक और सामाजिक सब वातावरण है उसका भी असर हमारे सभी के ऊपर पड़ता है, जो संवेदनशील है उनके ऊपर तो होता ही है। तो बहुत सारे जो सामाजिक सुधारों का इतिहास है पुणे शहर को, उसके यहाँ जो काम करने वाले समाज सुधारक थे उनके कारण, वो भी हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ ही रहे थे जब पढ़ाई चल रही थी शालेय जीवन में। फिर महाविद्यालय जीवन में मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या छात्र संगठन से संपर्क आया, उसके कारण मुझे अपने भारत में जो भी इस प्रकार से समाज है अलग अलग और उनकी अवस्था क्या है, हम किस प्रकार से जीना जी रहे हैं और उनको कितने छोटी छोटी बातों का भी सामना करना पड़ रहा है रोज के जीवन में, ये सब हमको हमारे जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता प्राध्यापक कार्यकर्ता भी हमारे साथ काम करते हैं विद्यार्थी संगठन में, तो वो सब बताते थे और वो हमेशा यह आह्वान करते थे हमें एक छात्र के रूप में ये सभी समस्याओं को जानना चाहिए। और हमारे साथ साथ कुछ छात्र भी ऐसे थे कि जो मास्टर डिग्री कर रहे थे लेकिन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, तो उनका भी वो सब देख के मेरे मन में विचार आया। बहुत लोगों को फिर पता

0: चला कि भाई इसके मन में ऐसा कुछ काम करने का है। तो वैसे ही हमारे जो मैं जहाँ रहती हूँ, मेरा मायका का घर है, वहां ही एक वनवासी कल्याण आश्रम की फाउंडर मेंबर रहती थी नंदा ताई करके। तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे तुम्हें तो गांव में जाके कुछ काम करना है, तो तुम्हें फिर आओ हमारे साथ। अपना जो संगठन का काम है वो ऐसे ही वनवासी क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में काम है। फिर वो संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, फिर उन्होंने मुझे कुछ जगह भेजा, नासिक जिले में भेजा, रायगढ़ जिले में भेजा, ठाणे जिले में भेजा, जहां जहां मतलब काम चलता है अभी भी वहां पर भेजा। और वहां के कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत किया, कुछ गांवों में घूमी, तब जाके मुझे ये मेरा विचार पक्का हो गया कि नहीं मैं ऐसा काम कर सकती हूँ।
1: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहाँ से गतिविधियां शुरू की। कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
2: अबुझमाड़ में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय। फिर भी हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, तो वो 8-10 लड़कियां पहले से रहती थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबुझमाड़ में गए थे। और इतना दूर से पेशेंट आते हैं तो हमको कुछ ना कुछ अपने प्रिंसिपल्स हमको पक्के करने हैं। बिना नाम लिखने के पहले ही पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू कर देना, पैसा नहीं पूछना, और उसको जहां ठीक हो जाए वहां तक ले जाके उसको ठीक करवा के लाना। हम अबुझमाड़ में इतना दूर मेडिसिन के लिए नहीं जा सकते थे, ले जाके पेशेंट हमारे यहाँ आते थे, तो उनका आना ही इतना कठिन था। ये सब देखने के बाद मेरे अंदर इतनी प्रेरणा जागृत हो गई, आपको आश्चर्य लगेगा कि 20 किलोमीटर गीदम है, 4-4 महीना में गीदम नहीं आता था, मैं बारसूर में ही बैठा रहता था, क्योंकि सेरेब्रल मलेरिया की केस है, निमोनिया की केस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत डेंजरस केस है। ऐसी केसेस जब आएगी उस समय आपको उसके साथ रहना ही है। अगर मैं यहाँ ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो महारानी अस्पताल जगदलपुर में ट्रांसफर करना है, तो एम्बुलेंस ड्राइवर डीजल हम पक्का तैयार करके रखते थे। इतना ही नहीं, इतवार को जो पेशेंट रुकते थे वो पेशेंट के लिए सवेरे जो भी ट्रीटमेंट करना है सब करना है, तो एक ऐसा लगता है कि इतवार को मैं थोड़ा जंगल घूमने के लिए जाऊंगा, इंद्रावती घूमने के लिए जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा। तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा तो भी मैं आश्रम में बोल के जाता था कि मैं इस इलाके में हूँ, अगर जंगल का पेशेंट आए तो तुरंत मुझे बुलाना है। कठिनाई भाषा के प्रश्न था, लेकिन हमारे साथ माड़िया महिलाएं थी इसलिए वो भाषा का प्रश्न हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं आया।
1: मैडम, आप बताइए कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबुझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रही हैं, वहां आपने क्या देखा और वहां के समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की चुनौतियां
0: महिला
1: हैं?
0: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, इसीलिए किसी को भी आना, और वो जैसे डिलीवरी के लिए आना है या कोई बच्चा बीमार है, या बार बार अभी तो हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं कि भाई अस्पताल में डिलीवरी हो सभी महिलाओं, लेकिन उस समय ये सब संभव ही नहीं था, क्योंकि उन तक वो बात पहुंचती ही नहीं थी, उनको वो समझ में भी नहीं आती थी। अच्छा, वो डिलीवरी की अगर कोई महिला है, मतलब प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है, तो उसको 6-6 7-7 घंटा चला के लाना, मतलब वो खुद पैदल चल के नहीं आएगी, यानी उसको तखत खटिया पर डाल के वैसा सब लाना है, तो उसके लिए बाकी लोगों का जुगाड़ करना पड़ता है। फिर अगर वो बाकी लोगों का जुगाड़ करना है तो उनको भी कुछ देना पड़ता है, कभी कभी कम से कम दाल चावल दे दो, तब जाके लोग तैयार होते हैं। तो ये सभी दिक्कतें हमको धीरे धीरे समझ में आई, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे, सब जा जाके बता के, हमारी दो दो जो बहनें थी उनको हमने प्रशिक्षित करके ऐसे हम 8 सब सेंटर चलाए, और उसके आजू बाजू के 15-16 गांवों में ये बहनें जाती थी, वहां पर ये सभी बातें बताती थी। उसके कारण ये बात हुआ कि जल्द से जल्द पेशेंट को लाना है, बारसूर ले जाना है और ठीक ठाक करना है।
1: डॉक्टर रामचंद, आपको कैसा अनुभव रहा? अबुझमाड़ क्षेत्र में जब आप गए तो सबसे बड़ा चैलेंज जागरूकता ही था, सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करना ही था स्वास्थ्य के लिए।
2: जागरूक करना ये सबसे बड़ी बात है, वो कि हमको जो बीमारी आई है वो बीमारी ठीक हो सकती है, ये इनके दिमाग में नहीं है। तो बीमारी है तो शरीर है तो बीमारी रहती ही जाएगी, ये कौन सा बड़ी बात है। अरे लेकिन ये बीमारी तो ठीक हो सकती है। तो एक पेशेंट को लाए थे तो बोला कि 6 महीना हो गया, 6 महीने से बीमार है। तो बीमारी अबुझमाड़ से था और बारिश के दिनों में वो ला रहे थे, तो गुडरा करके एक नदी है, वो नदी पार करके फिर इंद्रावती नदी पार करके उस पेशेंट को लाया। तो मैं बोला भैया मैं इसमें ही तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि ये दोनों नदियों में तो आदमी बह जाता है, इसमें बच करके यहाँ आया है, और उसको डायबिटीज विद ट्यूबरकुलोसिस विद जॉन्डिस, ऐसे 3 बीमारी थी उसको, इस पेशेंट को। तो मैंने देखा तो मैं बोला अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा है, सीरियस केस है ये, इसको कैसा रखेंगे। तो वो फिर पेशेंट को हम लोगों ने जगदलपुर ट्रांसफर किया, पेशेंट ठीक होके आ गया। अबुझमाड़ में इसका हम लोगों ने अभी भी दर्शन कर रहे हैं, अभी भी कुपोषण का कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं ना। तो बच्चों को 10 दिन का चिक्की देने के बाद तो 3 दिन के बाद जाते हैं तो पूरी चिक्की खत्म हो गई, कौन खाया। बोला हमारा एक साला है दूर से आया, अबूझमाड़ से, वो आया है, वो देखा और वो चार पांच के वही खा लिया। अरे ऐसा मत करो, बच्चों को बीमारी से मुक्त करने के लिए सब अभियान चल रहा है और वो चिक्की अब दूसरे लोग खा रहे हैं। अबूझमाड़ में आपको काम करना है तो इस समस्या से आपको जूझना पड़ेगा कि कोई भी चीज गंभीरता से नहीं लेते, उनको गंभीरता लानी पड़ेगी, चेतना जागृति, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम। तो अबूझमाड़ में अपने मेडिकल सर्विसेज पहुंचाना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
1: जी जी आपने देखा महिलाएं काफी ज्यादा एनेमिक होती हैं, खासतौर पर आदिवासी समाज में सिकल सेल की भी समस्या है, इसको आप लोगों ने कैसे एड्रेस किया
0: था? वही बात मैं फिर से बताऊंगी कि जो अभी भी पहुंच विहीन गांव है, आपको रोड साइड के गांव में जहां तक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की सब सुविधाएं अभी पहुंच रही है, वहां की महिलाएं जागरूक हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है, मितानिन जो बता रही है उसको समझ रही है, आगे अपने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका भी वो सुनती है, कुछ टीकाकरण है वो सब करती है, लेकिन अंदर में अभी भी गुनिया का ही प्रभाव है। और वो अगर आते भी है तो भी बूढ़े लोग वहां पर है। अभी जैसे हमारा नारायणपुर रोड पर जो बोतली घोटिया हरा कोडेर वगैरह गांव है वहां पर ये चलता है उनके जो, क्योंकि वो तो बस्तर जिला पड़ता है वहां से, लेकिन फिर भी वहां से नर्स और ये लोग आते हैं वेलनेस सेंटर करके, आजकल जो कल्पना सरकार ने ये की है, तो उनके पास गोली वगैरह मांगने, लेकिन वही पुराने ही, मतलब जो बुजुर्ग, पुराने नहीं बुजुर्ग जो है वही बार बार आते हैं। मेरे बच्चे को वहां पर समय पर ले जाना चाहिए और ये करना चाहिए, ये बहुत ही कम होता है। बस कुछ गांवों में हमारे कारण जो है वो ये हुआ है, चलो भाई कम से कम मलेरिया जो जांच है वो तो करो। आपको लगता है ना कि बच्चे का मलेरिया, उसको कैसा हो रहा है, उनको समझाया हमने और वो वेलनेस सेंटर में आके कम से कम वहां पर ये करते हैं, नहीं तो पहले तो वो उसके लिए भी गुनिया के पास ही जाते थे।
1: डॉक्टर रामचंद, आप लोग इसके अलावा कुपोषण एनीमिया के लिए भी एक अभियान चला रहे हैं इस क्षेत्र में?
2: हाँ, हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिवेशन स्कीम, मास नाम से अलग स्कीम बनाई है। उसमें हम लोग जो जंगल का क्षेत्र एकदम अबूझमाड़ या अबूझमाड़ में 5-6 गांव में हमने चालू किया और बाकी क्षेत्र में भी है, जैसे इंद्रावती किनारे का सब इलाका है, वहाँ हम लोग एक गांव के 20 बच्चों को चुनते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम परसेंटेज के नीचे है, उन बच्चों को हम चुनते हैं, उनकी पूरी जांच बाल रोग तज्ञ से उसकी पूरी जांच करवा लेते हैं, उसके बाद उसके अदर जो डिसीजेस है वो सब कंट्रोल करने के बाद फिर कृमि का गोली, फिर मलेरिया की ट्रीटमेंट, मलेरिया प्रतिबंधन जो है वो, उसके बाद फलीदाना गुड़ और काला तिल इसका चिक्की और एक चिवड़ा बनाते हैं देते हैं, उसके बाद हम लोग दाल तेल और बाकी मिरी और हल्दी ये सब कुछ, तो ये सारा उनको हम देते हैं। तो मध्यान्ह भोजन उनको करना है, उनका घर का चावल और हमारा दाल और तेल दिया वाला उसका उनको रोज खिलाना है बच्चों को, तो ये कार्यक्रम चलता है। सब्जी बीज भी देते हैं कि सब्जी उगा के वो अपने रोज का जो भोजन है उसमें सब्जी पन्ना डाले, हरे पन्ने का सब्जी डाले, मच्छरदानी लगाते हैं कि नहीं ये भी देखते हैं, क्योंकि मलेरिया के कारण भी खून टूट रहा है। तो हम उस गांव में भी एक मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और हम इतना तक बोलते हैं कि रात को 10 बजे जाके देखो कि वो बच्चा मच्छरदानी में सोया है कि नहीं सोया है। हम लोगों ने अभी तक 24-25 गांवों में ये कार्यक्रम चलाया, 400 के ऊपर बच्चों को हम लोगों ने इसमें ठीक करवाया है। एक समय हम लोग 1-2 गांव लेते हैं, इस बार हम लोगों ने 4 गांव लिए हैं, माने 80 बच्चों के लिए हमारे कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग प्रोग्राम अभी लगातार चल रहा है, 2021 से हम लोग कुपोषण के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और इसका मैंने विचार बदलो तो नसीब बदलेगा ऐसा बोलते हैं, तो स्कूल में जाके इसी सारे अनुभव हम स्कूल में जाके बच्चों को सुनाते हैं।
1: तो ये थे सुनीता गोड़बोले जी और डॉक्टर रामचंद्र, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव के आदिम समुदाय की सेवा में बिताया है और उनकी इस प्रेरक बातचीत के जरिए आपने जाना कि हमारी शिक्षा का, हमारी जो जीवन शैली है उसके क्या दायित्व।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज़।

आज आपके साथ है रेडियो सखी अर्चना। तो आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी लफ्ज जरूरी नहीं होते, एक मुस्कान, एक नज़र और हो गया इश्क, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। ये गाना उस प्यार का है जो कहा नहीं जाता, बस देखा जाता है। तो आइए अगला पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म CID से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त ने। शब्द रचना है जान निसार अख्तर की और धुन बनाई है OP नैयर ने।

बरसात में भींगते दो दिल, छाती के नीचे एक इकरार, पुराने जमाने की मोहब्बत का सबसे प्यारा लम्हा, ये गीत नहीं एक फिल्म का सबसे रोमांटिक पल है। तो चलिए दोबारा जीते हैं इस पल को फिल्म श्री 420 के गीत से, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, आवाज़ें हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की।

जिस दौर में प्यार इजहार से ज्यादा अदब में था, वहीं से आता है ये गीत जिसने मोहब्बत को शायरी बना दिया। चांदनी रात और किसी अपने की याद, ये गीत आपको वहीं ले जाएगा। अब हमारा अगला गीत है फिल्म चौदहवीं का चांद से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, जिसके बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

जब दिल कहे रुको थोड़ी देर और जब अल्फाज ना मिले तब जज्बात कहे कि तुम पास रहो, तब एक ही गीत दिल की बात बन जाता है। आइए सुनते हैं वो नज़्म जो किसी की जुदाई को रुक जाने की गुजारिश है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अब सुनते हैं फिल्म हम दोनों से, जिसके संगीतकार हैं जयदेव और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी।

बारिश भिंगेलर की और किशोर कुमार की नटखट आवाज़, इससे ज़्यादा मज़ेदार कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। ये गाना नहीं, एक फिल्मी शरारत है जो आज भी उतना ही ताज़ा है जितना पहली बार था। तो आइए सुनते हैं फिल्म चलती का नाम गाड़ी से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

प्यार छुपाने की नहीं जताने की चीज है, और अनारकली ने ये बात सदियों पहले कह दी थी। अगर आज भी किसी को बिना डरे इजहार करना हो तो बस ये गीत गुनगुना दीजिए। तो श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे कि हमारा अगला गीत फिल्म मुगल-ए-आजम से है। इस गीत में सुमधुर आवाज दी है लता मंगेशकर ने, लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से सजाया है नौशाद ने।

कुछ गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, वो महसूस करने के लिए होते हैं। लग जा गले वैसा ही एक गीत है जिसमें बिछड़ने से पहले मिलने की तमन्ना।

करना है। सुनिए वो एहसास जो शब्दों से परे हैं। फिल्म वो कौन थी का ये गीत हम सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में, जिसकी शब्द रचना की है राजा मेहदी अली खान ने और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

आज के कार्यक्रम की यह अंतिम प्रस्तुति है रांची मेलोडीज कार्यक्रम लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रेडियो सखी अर्चना को देविदा।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं परीक्षा के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग के जिला वन पदाधिकारी सबा आलम अंसारी के साथ मानगो से सटे दलमा पहाड़ की तलहटी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारियों की सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल का जनसंवाद अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज उन्होंने हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड 31 और 32 के विभिन्न इलाकों को पैदल भ्रमण किया। मौके पर उन्होंने स्थानीय जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर कांडरा मुख्य मार्ग स्थित BSNL कार्य

0: विद्यालय के समीप कल रात एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आदित्यपुर थाने की गश्ती पुलिस ने उसे देर रात घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था। भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य सरगना अभिषेक कुमार सिन्हा और सूरज सिन्हा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर रांची के कटहल मोड़ निवासी छड़ सीमेंट व्यवसायी राधेश्याम साहू पर जानलेवा हमला करने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: गर्मी के फल न्यारे न्यारे, मीठे रंग रंगीले प्यारे, फलों का राजा कहलाता आम, मम्मी पापा भैया दीदी सभी करते उसे सलाम। खरबूजा तरबूज भी है खूब भाते, गर्मी सारी दूर भगाते, आड़ू चीकू लीची गोल मटोल, खाओ मिलकर खूब तुम, क्योंकि होते गर्मी के फल अनमोल।
1: वाह दीदी वाह, ये तो बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई, और ये कविता बच्चों को भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि गर्मी के फल न्यारे न्यारे, रंग रंगीले, प्यारे प्यारे होते हैं, और गर्मी का मौसम आ चुका है बच्चों, इसलिए सूरज दादा आसमान में तेज चमकने लगे हैं आजकल।
0: हाँ भैया, सूरज की तेज चमकती किरणें हमारे शरीर को गर्मी तो प्रदान करती है, पर आवश्यकता से अधिक गर्मी हमारे सेहत को नुकसान भी पहुँचाती है। यानी गर्मी के इस मौसम में हम यदि थोड़ी सी भी लापरवाही बरतें तो बीमार पड़ सकते हैं बच्चों।
1: ऐसे मौसम में हम सभी को चाहिए ठंडक, ताकत और ताश की। और ये सब हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? हमें स्वादिष्ट रंग रंगीले और रसीले फलों से, जो कि इस मौसम में खूब मिलता है।
0: तो बच्चों चलिए जान लेते हैं गर्मी के फलों की पहचान और उनके फायदे के बारे में, फलों की रंग बिरंगी दुनिया की शेयर करके। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फलों के राजा आम की। बताइए आप में से कितने बच्चों को आम खाना पसंद है? अरे ये क्या, सभी ने हाथ उठा दिए, मतलब सभी बच्चों को आम बहुत अच्छा लगता है ना?
1: हाँ बच्चों, पीला पीला, रसीला, गुद्देदार, मीठा मीठा आम किसे नहीं पसंद है। जानते हैं बच्चों, आम खाने से शरीर को खूब ऊर्जा मिलती है, साथ ही विटामिन ए और विटामिन सी भी मिलता है, जो कि आंखों और त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है।
0: अब बात करते हैं बच्चों तरबूज की। बड़ा सा दिखने वाला हरा हरा तरबूज, काटो तो अंदर से दिखता लाल लाल, है ना ये कुदरत का कमाल। जानते हैं बच्चों, इसको खाने से गर्मी के इन दिनों में शरीर को ठंडक मिलती है और पानी की कमी शरीर में नहीं होती है।
1: इसी तरह बच्चों, खरबूजा भी गर्मियों का खास फल होता है। इसको खाने से ठंडक मिलती है, पाचन तंत्र सही रहता है और शरीर में जल की कमी नहीं होती है।
0: सब फल मिलकर हमें सिखाते, रोज हमें तुम खाओगे, ताकत सेहत ऊर्जा से हर कदम आगे बढ़ते जाओगे, हर कदम आगे बढ़ते जाओगे।
1: वाह, तो बच्चों फलों की बातें निराली लगी ना? और कुछ बच्चों को बाहर से खरीदा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स या अन्य खाने की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, पर बच्चों वो सब वस्तुएं खाने में भले ही स्वादिष्ट लगे पर सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है।
0: फल जो होता है ना बच्चों, वो प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार होता है, उससे हम लोगों को कभी हानि नहीं पहुंचती है बल्कि शरीर को लाभ होता है। इसीलिए बाजार के पैकेट बंद चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि जो होता है खाने से बचिए और मम्मी पापा से बोल कर फल खरीदवा कर ही खाइए।
1: आप लोगों को तो लीची बहुत अच्छी लगती है ना बच्चों? सचमुच सफेद गुदे वाली छोटी सी लीची खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है बच्चों। इसमें भी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए सेहतमंद होते हैं।
0: इसी तरह पपीता, ककड़ी, खीरा इत्यादि भी जरूर खाइए बच्चों। पपीता पेट को स्वस्थ रखता है, वही खीरा ककड़ी शरीर में पानी की कमी को दूर करता है।
1: हाँ बच्चों, रोजाना एक फल जरूर खाइए, परंतु एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि खाने से पहले फल को खूब अच्छी तरह से धो लीजिए और बहुत समय पहले से कटे फल भी नहीं खाने चाहिए, ताजा फल ही खाएं।
0: फल खाएंगे शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी रहेंगे आप खेल में चैंपियन और पढ़ाई में भी चैंपियन।
1: तो बच्चों ये तो थी फलों की बात, और अब आप लोगों की गर्मियों की छुट्टी भी हो गई है ना, तो इन छुट्टियों में कुछ खास चीज बनाएं तो कैसा रहेगा बच्चों?
0: क्या खास चीज भैया, बच्चों के साथ साथ हमें भी तो बताइए कि इस छुट्टी में बच्चों को आप क्या बताने वाले हैं।
1: दीदी दरअसल गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हम सभी लोग कहीं घूमने की योजना बनाने लगते हैं, या बच्चे लोग पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद पर ध्यान देने लगते हैं, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने नन्हे पंखों वाले दोस्त यानी प्यारी प्यारी सुंदर सी चिड़ियों के लिए भी कुछ खास कर सकते हैं।
0: आपका मतलब मैं समझ गई भैया, कि आप इस गर्मी की छुट्टी में बच्चों से बर्ड हाउस बनाने की बात कह रहे हैं और

0: आज के परिदृश्य में बहुत जरूरी भी है बच्चों। कि आप अपने घर की बालकनी, छत या बगीचे में एक छोटा सा बर्ड हाउस बनाकर लगा देंगे तो जब चिड़ियों की नजर उस पर जाएगी तो वो खुशी खुशी उसमें रहने के लिए आने लगेंगी।
1: हाँ बच्चों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बर्ड हाउस के लिए आपको बहुत सामान की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए तो आप पुराने डिब्बों, लकड़ी, नारियल के खोल इत्यादि बेकार पड़ी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सुंदर सा चिड़ियों का घर बना सकते हैं।
0: बर्ड हाउस बनाकर जब आप अपने बालकनी या बगीचे में टांगेंगे तब साथ ही पास में थोड़ा दाना और एक कटोरी में पानी भी रख दीजिएगा। जब चिड़िया दाना चुगने आएगी तो अपनी प्यास भी बुझा सकेगी और बर्ड हाउस देखेगी तो आज नहीं तो कल, यानी धीरे धीरे एक ना एक दिन रहने की शुरुआत भी उसमें कर देगी।
1: हाँ बच्चों, इसका एक और फायदा ये भी है कि चींची करती चिड़िया जब रहने आएगी तो वो दृश्य आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने को प्रकृति के बेहद करीब पाएंगे और घर की वजह से चिड़ियों की संख्या भी बढ़ जाएगी।
0: बर्ड हाउस लगाते समय ध्यान रखें बच्चों कि इसे शांत सुरक्षित जगह पर ही लगाइए और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मत लगाइएगा।
1: बर्ड हाउस का ऊपरी हिस्सा अच्छी तरह से बंद करें ताकि बरसात में पानी उसके अंदर न जा पाए।
0: तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कीजिए ये खास काम बच्चों, ताकि चिड़ियों को भी मिले आराम। और जब सुबह सुबह प्यारी प्यारी चिड़ियों की चहचहाहट से खुलेगी आपकी नींद, देखिएगा फिर मिलेगा चैन, सुकून, ताजगी और कितना ज्यादा आराम।
1: तो चलिए बच्चों, बातें तो और भी होती रहेंगी, कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए। तो आइए सुनाते हैं एक प्यारा सा बाल गीत।

चूहा भी आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करके आई चिड़िया।
1: तो बच्चों कैसा लगा ये बाल गीत? अब तो आपके साथी भी तैयार हैं कुछ सुनाने के लिए, आइए सुना जाए उनसे।
2: क्या नाम है आपका?
3: सुप्रभात, मेरा नाम

0: अवनी प्रियम है, मैं आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले झुक नीत सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ल पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
1: वाह, बहुत अच्छी कविता। आपका क्या नाम है और आप क्या सुनाएंगी?
2: सुप्रभात, मेरा नाम स्तुति आर्या है और आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सरहद के रखवाले रण में कूच कर जाएंगे, देशभक्ति जोश जज्बा दिलों में भर जाएंगे। महकते शब्दों की खुशबू हम जग में फैलाएंगे, सद्भावों की मोती लेकर जन मन में बस जाएंगे। हर्ष खुशी आनंद भर विजय तिरंगा लहराएंगे, भारत माँ के जयकारों में आकाश गूंज जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।
1: भारत माँ के जयकारों से आकाश गूंज जाएंगे। वाह, बहुत अच्छी कविता। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम आकांक्षा है, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सूरज की किरणों से सीखो। सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो, कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठी बोल सुनाओ।
1: वाह, बच्चों ने तो बहुत अच्छी अच्छी कविता सुनाई दीदी, और अब कुछ जानकारी की बातें और होनी चाहिए, तो अगली जानकारी क्या है दीदी?
4: जानकारी के तहत हम बच्चों को बताएंगे भैया कि नन्ही मधुमक्खी के बड़े बड़े काम।
1: आपको बताते हैं कि कितने बड़े बड़े काम करती है ये छोटी सी मधुमक्खी, है ना?
4: बिल्कुल भैया। बच्चों, सबसे पहले तो मधुमक्खियां हमें स्वादिष्ट और ताकत देने वाला शहद देती हैं, जो कि मीठा तो होता ही है, साथ ही सर्दी जुकाम जैसे कई रोगों को ठीक करने का काम भी करता है।
1: हाँ बच्चों, इसके साथ ही मधुमक्खियों का इस धरती पर सबसे महत्वपूर्ण काम है फूलों का परागण करना। जब मधुमक्खियां फूलों से रस लेने के लिए उस पर बैठती हैं, तब फूलों के छोटे छोटे परागण उसके पैरों और शरीर पर चिपक जाते हैं।
4: ऐसे में जब मधुमक्खियां दूसरे फूल पर जाकर बैठती हैं, तो वही परागकण वहां यानी दूसरे फूल पर पहुंच जाते हैं। इसका फायदा ये होता है बच्चों कि फूलों में फल और बीज बनने लगते हैं।
1: इस परागण के चलते ही कई नई किस्मों के पौधे भी तैयार होते हैं। जब अलग अलग पौधों का पराग मधुमक्खियों के पैरों और शरीर से चिपक कर एक दूसरे पर गिरते हैं, तब
4: इतना ही नहीं, मधुमक्खियों का ही मेहनत का प्रतिफल होता है बच्चों कि हम सभी को तरह तरह के फल और सब्जी खाने को मिलते हैं। यदि ये नन्ही मधुमक्खियां ना हो तो हमें आम, सेब, तरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू इत्यादि खाने को नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। मधुमक्खियां किसान भाइयों की दोस्त भी कही जाती हैं, क्योंकि वे परागकण के माध्यम से फूलों में फल और बीज तैयार करवाती हैं।
1: बच्चों, मधुमक्खियां हमेशा मिलजुल कर अपना काम करती हैं। उनके छत्ते में हर मधुमक्खी के काम की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। कोई भोजन खोजती है, कोई शहद बनाती है और कोई छत्ते की

0: रक्षा करती है। सबसे खास बात यह है कि मधुमक्खियाँ कभी आलस नहीं करती हैं और हमेशा अनुशासन में रहती हैं, जिसे हमें भी सीख लेनी चाहिए।
1: बच्चों, पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण को स्वस्थ रखने में भी बहुत सहयोग करती हैं, इसीलिए उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, बल्कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए।
0: इसीलिए तो कहते हैं दीदी
1: कि मधुमक्खी कितनी प्यारी, तुम मेहनत से ना डरती हो, फूलों के रस लेकर मीठा शहद बनाती हो,
0: भांति भांति के पुष्पों पर सुबह सुबह ही मंडराती हो,
1: डॉक्टर और वैद्य तुम्हारे शहद के गुण गाते, खुद ना चखती कभी, सदा हमें ही खिलाती हो।
0: वाह, दीदी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है बच्चों, और उम्मीद है कि आपको भी ये कविता अच्छी लगी हो और मधुमक्खियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी आप लोगों को हो गई है। तो अब कुछ मनोरंजन भी बच्चों का होना चाहिए दीदी। तो चलिए बच्चों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है ए बगुला सफेद टीका देता जा, और इसके रचनाकार हैं श्री सतीश चंद्र चौधरी।
1: मुर्गी की बाग के साथ साथ सुशील जग उठा। उस समय बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। उसने बगीचे के फूलों की ओर देखा। बगीचा फूलों से लदा हुआ है। आज रामू और चीमू फूल बटोरने नहीं आए। सुशील सोचने लगा, इसका कारण क्या हो सकता है। देर करने से पिताजी यहाँ पहुँच जाएंगे। पिताजी ने उन्हें फूल बटोरते हुए देख लिया तो उन्हें डांटने लगेंगे। पहले भी कभी कभी ऐसा हुआ है। रामू और चीमू को सुशील रोज इस तरह इंतजार करता था। आज भी उसने यही किया, लेकिन आज उनके आने के आसार ही नहीं दिखते। अब तो उसके स्कूल जाने का समय भी हो जाएगा। जब वे नहीं आए तो सुशील स्कूल जाने को निकल पड़ा। पैंट की जेब में रामू और चीमू के लिए दो टुकड़े रोटी लेता गया। रामू और चीमू का घर उसके स्कूल जाने के रास्ते में पड़ता है।
0: रामू चीमू रोज फूल बटोरने यहाँ आते थे। उस समय सुशील उन्हें रोज रोटियां खाने को देता था। रोटी खाकर वे मारे खुशी के नाचने लगते थे, लेकिन आज भी क्यों नहीं आए, ये समझ में नहीं आया। वो बहुत से कारण सोचने लगा। रामू चीमू की बात वो बार बार भूलना चाहता है, लेकिन कहाँ भूल पाता है। उसे बार बार उस दिन की बात याद आती है जिस दिन उससे उनका परिचय हुआ था।
1: उस दिन वह अपने दादा के साथ नदी किनारे घूमने गया था। वहाँ से जब लौट रहा था तो दादा ने कहा, मुन्ना उन दो बच्चों को तो देखो। सुशील ने घूम कर देखा कि दो लड़के आकाश में उड़ते हुए बगुलों से कुछ कह रहे हैं। बगुला बगुला टीका देता जा, कौन सा टीका भाई, सफेद टीका देता जा। दोनों फिर एक साथ गाना गाकर बगुलों को बुलाते। बगुला ऐ सफेद टीका लगा जा, हमारी बातें सुनता जा, बगुला ऐ सफेद टीका लगा जा।
0: सुशील को ये लड़के बहुत अच्छे लगे। वो उनके पास जा पहुंचा, बच्चों का नाम पूछा तो रामू और चीमू बताया। कुछ ही दिनों में सुशील के साथ उनकी दोस्ती हो गई। इनसे दोस्ती के कारण सुशील के पिता ने अपने बेटों को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन सुशील कभी भी इनसे दोस्ती न छोड़ सका, बल्कि दोस्ती बढ़ती गई।
1: रामू और चीमू यहाँ के नहीं थे, अपने रोजगार के लिए यहाँ आकर बस गए थे। इनके माँ बाप मरे हुए जानवरों की हड्डी इकट्ठी करते और बाहर के बाजार में बिक्री करते थे। इसी व्यवसाय में किसी तरह गुजारा चलता था। रामू की माँ रोज भगवान की पूजा करती थी और इसीलिए रामू और चीमू फूल लाकर माँ को दिया करते थे। इन्हीं फूलों को लाने के लिए दोनों भाई रोज पौ फटते ही आकर यहाँ से फूल बटोर बटोर कर ले जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज वे क्यों फूल बटोरने नहीं आए। सुशील को इस विचार ने तंग कर रखा था।
0: इस तरह सोचता सोचता सुशील उसके घर के नजदीक जाकर रुक गया। सुशील ने पूछा कि आज फूल बटोरने वे क्यों नहीं आए, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। इतने में रामू के माँ बाप आगे आए और कहने लगे, हम लोग आज ये जगह छोड़कर जा रहे हैं, रामू और चीमू भी चले जाएंगे। सुशील को इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन रामू की माँ ने बताया,
1: हाँ छोटे बाबू, हमारा हड्डी उठाने का काम फिलहाल यहाँ से खत्म हो गया। अब नई जगह की तलाश में यह स्थान छोड़ रहे हैं। दूसरी जगह हम हड्डी उठाने का काम करेंगे।
0: इस बात से सुशील को बड़ा कष्ट पहुँचा। वो रामू और चीमू की ओर देख रहा था। वे भी सुशील की ओर एक टक देख रहे थे। उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे।
1: अंत में रामू अपने माँ बाप के साथ जाने लगा। उसकी

0: बाबा ने गाड़ी में घोड़े जोत दिए। रामू और चीमू ने फुशील से विदा ली। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। फुशील भी रो रहा था। उनकी गाड़ी चलने लगी, पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेजी से।
1: उस चलती हुई गाड़ी की ओर सुशील एक टक देखता रहा। हठात उसको रामू और चीमू के लिए लाए हुए रोटी के टुकड़ों की याद आई। उसने उसे अपनी जेब से निकाला, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। रोटी के टुकड़े हाथ में लेकर गाड़ी के पीछे वो दौड़ना चाहता था कि पीछे से किसी ने उसे गोद में उठा लिया। मुड़कर देखा तो उसी के दादाजी हैं। वो दादाजी की छाती से चिपक कर फफक फफक कर रोने लगा। दादाजी के मुंह से निकला, शिशु भगवान होता है, उसके सामने जाति धर्म भाषा की कोई दीवार नहीं होती।
0: फुशील बार बार दोहराने लगा, ऐ बगुला सफेद फूल लेता जा, ऐ बगुला सफेद टीका देता जा।
1: तो कैसी लगी कहानी बच्चों? बहुत अच्छी कहानी थी, है ना? और दीदी बच्चों को हम लोगों ने कहानी भी सुना दी, उनका मनोरंजन भी हो गया और अब कुछ जानकारी की बातें और होनी चाहिए। तो चलिए, हर हफ्ते हम बच्चों को एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं और वो प्रेरक व्यक्तित्व हैं
0: प्रकृति की सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत।
1: बच्चों, भारत की धरती ने अनेक महान कवियों और साहित्यकारों को जन्म दिया। उन्ही महान साहित्यकारों में से एक नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी का। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे और उनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, मानवता और सुंदर भावनाओं का अद्भुत मेल दिखाई देता है। चलिए, उनकी एक कविता से हम शुरुआत करते हैं।
0: मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, ना बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए।
1: मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैं गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो बच्चों, इस तरह की अनेक कविताएं सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी। बच्चों, हम आपको बता दें कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ी गांव कसौनी में हुआ था। उनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता। चारों ओर ऊंचे पहाड़, हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाएं थी। यही प्राकृतिक सुंदरता आगे चलकर उनकी कविताओं की पहचान भी बनी।
0: उनका बचपन आसान नहीं था बच्चों। जन्म के कुछ ही घंटे बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। दादी उन्हें बहुत प्यार करती थी और कहानियां सुनाया करती थी। इन्हीं कहानियों से उनके मन में कल्पना और संवेदनशीलता का विकास हुआ।
1: बच्चों, बचपन में पंत जी का नाम था गोसाई दत्त। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। वे बचपन से ही शांत स्वभाव के थे और उन्हें अकेले बैठकर प्रकृति को निहारना बहुत अच्छा लगता था। वे बादलों के बदलते रंग, पहाड़ों की सुंदरता और फूलों की खुशबू को बड़े ध्यान से महसूस करते थे।
0: कहा जाता है कि बचपन में वे पेड़ों और पक्षियों से भी बातें किया करते थे। उन्हें लगता था कि प्रकृति भी इंसानों की तरह मुस्कुराती और बोलती है। यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति जीवित दिखाई देती है। वे पढ़ाई में भी अच्छे थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से ही वे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य के और अंग्रेजी साहित्य में रुचि लेने लगे थे। स्कूल में शिक्षक उनकी कल्पना शक्ति और सुंदर लेखन की प्रशंसा करते थे।
1: बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति से बहुत प्रेम था। उनकी कविताओं में पहाड़, फूल, झरने, पक्षियों का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, छोड़ द्रुमो की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन पंक्तियों में प्रकृति के प्रति उनका गहरा प्रेम दिखाई देता है। बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत की राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभक्ति भी उनकी कविताओं में झलकती है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो पंत जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता 15 अगस्त 1947 में राष्ट्र की स्वतंत्रता का भव्य स्वागत किया। इन पंक्तियों में राष्ट्र के प्रति उनका अपार हर्ष और देशभक्ति झलकती है। चीर प्रणमय ये पुण्य अहन, जय गाओ सूरगण, आज अवतरित हुई चेतना भू पर नूतन, नव भारत फिर चीर युगों का तमस आवरण, तरुण अरुण सा उदित हुआ, परिदीप्त

0: कर भुवन सब हुआ अब विश्व सभ्य धरणी का जीवन आज खुले भारत के संग भू के जड़ बंधन।
1: पंत जी बचपन से ही बहुत भावुक थे, किसी को दुखी देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। वे मानते थे कि हर इंसान को प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। उनकी कविताओं में यही संवेदनशीलता झलकती है। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इन पंक्तियों में वे बताते हैं कि इंसान सबसे सुंदर है क्योंकि उसके पास प्रेम और समझ की शक्ति है।
0: बच्चों जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका मन कविता लिखने में अधिक लगने लगा। उन्होंने प्रकृति और जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोना शुरू किया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत आदि। उनकी रचना चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया।
1: सुमित्रा नंदन पंत का जीवन आप लोगों को कई अच्छी बातें सिखाता है बच्चों। प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन और उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेकर अच्छा इंसान बनने का प्रयास हमें भी करना चाहिए।
0: तो बच्चों ये थे महान कवि सुमित्रा नंदन पंत। और दीदी अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो हमें बच्चों से विदा लेनी होगी। लेकिन बच्चों चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो नूतन प्रसाद की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
2: जय हिंद बच्चों।
3: अभी आप सुन रहे थे बाल सभा, चर्चा थी गर्मियों के फल पहचाने, खाएं खिलाएं सेहत बनाएं, छुट्टियों में बनाएं बर्ड हाउस। प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। 4:35 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5:02 पर आप सुनेंगे युवाणी। चर्चा होगी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। अनावश्यक तनाव से बचे, नहीं बढ़ेगा रक्तचाप, स्वस्थ जीवन अपनाएं युवा। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडेय की।

शाम 5:33 पर श्रमिक भाइयों का कार्यक्रम श्रमिक लोक, जिसमें आप सुनेंगे नियमित जांच अपनाएं, उच्च रक्तचाप को दूर भगाएं, देश की धड़कन 90 वर्षों से हर घर की आवाज, कौशल प्रशिक्षण प्रगति का आधार, बदलते मौसम में रखें अपने सेहत का ख्याल। शाम 6 बजे खेतीबाड़ी का प्रसारण होगा। चर्चा होगी खेती में मोबाइल ऐप का प्रयोग। बातचीत होगी खरीफ आने से पहले खेत की तैयारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर परवेज आलम, भेंटकर्ता कृष्ण जीवन पौराणिक। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। छह 6:32 पर हमारी दुनिया का प्रसारण होगा। चर्चा होगी अच्छा पड़ोसी सच्चा मित्र, सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते कदम। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा 7 बजे। 7:11 पर जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनेंगे हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल, जिसमें आप सुनेंगे कविताएं नीरज कुमार की नीर, लघु कथाएं रश्मि सिंह की। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। 7:45 पर संताली समाचार पत्रिका, रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में।

अगला गीत है फिल्म गुरु से, जिसे गाया है AR रहमान, चिन्मई मर्तुजा खान और कादिर खान ने। बोल है गुलजार के, धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कार्यक्रम शांत संगम में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। अगली पेशकश है फिल्म लव से SP बालासुब्रमण्यम व चित्रा के स्वर में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है आनंद मिलिंद का।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साज सरगम। अब आप सुनेंगे आखिरी गीत फिल्म चांदनी से, लता मंगेशकर व बाबला मेहता के स्वर में। रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है शिव हरी का।

इस प्यारे से गीत के साथ ही संपन्न होता है आज का कार्यक्रम साज सरगम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अब तक के मुख्य समाचार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं परीक्षा के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक के द्वारा यौन शोषण और गर्भवती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेल आईजी मामले को दबाने, फाइलें गायब करने और सबूत मिटाने के लिए महिला कैदी को गुप्त स्थानों व अस्पतालों में ले जा रहे हैं, जबकि गवाह कर्मियों का तबादला कर उन्हें चुप कराया जा रहा है। जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के झारखंड विद्युत श्रमिक संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रमिकों ने बकाया पीएफ, ईएसआई और अन्य सुविधाओं को लेकर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में श्रमिकों ने संबंधित ठेकेदार पर मनमानी और कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर कांडरा मुख्य मार्ग स्थित BSNL कार्यालय के समीप कल रात एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आदित्यपुर थाने की गश्ती पुलिस ने उसे देर रात घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था। लोहरदगा के मंडल कारा में जेल अदालत, विधिक जागरूकता शिविर सह मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान डालसा सचिव मनोरंजन कुमार ने जेल में संचालित जेल विधिक सहायता क्लिनिक और शिशु गृह के बारे में जानकारी ली। जमशेदपुर में आयोजित झारखंड राज्य कबड्डी संघ की विशेष बैठक में वर्ष 2026-2030 के लिए नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। महासचिव संजय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जून के द्वितीय सप्ताह में चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी रांची है, शाम के 5:03 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी, प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। आज आपके साथ है श्रेया और तनिष्का।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहां हर दिन होती है नई बातें, नए विचार और ढेर सारी मुस्कानें। आज शो में हूं मैं आपके साथ श्रेया,
1: और मैं हूं तनिष्का।
0: आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: आज के इस खूबसूरत सफर में हम बातें करेंगे जिंदगी की, सपने और खुशियों की। तो तैयार हो जाइए कुछ शानदार गीतों के लिए, दिलचस्प जानकारियों के लिए और मज़ेदार बातचीत के लिए। दोस्तों, हमारे लिए हर दिन खास होता है और विशेष भी, और इसीलिए आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे या विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। दोस्तों, ये दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य है लोगों को उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करना।
1: बिल्कुल श्रेया, जागरूकता आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि हम अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए अलग से समय निकालना बहुत मुश्किल होता है।
0: बिल्कुल, और इतनी भागदौड़ में अनियमित खान पान, तनाव, गुस्सा आना या स्ट्रेस होना आम है, मगर इसे नज़रअंदाज करने से ही समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर का रोल प्ले करता है।
1: हाँ, और हमारे युवा दोस्त जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, चाहे एकेडमिक्स हो या करियर में, हम ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि स्वास्थ्य को दाव पर रख कर वो सफलता प्राप्त करे, क्योंकि एक अच्छे जीवन की नींव होती है हमारी सेहत, और यही हमारी असली पूंजी है। तो दोस्तों, आइए आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं हाइपरटेंशन के बारे में, ये कैसे होता है और इसके और
0: दोस्तों, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर वो कंडीशन है जब खून का दबाव धमनियों में यानी हमारे आर्टरीज पर सामान्य से अधिक हो जाता है, और लंबे समय तक ये समस्या रहने पर हार्ट, किडनी और ब्रेन तीनों पर असर पड़ सकता है। और आपको बता दें कि ये एक साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण कभी भी क्लियरली पता नहीं चलते।
1: और अगर आपको सर दर्द, चक्कर आना, थकान महसूस होना या सांस फूलने जैसी कोई भी लक्षण नज़र आते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके हाइपरटेंशन की चेकअप करवानी चाहिए। वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। और श्रेया, अगर हम इससे बचना चाहे या इससे दूर रहना चाहे तो क्या करना चाहिए, वो भी हमें श्रोताओं को ज़रूर बताना चाहिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, कम नमक वाला संतुलित खाना खाएं, पर्याप्त नींद लें, रोज़ाना व्यायाम करें, ज़्यादा तला या जंक फूड अवॉइड करें और धूम्रपान और शराब से दूर रहें। हमारे ब्लड प्रेशर को ये सारी चीज़ें नियमित रखती हैं।
1: लेकिन श्रेया, एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण जो हम युवा कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमें हाइपरटेंशन से दूर रखेगा, वो है अनावश्यक तनाव से बचना।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम युवा हर बात को चरम सीमा तक ले जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यूथ में ओवर थिंकिंग की समस्या काफ़ी गहरी होती है।
1: हाँ, जैसे छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा चिंता करना, हर समय भविष्य की फिक्र करना, काम का ज़रूरत से ज़्यादा दबाव लेना या दूसरों की बातों का मन पर लेना, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके हाइपरटेंशन को बढ़ाने में काफ़ी बलवान हो सकता है। इसलिए पॉजिटिविटी से काम करें, निराश ना हो, क्योंकि अनावश्यक तनाव से बचेंगे तो रक्तचाप नियंत्रित होगा।
0: बिल्कुल दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि कई बार हमें जीने का तरीका भी सिखा जाते हैं।
1: और जब ज़िंदगी की भाग दौड़, तनाव, पढ़ाई, काम, जिम्मेदारियां और फ्यूचर की टेंशन हमारे दिमाग पर हावी होने लगती है, तब धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता है, और यही स्ट्रेस कई बार हाइपरटेंशन का कारण बन जाता है।
0: लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमें बस रुक कर सांस लेने की ज़रूरत होती है, अपने लोगों के साथ मुस्कुराने की ज़रूरत होती है, और यही बात हमें बहुत खूबसूरती से सिखाती है फिल्म कल हो ना हो का ये प्यारा गाना।
1: ये गाना हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का हर पल कीमती है, कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए आज को खुलकर जीना चाहिए।
0: और सच कहें तो अगर हम हर छोटी बात पर चिंता करने के बजाय थोड़ा मुस्कुराना सीख जाएं, थोड़ा खुद को समय दें, अपने मन को शांत रखें, तो शायद हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं भी काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि खुश रहना सिर्फ दिल के लिए नहीं, सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज़िंदगी को थोड़ा सा हल्का बनाते हैं, तनाव को थोड़ा दूर रखते हैं और सुनते हैं ये गाना जो दिल को सुकून देता है।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सच में कल हो ना हो, हमें ये सिखाता है कि जिंदगी को बेवजह की चिंता में नहीं बल्कि खुलकर जीने में ही असली खुशी है।
7: बिल्कुल, और जब इंसान हर समय स्ट्रेस और टेंशन में रहता है तो उसका असर सिर्फ मन पर नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। हाइपरटेंशन का एक बड़ा कारण यही लगातार दबाव और ओवरथिंकिंग है।
6: इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि खुद को खुश रखना, थोड़ा घूमना फिरना, हंसना, दोस्तों के साथ समय बिताना और अपनी पसंद की चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है।
7: और इसी बात से याद आता है हमारा अगला गाना, जो जिंदगी को थोड़ा बेफिक्र होके जीने की बात करता है। कभी कभी रूटीन से निकल कर अपने मन की सुनना भी ज़रूरी है।
6: सही कहा, हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश, हर चीज़ का प्रेशर, ये सब हमें अंदर से थका देती है। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं दोस्तों, उसमें थोड़ा पागलपन, थोड़ी मस्ती और थोड़ी मटरगस्ती भी होनी चाहिए।
7: तो दोस्तों, अब वक्त है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा झूमने का और सारी टेंशन को कुछ देर के लिए साइड में रखने का।

0: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा धनबाद से। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: यह एकदम आम धारणा नहीं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज को करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होता है कि हार्ट डिजीज में या हाई ब्लड प्रेशर में रक्त नलिकाओं की अंदरूनी परत को क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से वहां पर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसको कि हम लोग प्लाक बोलते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि अचानक तनाव की वजह से या एक्सरसाइज की वजह से ये प्लाक कभी कभी फट जाता है और रक्त नलिकाओं में रक्त संचार पूर्णतया अवरुद्ध हो जाने की वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मरीज को हार्ट अटैक आ जाता है।
0: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर

0: Healthy India।
1: जब हम लगातार तनाव, काम और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे थकने लगता है, और अगर हम थकान को समय रहते समझ ना पाए तो यही स्ट्रेस, हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं को बढ़ा देता है।
2: इसलिए मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रुकना, खुद को समझना, अपने मन की सुनना, ये सब भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी काम।
1: और कभी कभी हमारा मन भीड़ में रहकर भी कहीं दूर भटकता रहता है, जैसे उसे सुकून की तलाश हो। यही एहसास बहुत खूबसूरती से महसूस होता है हमारे अगले गीत में।
2: ये गाना हमें उस शांत एहसास से जोड़ता है जहाँ इंसान कुछ देर के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर बस अपने मन की आवाज़ सुनना चाहता है।
1: तो दोस्तों, इस खूबसूरत सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म चमेली से बहता है मन कहीं।

0: आज की तेज भागती जिंदगी में हम अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं।
1: खासकर युवाओं की बात करें तो पढ़ाई, करियर, सोशल मीडिया, देर रात तक जागना, गलत खान पान और लगातार तनाव, ये सब धीरे धीरे हमारी सेहत को प्रभावित कर रहे हैं।
0: और यही कारण है कि आजकल हम कम उम्र में ही हाइपरटेंशन, थकान, एंजाइटी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं।
1: इसलिए दोस्तों, सिर्फ सपनों के पीछे भागना ही ज़रूरी नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है।
0: सही कहा श्रेया, अच्छी नींद, संतुलित खाना, थोड़ा एक्सरसाइज, मन की शांति और खुश रहने की कोशिश, यही एक अच्छी और स्वस्थ जीवन शैली की पहचान है।
1: इसलिए आज ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतें शामिल करें, जैसे समय पर खाना, थोड़ा वॉक करना, मोबाइल से थोड़ा ब्रेक लेना, अच्छी नींद लेना और सबसे ज़रूरी, अपने मन को शांत रखना।
0: क्योंकि अगर मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर और मन दोनों साथ हों तभी हम अपने सपनों की पूरी ऊर्जा के साथ पूरा कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं है, बल्कि खुश रहना, एक्टिव रहना और ज़िंदगी को संतुलित तरीके से जीना भी उतना ही ज़रूरी है।
0: और दोस्तों, आज के युवाओं के पास सपने भी बड़े हैं और जिम्मेदारियां भी, ऐसे में खुद का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि ज़रूरत है।
1: सही कहा, क्योंकि अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार, अपने करियर और अपने भविष्य का सही तरीके से ध्यान रख पाएंगे। दोस्तों, बातें तो हमें और भी करनी थी, पर समय हो गया है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी दोस्त श्रेया
0: और तनिष्का को इजाज़त।
1: नमस्कार।

अभी आपने सुना युवाणी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है श्रमिक भाइयों का कार्यक्रम श्रमिक लोक। प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की। आज आपके साथ है श्वेता आर्या और कुमारी आरती।

0: श्रमिक साथियों नमस्कार जोहार, स्वागत है कार्यक्रम श्रमिक लोक में जिसे लेकर हाजिर हैं हम। मैं आरती और हमारे साथ है श्वेता। श्वेता, मैं देख रही हूँ कि आज तुम थोड़ी सुस्त लग रही हो, मतलब वो तुम्हारे चेहरे में जो हंसी है ना वो कम दिख रही है, क्या बात है?
1: बिल्कुल, थोड़ी सी तो तबीयत नासाज है, लेकिन कार्यक्रम में चलिए हम अपने श्रमिक साथियों को सबसे पहले नमस्कार करते हैं। और ये जो मौसम जो है ना अभी लगातार जो बदल रहा है, कभी बारिश कभी गर्मी, तो ऐसे में थोड़ी थोड़ी तबीयत तो
0: और अप डाउन भी होता है, तुम्हें स्कूटी से आना जाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो परेशानी होती है। तो साथियों, आप भी दिन भर तपती धूप में काम करते हैं तो जब भी कमरे में आए तो ध्यान रखें कि रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो। एसी कमरे में तुरंत ना जाए, ना ही फ्रिज का ठंडा पानी पिए, इससे तुरंत गला खराब हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी जो श्वेता ने नहीं बरता है।
1: बिल्कुल, थोड़ी सी चूक आपको परेशान कर सकती है, आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है। लेकिन चूंकि मौसम तो गर्मी का है तो, और गर्मी कभी बहुत ज्यादा कभी कम, कभी बारिश कभी कुछ, ये अलग अलग जो मौसम लगातार जो बदल रहा है, इससे आप किसी भी तरह की बीमारी के चपेट में बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आपका जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो इतनी जल्दी अनुकूलित नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आपको हम ये कहना चाहेंगे कि इस मौसम में आप ऐसे खाद्य पदार्थ को अपने आहार में शामिल करें जिसकी तासीर ठंडी हो। जैसे मौसमी फल, अभी आपको तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब पानी वाले फल,
0: मौसम तो गर्मी का है।
1: बिल्कुल, तो ऐसे पानीदार फल आपको मिल जाएंगे। सब्जियां भी आपको कई सारी हरी हरी ताजी सब्जियां मिल जाएंगी जो हर दिन अपने भोजन में आप शामिल करेंगे, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा, तो ये किसी भी तरह की छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने के लिए आप अनुकूलित होंगे।
0: बिल्कुल, और जो कच्चा आम होता है ना श्वेता, वो गर्मियों के दिन में हमारे शरीर को बहुत ठंडक पहुंचाती है और बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए।
1: बिल्कुल, तो पानी के लिए आप सत्तू का शरबत पी सकते हैं इस मौसम में, आम का पन्ना बना के पी सकते हैं। तो ये सब आपके अप्रोच में है। तो ऐसी ये जो भी ये मैं बता रही हूँ, इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आपके पहुंच से दूर है।
0: तो श्वेता, ये तो हो गई बदलते मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे ध्यान रखना है। लेकिन आज तुम्हें पता है कि आज यानी 17 मई को हम प्रत्येक वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप सब ये सुन रहे होंगे, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं, और इस दिन की शुरुआत उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य हाई ब्लड प्रेशर के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, इसके रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ व्यक्तिगत, सामुदायिक और स्वास्थ्य प्रणाली स्तरों पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल साथियों, हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन यह दिल का दिल में दौरा पड़ता है ना उसका, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर और असमय मृत्यु का खतरा काफी बढ़ा देता है। तो हम कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर विश्व स्तर पर असमय मृत्यु का सबसे बड़ा रोके जा सकने वाला कारण बना हुआ है।
1: बिल्कुल, आपने ये जो कहा कि रोके जा सकने वाला, यानी कि सही समय पर आप अगर सावधान हो जाएं, अपने भोजन और अपनी दिनचर्या को लेकर के अगर आप सतर्क हैं, तो आप इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों जो ब्लड प्रेशर है दोनों आपके लिए घातक होंगे, और अनुमानत वैश्विक स्तर पर लगभग 1.4 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। और दोस्तों, प्रभावी और किफायती उपचार उपलब्ध होने के बावजूद कई लोगों का रक्तचाप पर्याप्त रूप से नियंत्रित है। शीघ्र निदान, नियमित निगरानी और निरंतर उपचार से उच्च रक्तचाप से संबंधित बहुत सारी जटिलताओं को रोका जा सकता है।
0: ये तुमने बहुत ही पते की बात कही, क्योंकि खासकर अगर हम अपने यंगस्टर्स की बात करें, हमारे युवाओं की बात करें, तो उनके जो जीवन शैली है ना इतनी खराब हो गई है, वो रात रात भर जगते हैं, दिन दिन भर सोते हैं, खाना एकदम जंक फूड की तरफ ही उनका आकर्षण होता है, शरीर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर ही बैठ के स्क्रीन टाइम ही उनका समय ज़्यादा रहता है। तो आज के दौर में अब सुनने को मिलता है 32 साल 36 साल के युवाओं को हार्ट अटैक हो गया, ऐसा कभी पहले तो नहीं हुआ करता था, लेकिन अब देखो कितनी दुख की बात है हमारे देश में कि हमारे युवा वर्ग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने युवाओं को भी जरूर कहना चाहेंगे कि साथियों, आपको अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से जो हमारी जो नियम है, डिसिप्लिन है, उस पे लेकर आना होगा। आप रात सोने के लिए बनाए जाते हैं तो आप रात को सोइए, दिन में अपना काम कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि स्क्रीन टाइम जो है उसे कम करिए और जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाइए।
1: बहुत सही कहा आपने, ये सब जो बातें हम बता रहे हैं हैं तो बहुत छोटी और सुनने में ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते और इसी वजह से हम बीमारी की गिरफ्त में जाते हैं। और चूंकि हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप में हाई ब्लड प्रेशर की लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और आप धीरे धीरे बीमारी की चपेट में चले जाएंगे।
0: बिल्कुल। तो इस वर्ष WHO विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करना। नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें, इस मुख्य हत्यारे को हराएं और यह एक साझा जिम्मेदारी है जिसके लिए व्यक्ति को अपना ध्यान रखना ही होगा। तो श्वेता, जब ध्यान रखने की बात आ रही है तो आओ, हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि और इनसे बातें कर रही हैं श्वेता आर्य। तो साथियों, हम हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं इनसे सुनते हैं कि उच्च रक्तचाप के का क्या कारण है और उसे कैसे उसे मुक्ति दिलाई जा सकती है।
1: लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे सामने तब आती हैं जब वो एक बहुत ही आगे के स्टेज में पहुंच जाती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि हाइपरटेंशन क्या है, कैसे होता है, क्या इसके लक्षण हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। इन सारे सवालों का जवाब के लिए आज हमारे साथ हैं विशेषज्ञ रिम्स मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि सिन्हा। मैम, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: मैडम। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है।
2: हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि खून के बहाव में जब प्रेशर बढ़ जाता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और ये लगभग हमारे करीब 30% लोग इससे ग्रसित है। हर तीसरा व्यक्ति को हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है। इसमें से 50% लोग हैं ऐसे

0: बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जिनके फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है, उन लोगों को हमेशा अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहेगा। और दूसरा चीज़ है, ये ब्लड प्रेशर जो है ये हार्ट अटैक, लकवा, किडनी में प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ब्लड प्रेशर को हमेशा चेक कराते रहें नियमित रूप से, चाहे हमें हो, फैमिली हिस्ट्री हो नहीं हो, लेकिन बीच बीच में ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं हमें है तो नहीं, क्योंकि बहुत बार एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को कुछ मालूम नहीं रहता है कि उसे ब्लड प्रेशर है, और अचानक गए डॉक्टर के पास और पता चला कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसलिए हमेशा नियमित रूप से चेकअप कराते रहना चाहिए।
1: जी, बहुत सही कहा आपने मैम, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि कई सारे लक्षण ऐसे होते हैं कि जो तुरंत से नज़र नहीं आते जब तक कि वो बहुत घातक ना हो जाएं। तो मैडम आपसे जानना चाहेंगे, ये हाइपरटेंशन के जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे कि आप डॉक्टर से जा करके मिलेंगे?
0: हाइपरटेंशन के सिम्टम्स, बहुत पेशेंट्स सांस में तकलीफ लेके आते हैं, सीने में दर्द लेके आते हैं, कुछ लोगों को हेडेक होता है, माथा में दर्द होता है, कुछ लोगों को उल्टियाँ भी होने लगती हैं, कुछ लोगों को स्ट्रेस लगेगा, हमेशा सिर भारी भारी लग रहा है, बहुत थकावट, इस तरह की चीज़ें महसूस कर सकते हैं। कभी कभी अचानक आई साइट लॉस, या कभी कभी अचानक पेशेंट लकवा लेके आ जाता है और पता चलता है पूछने पर, जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और पूछने पर पता चलता है कि उन्हें पहले से मालूम नहीं है, या कुछ लोगों को मालूम था लेकिन दवाई नहीं ले रहे थे, कुछ दवाई ले रहे थे जो कि ठीक से नहीं, रेगुलर बेसिस पे नहीं ले रहे थे। तो ये सब कारण, कभी कभी ये सब सिम्टम्स पेशेंट में मिल सकते हैं, सीने में दर्द से लेके सांस में तकलीफ, सर में दर्द, उल्टी, थकावट, कभी कभी नाक से ब्लीडिंग भी होने लगता है, जिसको एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, अचानक नाक से खून बहने लगा और जब गए हम दिखाने के लिए डॉक्टर के पास तो पता चला कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, इस कारण से उसे ये दिक्कत हुई है।
1: तो जितने साथी हमें आप सुन रहे हैं, आप ये ज़रूर जानते होंगे कि अगर जो जो सिम्टम्स मैम ने बताया इसमें से कोई भी लक्षण अगर आपको अपने आप में नज़र आता है तो आप निश्चित रूप से जाकर के डॉक्टर से मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीमारियों को अगर स्टार्टिंग स्टेज पर जाकर के आप अगर उसका इलाज कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको क्योर हो जाएगा, आप बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन यदि आप अनदेखा करेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे, तो हो सकता है कि बीमारी आपकी लाइलाज भी हो सकती है। मैम, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, ऐसा क्यों?
0: साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि जैसे बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि हमें ब्लड प्रेशर है और अचानक सडनली हार्ट अटैक आ गया, अचानक डेथ हुआ, डेथ तो हार्ट अटैक से हुआ लेकिन हो सकता है कि बैकग्राउंड में ब्लड प्रेशर भी रहा हो। ऐसे ही इंटरनल सीवीआई या ब्लीड जो हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, उसे मालूम नहीं था ब्लड प्रेशर था उसको, या उसे दवाई ठीक से नहीं ले रहा था, तो ये इसी वजह से इसे हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है।
1: जी, ये तो वाकई में दोस्तों बहुत ही घातक बीमारी है, तो इसलिए जो आपका स्वास्थ्य है उसको हमेशा आप मॉनिटर करते रहेंगे। अगर आप खुद से नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कुछ इस तरह की बीमारी हो सकती है, तो आप निश्चित रूप से जा करके, बहुत सारे ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहाँ आप जाएंगे तो आप अपने जाँच करा सकते हैं और आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको क्या बीमारी है। क्योंकि मैम देखा जा रहा है कि बहुत लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जा रहा है, अचानक से हार्ट अटैक आ जा रहा है, आज जैसा देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र में ही लोगों को अचानक से कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो ऐसे में लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली यदि फैमिली हिस्ट्री है, उसके पेरेंट्स या उसके दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को यदि ब्लड प्रेशर है तो उन्हें आजकल तो 20 के बाद ही एकदम ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए नियमित रूप से, और यदि एक बार बढ़ा हुआ मिल जाता है तो उसी समय से पहले प्रिकॉशंस स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रिकॉशंस में सबसे पहले डाइट रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सरसाइज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। डाइट में क्या, ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, नमक ऊपर से नमक नहीं खाएं, एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, टहलना तो हम लोग कर ही सकते हैं। स्ट्रेस, आजकल के लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो घरेलू स्ट्रेस हो, कैरियर बेस्ड स्ट्रेस हो, बाहर का स्ट्रेस हो, तो स्ट्रेस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। लैक ऑफ एक्सरसाइज, सिडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, घर में आराम से बैठना, आजकल तो लोग मोबाइल पे टीवी पे लगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गए, ये सब कारण है जो कि हाइपरटेंशन को बढ़ा सकता है। तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, और जितना अर्ली हो सके हमें नियमित रूप से एटलीस्ट ब्लड प्रेशर जांच करा सकते हैं। आजकल तो सब जगह बीपी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, आजकल लोग खरीद के अपने घर में भी मॉनिटर करते हैं, डिजिटल आता है, और जहां यदि आपको लगे कि नहीं मेरा हमेशा रेगुलर रीडिंग बढ़ा हुआ आ रहा है तो हमें डॉक्टर से सलाह

0: लेना चाहिए। हमारा नॉर्मल बीपी 120/80 है, 130/80 से कम रहना चाहिए। तो यदि डायबिटिक हैं आप, ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा, यदि वेट है आपका, तो आप लोगों को तो स्पेशली एकदम ध्यान रखना चाहिए कि बीपी को अपना कंट्रोल में रखें।
1: बहुत सही कहा मैडम आपने। जो हमारे साथी हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो श्रमिक वर्ग के हैं, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अपने तनाव को दूर करने के लिए नशा पान की ओर मुड़ जाते हैं, तो ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए, तनाव को कम करने के लिए शराब पीना सोल्यूशन नहीं है
1: जी,
0: तो और सोल्यूशन नहीं, क्योंकि उससे और आपकी एक एक्स्ट्रा बीमारी, क्रोनिक लिवर डिजीज, वॉमिटिंग, उल्टी, सिरोसिस, ये सब दूसरी बीमारी हो जाएगी। तो स्ट्रेस कम करने के लिए हम जो कर सकते हैं वो है कि घर आके थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिसको बोलता है, थोड़ा देर आँख बंद करके थोड़ा सा लेट जाए, इससे थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन मिलेगा, उससे हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ घुल मिल कर बातें करें, तो इससे भी स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। सोना, स्लीप बहुत ज़रूरी है, एडिक्वेट स्लीप और एडिक्वेट टाइम, मतलब एक बहुत ही अच्छा साउंड स्लीप जो कि 6 से 7 घंटा, मिनिमम 6 to 8 hours का साउंड स्लीप, ये भी आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। और हम लोग क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है जिसमें कि बहुत पसीना होता है, तो हम लोग बहुत सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन तो बहुत नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना नॉर्मल जो हम लोग खाना में खाते हैं उतना खा सकते हैं। ऊपर से नमक, जैसे सलाद में नमक या इस तरह का चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें या कम करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। यदि मोटापा है तो एक्सरसाइज करें, लिफ्ट अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, ये सब चीज़, और अपने डाइट में इम्प्रूवमेंट करें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि एक बार यदि ब्लड प्रेशर आपको हो गया और दवाई शुरू करते हैं, तो दवाई को कृपया नहीं छोड़ें, उसको रेगुलर खाते रहें। बहुत लोगों का आदत है जैसे ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है वो दवाई छोड़ देते हैं, ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका स्ट्रोक यदि लकवा, हार्ट अटैक, किडनी में खराबी, ये सब का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए एक बार नियम शुरू करते हैं दवाई तो रेगुलर खाएं, नियमित चेक कराते रहें, और डोज के एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है।
1: मैडम आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जो हमारे साथी हैं वो अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करके, अपने खान पान में कुछ चीज़ों को ऐड करके, जैसे मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, इनको ऐड करके, और हाँ एक बात का ध्यान रखें हमारे साथी कि वो नमक का इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि नमक के बिना भी नहीं रहा जा सकता, लेकिन नमक की जो अधिकता है वो आपको कई सारी बीमारियों में ढकेल देगा। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर जागरूक रहेंगे तो आप कई सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। मैडम आपने हमारे श्रमिक साथियों को बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ धन्यवाद।
2: श्वेता बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर रश्मि सिन्हा ने कि किस तरह से हमें अपने डाइट को कंट्रोल करना है, तनाव मुक्त अपने जीवन को जीना है। ये तो मतलब अब कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ को अमल करेंगे तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। और तनाव मुक्त की जब बात आती है तो गाना अगर हम सुन लें, गीत प्यारा सा सुन लें, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। क्या ख्याल है तुम्हारा?
1: ये भी टेंशन से मुक्त होने का एक बहुत ही आसान तरीका है।
2: हाँ तो चलो सुनते ये गीत।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मुझे लगता है कि इतने प्यारे से खूबसूरत गीत के बाद जो हमारे श्रमिक साथी के दिन भर की थकान जरूर मिट गई होगी।
3: हाँ, जाहिर सी बात, तो देखो थकान की जो बात करी श्वेता, आज हमारे श्रमिक साथी संडे मना रहे हैं, भाई वीकेंड मना रहे हैं।
2: बिल्कुल, लेकिन जो भी हो दिन भर वीकेंड में भी तो मुझे लगता है कि बहुत
3: ज्यादा
2: होता है, बहुत ज्यादा।
3: तुमने सही कहा,
2: क्योंकि पूरे घर का काम आदमी टाल रखा होता है संडे पर।
3: और सारे कपड़े साफ करना,
2: घर सफाई, घर की सफाई या जो कुछ भी काम है, लगता है कि आज संडे को ही सारा काम कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि देश की धड़कन 90 वर्षों से हर घर की आवाज, भारत के सबसे पुराने और विश्वसनीय जनसंचार माध्यम यानी आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का गौरवशाली संदेश है।
3: हाँ साथियों, अपने शानदार विरासत के 90 वर्ष पूरे करने वाला आकाशवाणी 1936 से लेकर आज 2026 तक भारत की विविध संस्कृति, समाचार और मनोरंजन को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है।
2: बिल्कुल, और दोस्तों भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1927 में बॉम्बे में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से हुई थी, जो वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बन गया और यह हर दिल पर राज करने लगा।
3: बिल्कुल, और तभी तो आकाशवाणी तो है कि जो हम अपने श्रमिक साथियों के साथ रूबरू होते हैं, है ना श्वेता? हाँ। और विविध भारती, युववाणी और जयमाला जैसे इनके ऐतिहासिक कार्यक्रमों ने पीढ़ियों का मनोरंजन तो किया ही है, और इतने सारे ज्ञान वर्धक कार्यक्रम, क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम हम सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी में ही सुन सकते हैं।
2: बहुत सही कहा आपने। और साथियों अब तो रेडियो की पहुंच को हम इंटरनेट और स्मार्टफोन पर भी सुन रहे हैं। आरती, आपको मालूम है वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के चुनौतियों के समय में सीमा पर तैनात सैनिकों के हौसला अफजाई के लिए जयमाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
3: हाँ बिल्कुल श्वेता, देखो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि कितना उस समय कितना सहारा था हमारे सैनिकों के लिए। और इस गौरवशाली सफर की पहली प्रस्तोता पता कौन थी? महान अभिनेत्री नरगिस, और उनके बाद लता मंगेशकर, आशा भोसले और मुकेश जैसे दिग्गजों ने अपनी आवाज से इस मंच को सजाया था। और ये जो आकाशवाणी का सफर है आज भी वो उसी तरह से निरंतर आगे चल रहा है, और हम उसमें अपने कार्यक्रम को सुनते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं, और साथ ही साथ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी होता है। तो श्वेता, तुम्हें क्या लगता है कि हम जब आकाशवाणी की बात करें और एक गीत ना सुने तो थोड़ा सा अधूरा लग जाता है?
2: बिल्कुल, और वैसे भी आज संडे का दिन है, तो आज तो हमारे साथी चाह ही रहे होंगे कि जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन भी चलता रहे।

0: तो भाई गीत के बाद हम कुछ काम की बातें भी कर लें।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, हर इंसान अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, तो अगर श्रमिक साथियों आप और अपने क्षेत्र में आप प्रगति करना चाहते हैं तो कौशल प्रशिक्षण जरूर लें। कौशल प्रशिक्षण किसी भी व्यक्ति, संस्था या राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार होता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और कौशल प्रशिक्षण से आप किताबी ज्ञान को व्यवहारिक दक्षता में बदल सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। निखरते हुनर, संवरते भविष्य का आधार कौशल प्रशिक्षण सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह आत्मविश्वास की चाबी है।
0: भाई बहुत पते की बात कही तुमने, यह युवा को नौकरी के पीछे भागने वाला नहीं बल्कि स्वरोजगार का सृजनकर्ता बनाता है। आधुनिक युग में सफलता के कई नई तकनीक आधारित कौशल को सीखना और उनका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कौशल प्रशिक्षण को अपना कर हम न केवल व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ सकते हैं बल्कि देश एवं प्रदेश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं।
0: तो साथियों, आप अभी भी अगर कौशल शिक्षण से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जाएं और इस योजना का लाभ उठाएं और अपने आप को और आगे उन्नत बनाएं। तो श्वेता, देखो हमारी जो स्टूडियो की घड़ी है वो भी दस्तक दे रही है कि हम अपने साथियों से विदा लें। तो इस वादे के साथ कि अपने साथियों के साथ फिर से मुखातिब होंगे, अपनी दोस्त आरती
1: और श्वेता को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर नल जल योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना के लिए सरकार के पास खजाने में 7,000 करोड़ पड़े हुए हैं, लेकिन खर्च नहीं किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को भीख नहीं दे रही है, यह हमारा अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक के द्वारा यौन शोषण और गर्भवती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जेल आईजी मामले को दबाने, फाइलें गायब करने और सबूत मिटाने के लिए महिला कैदी को गुप्त स्थानों व अस्पतालों में ले जा रहे हैं, जबकि गवाह कर्मियों को तबादला कर उन्हें चुप कराया जा रहा है। जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के झारखंड विद्युत श्रमिक संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रमिकों ने बकाया पीएफ, ईएसआई और अन्य सुविधाओं को लेकर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में श्रमिकों ने संबंधित ठेकेदार पर मनमानी और कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराड़े स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। जामताड़ा के एसपी शंभू कुमार सिंह ने जिले के पश्चिम बंगाल से सटे अंतर्राज्यीय पुलिस चौकी खुदमल्लिका बागडेहरी एवं कुंडतित थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विधि व्यवस्था और लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जमशेदपुर में आयोजित झारखंड राज्य कबड्डी संघ की विशेष बैठक में वर्ष 2026-2030 के लिए नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। महासचिव संजय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जून के द्वितीय सप्ताह में चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सब सुनवाइया भाई बहन मन के, पूनम बहन कर जोहार और बहन रोरहों के जोहार।
1: जोहार जोहार पूनम दीदी, और खेती बाड़ी सुनवाइया सब भाई बहन मन के झलेश्वरी बहन बटले जोहार। और बताओ का हाल समाचार?
0: एकदम हाल समाचार सब तो बहुत बढ़िया है। रोरे अपन कहू?
1: हाँ सब नगदे नगदा है दीदी।
0: तो इखन हमरे देखा थी बहन,
1: हाँ,
0: कि अब तो एकदम खेती बाड़ी का समय भी आवा थे। इबर तो बरखा भी बहुत बढ़िया हुआ थे।
1: बहुत बढ़िया हाँ थे कि रोगदारी खेती के हो उतना पटाग नहीं होते, लेकिन वही पत्थर पानी आओ थे नहीं दीदी।
0: हाँ,
1: तो जितनों के झेर दे थे।
0: हाँ वो तो बात है। तो बहन इखन इसन सुविधा किसान मन के भेटाए जाए नहीं
1: जेकर तो किसान मन के कहो कि आउरो के कहो ईसन ईसन टेक्निकल दुनिया में नहीं दीदी एक से एक कर सुविधा तो भेटा थे। जितने सुविधा होते उतने तो कोढ़िया मन होते जाते, लेकिन
0: लेकिन हमरे के अखन इस सुविधा के फायदा भी ले गए है।
1: हाँ।
0: तो किसान भाई मन के अखन तो ऐसा सुविधा मन भेटा जाए कि पहले से देखो कि मौसम के भी पता चल जाए।
1: हाँ। तो मोबाइल से देखो, मोबाइल बनाएल भी बगड़ाएल भी कहे ना, तो मोबाइल से का नहीं पता चले की दीदी। तो इकरो से हमरे मन बहुत कुछ पता कर सकेला। मोबाइल एप ऐसा है कि खेती कैसन है और का कर जांच कर सकेला, बहुत कुछ कर मोबाइलो से पता चले दीदी। मौसम कहली तो मौसम कर जानकारी भेटाई जाए।
0: और हमरे जे खेती करीला तो हमरे देखेला कि उकर में नाना रकम के रोग लग जाएला।
1: हाँ।
0: और हमरे रोग कर हमरे पता भी नहीं कर सकेला कि कौन सा रोग लग जाए, और अनबखा एकदम दवाई के हमरे छिड़क देला, और रोग दोसर लग है और दोसर दवाई के हमरे छिड़क देला, और सेकर से पौधा कर हानि भी हुई जाएला, मर जाए सब। तो मोबाइल ऐप कर जरिए हमरे सही रोग कर हमरे पता कर सकेला और सही दवाई कर हमरे उपयोग भी कर सकेला।
1: हाँ दीदी, तो सेल मोबाइल ऐप कर हो इकर से भी बहुत जानकारी मिलेला। तो किसान भाई बहन मन से कहब कि इकरो मदद ले कहू नहीं।
0: और एखन बहन विज्ञान इतना आगे बढ़ जाए है से चलते हमरे देखेला कि ड्रोन से भी हमरे देखेला कि
1: हाँ,
0: उकरो से रोरे देखो कि दवाई कर छिड़काव हुआ थे।
1: हाँ,
0: और उकर से भी बहुत सारा चीज ऐसा हुआ थे जेकर से कि किसान भाई मन के बहुत फायदा हुई। और उकर में है कि मेहनत भी कम होवेला, कम लगी, और उकर से काम भी एकले में भी हो जाए।
1: हाँ,
0: नहीं तो हमरे एकदम देखा थे कि आदमी कर भी कमी हो जाते है, आदमियों नहीं भेटाए ना,
1: एकले नहीं भेटाए ना।
0: हाँ,
1: और देखो नहीं किकरो बदला जाब हले जाए ना।
0: हाँ उसे भी बात है। और एकदम तो हमरे देखीला कि हर एक घर में आदमी कर कमी है, और बहुत घर तो ऐसा है कि एकदम एकला दुकला, और उसन में आदमी कैसन काम करी। और अगर इस सब कर हमरे अगर फायदा लेगा तो फिर हमरे ड्रोन से भी हमरे अगर छिड़काव करा थी तो एकले काम हो जाए।
1: हाँ।
0: हाँ। और मोबाइल ऐप कर जे हमरे सुविधा ले के हमरे बहुत सारा चीज कर खेती से संबंधित हमरे नाना रकम कर जानकारी ले के हमरे उकर फायदा उठाए सकेला बहन।
1: हाँ।
0: तो और भी कुछ कहे है तो बता दे कि रवरे भी कर फायदा लेवा थी। मम के तो पता है से चलते खूब रवरे खेती करा थी। तो बहन का करे, बातचीत तो होते रही गोटे, अगर हमरे कृषि गीत सुन लेती तो बहुत बढ़िया रहता।
1: हाँ हाँ बातचीत तो होते रही, सुनतनी रिझ रंग करे चाहिए का होने। तो दीदी कहे तो कहा थी जानकारी हो करब से नहीं चलू, तब एगो गीते सुन लेविला। कृषि गीत है मुकुंद नायक और संगीवन कर गावल।

0: तो एखन हमरे मन कृषि गीत सुनत रही मुकुंद नायक और संगी बनकर गावल गीत। तो अब एगो जानकारी करीला।
1: हाँ बहन।
0: हाँ तो जानकारी है खरीफ आवे से पहले खेत कर तैयारी करे कर बारे में बतात है विशेषज्ञ हैं डॉक्टर परवेज आलम और उनकर से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: लाए तब
3: किसान साथियों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि तपती गर्मी के बाद मानसून की आहट सुनाई देने लगी है और इसी के साथ शुरू होने वाला है खरीफ का सीजन। चाहे धान हो मक्का हो या दलहन, अच्छी पैदावार के लिए केवल बीज बो देना काफ़ी नहीं है, उससे पहले खेत को तैयार करना सबसे ज़रूरी कदम है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम, एसोसिएट प्रोफेसर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची। इनसे हम जानेंगे कि इस बार खरीफ की फसलों के लिए आप अपने खेतों को स्मार्ट तरीके से कैसे तैयार करें ताकि लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार है हमारे कार्यक्रम में।
4: नमस्कार और जोहार किसान भाइयों।
3: डॉक्टर साहब आप हमारे श्रोताओं हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि खरीफ सीजन की शुरुआत में किसानों को सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
4: देखिए बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है कि जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे किसान भाई भी जानते हैं
3: जी
4: कि हम अपने खेत से साल भर जो है खेती करते हैं। साल भर का मतलब हुआ कि
3: सालों भर
4: मतलब खरीफ में भी लेते हैं, उसके बाद रबी में भी खेती करते हैं
3: जी।
4: रबी के बाद कुछ किसान भाई सब्जी लगाते हैं, है ना, गर्मा खेती भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो मिट्टी है उसको हम लोग सालों भर काम पे लगाए रहते हैं
3: जी।
4: लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा मिट्टी जो हमको हमेशा सालों भर अनाज उत्पादन करके दे रहा है, इसका स्वास्थ्य का भी जांच होना चाहिए
3: जी।
4: या इसको भी कुछ आराम की ज़रूरत है, या इसको भी कुछ इस तरह का हम करें कि ताकि हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है ये कम ना हो। क्योंकि अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आपकी मिट्टी सालों साल आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, और आपका धीरे धीरे मिट्टी का उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होने लगा
3: जी,
4: तो लास्ट में क्या होगा, कुछ साल के बाद कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे कि आप उतना ही सारा इनपुट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे बीज का प्रयोग कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, लेकिन उत्पादन आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो अब खराब होने चला है
3: जी।
4: तो इस स्वास्थ्य को बीच में हमको बचा के रखने की ज़रूरत है और ये बिल्कुल सही समय है कि हम मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे बचाएं ताकि हमारा जो आने वाले जो खरीफ सीजन में हम फल लगाएं, जो पौधे हम लगाएं, जो भी खेती करें वो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हमको दे
3: जी। तो गर्मियों में गहरी जुताई का खरीफ की फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके फायदे क्या हैं सो बताइए।
4: हाँ, अब है कि इसी क्रम में हम आगे कहना चाह रहे हैं कि जो किसान भाई को हमने सलाह दिया आपके माध्यम से कि मिट्टी का सेहत को अच्छा रखना है
3: जी,
4: है ना, मिट्टी को बीमार नहीं होने देना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि खेत का साल में एक बार कम से कम गहरी जुताई करें
3: जी,
4: और वो गहरी जुताई करने का जो समय उचित समय है वो अभी है, है ना
3: जी। जी
4: अब है कि गहरी जुताई से मतलब क्या होता है, मैंने कितना जुताई, कितना दूर तक हम जुताई करें जिसको हम मान लें कि ये गहरी जुताई हुआ। क्योंकि आप देखेंगे कि किसान भाई जब धान या मक्का या कोई भी फसल लगाते हैं तो उस समय भी खेत की जुताई होती है
3: जी,
4: है ना, तो ये जुताई जो है 4 से 5 इंच की जुताई होती है और ये गहरी जुताई में नहीं आती है, ठीक है। तो गहरी जुताई हम तब कहेंगे कि कम से कम 10 इंच से लेके 1 फुट तक
3: जी
4: नीचे अगर हम जा रहे हैं उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये गहरी जुताई के श्रेणी में आएगा। अब फिर अगला प्रश्न ये दिमाग में आता है कि भाई इतना ज़्यादा अगर गहरी जुताई करना है तो हम कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे हम गहरी जुताई कर सकते हैं
3: जी,
4: है ना? क्योंकि किसान के पास जो देसी हल है या हमारे पास जो ट्रैक्टर में लगने वाला पीछे जो हल लगता है
3: जी,
4: उससे अधिक से अधिक 4 से 5 इंच ही जुताई कर सकते हैं, है ना? तो इससे आप गहरी जुताई नहीं कर सकते, इससे आपको फिर दूसरा मशीन आपको लेना पड़ेगा, उसका नाम है मोल्ड बोर्ड प्लाव
3: जी,
4: है ना? तो ऐसे समझिए कि ये प्लाव जो है ऐसा काम करता है कि जो मिट्टी को कम से कम 1 फुट नीचे जा करके इस मिट्टी को गहरे ढंग से जोतता है और साथ में साथ जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर ले आता है और ऊपर की मिट्टी को नीचे ले आता है
3: जी,
4: है ना? तो इसको हम बोलते हैं गहरी जुताई। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो जिस पर्पस के लिए आप करना चाह रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए करना चाह रहे हैं, वो उद्देश्य आपका सफल होगा।
3: तो इससे क्या फायदा है गहरी जुताई से?
4: हाँ, आप देखिए, अब तो हमारे कहने के हिसाब से किसान भाई ने गहरी जुताई कर लिया
3: जी,
4: आपने भी बता दिया
3: जी,
4: लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई गहरी जुताई करने से लाभ क्या है, है ना?
3: जी जी,
4: देखिए गहरी जुताई जब करते हैं तो क्या होता है, मैंने कहा ना कि मिट्टी को नीचे से ला करके ऊपर छोड़ता है, ऊपर वाले मिट्टी को नीचे दबाता है
3: जी जी।
4: तो साल भर खेती करने के दौरान अगर जितने भी खर पतवार के जो बीज हैं, जो कीड़े मकोड़े के जो अंडे लार्वे हैं, है ना
3: जी,
4: वो सब मिट्टी में उलट पुलट हो जाते हैं, ठीक है, उलट पुलट हो गए। जब उलट पुलट हो गए तो वो क्या होगा, वो सब वहीं पर
3: खत्म
4: हो जाएगा,
3: खत्म हो जाएंगे, ठीक।
4: तो एक तो इससे ये होता है कि जब आप गहरी जुताई के बाद जब खेती करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा खर पतवार या बहुत तरह का बीमारी ऐसे ही नहीं आएगा
3: जी,
4: पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये है कि आप जब 1 फीट के मिट्टी को जब आप जोत रहे हैं तो वहां तक की मिट्टी क्या हो गई, हल्की हो गई
3: जी,
4: है ना? तो हल्की होने से क्या लाभ है, हल्की होने से ये लाभ है कि जो भी आप फसल वहां लगाएंगे उसका जड़ जो है बहुत आसानी से नीचे जा
3: जाएगा जी।
4: तो आपको ये पता है कि जड़ जितना आसानी से नीचे जाएगा उतना अधिक मात्रा में उर्वरक वो अपने पौधों के लिए खींच सकता है, पानी को खींच सकता है, और आप देखेंगे कि जो पौधे का हेल्थ है वो बहुत अच्छा होता है और अल्टीमेटली पैदावार बढ़ता है
3: जी,
4: है ना? दो हो गया। तीसरा, गर्मी के शुरुआत में हम कह रहे हैं कि गहरी जुताई करिए, और इस जुताई को हम कह रहे हैं कि जब तक वर्षा मानसून आ नहीं जाता है तब तक आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, है ना
3: जी,
4: यानी कि 1.5 से 2 महीना जो है आप वहां पर उसको हम छोड़ने के लिए कहते हैं। इससे क्या लाभ है, इससे ये लाभ है कि जो भी प्री मानसून का पानी या मानसून का पानी जब खेत में पड़ेगा तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है किसान के खेत का पानी उसके खेत के नीचे जाएगा
3: जी,
4: है ना? और जब नीचे जाएगा तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो अधिक अच्छी होगी। तो ये सब फायदे होते हैं गहरी जुताई करने से, और हम आपके माध्यम से किसान भाई को सलाह दे रहे हैं कि कम से कम साल में एक बार, ना हो सके तो कम से कम 2 साल 3 साल में एक बार तो जरूर करना चाहिए ताकि आपका मिट्टी का सेहत अच्छा बना रहे
3: जी। अब बात आती है उर्वरक प्रबंधन
4: जी।
3: तो किसान तो गहरी जुताई कर लिए, अब इसमें ये बताएं कि खेत में गोबर की खाद या हरी खाद का उपयोग किस प्रकार और कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए।
4: लेकिन हाँ, ये बात जरूर है

0: हम कहते हैं कि भाई इसमें हरी खाद को आप जरूर डालिए। तो हरी खाद में क्या आता है? हरी खाद में आता है ढैंचा।
1: जी जी।
0: तो ढैंचा को क्या करना है कि गहरी जुताई करने के बाद अगर थोड़ा सा नमी, अभी आप देख रहे हैं ना बारिश हल्का हल्का हो जा रहा है,
1: जी जी,
0: है ना, तो इस तरह का नमी अगर आपको मिलता है तो ढैंचा को खेत में ऐसी छींट दीजिए, जितना आपके पास है उसको छींट दीजिए खेत में
1: जी।
0: तो आप देखेंगे कि 10-15 एक महीना 40 दिन होते होते ढैंचा का फसल जो है कम से कम 1.5 फीट का 1 फीट का हो जाएगा, है ना
1: जी जी,
0: ढैंचा का फसल। और जब ये फसल तैयार हो गया तो जब आप धान का खेती करने जाएंगे उस समय जब आप पानी खेत में, आप तो रोक के रखे हैं पानी
1: जी,
0: तो पानी के साथ ढैंचा को उसी में जोत देना है।
1: अच्छा,
0: है ना, ढैंचा को मिट्टी के साथ पानी के साथ जोत देना है और उसको फिर वहां सड़ने छोड़ देना है, ठीक है। तो 1 सप्ताह 10 दिन में आप देखेंगे कि ढैंचा का जो फसल जो आप जो अपने मिट्टी में जोत दिए थे वो एक अच्छा खाद बन गया वहां पे
1: जी।
0: इससे ये फायदा होता है कि मिट्टी का संरचना भी काफी सुधर जाता है, मिट्टी में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ता है और मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। तो दो बातों का ध्यान जरूर रखें कि हरी खाद ढैंचा का प्रयोग करें, है ना, ये बहुत आसानी से हर जगह मिलता है और इसको लेके आप उसको खेत में जोत सकते हैं।
1: किसान भाई अतिरिक्त आय के लिए कौन सा कृषि संबंधित कार्य करें?
0: हाँ देखिए, ये भी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हम लोग को भी पता है कि देखिए किसान के खेत में अभी फसल नहीं है
1: जी,
0: है ना, अभी फसल नहीं है तो उनका जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, है ना, पैसा तो कुछ चाहिए कमाने के लिए। तो उसके लिए हम किसान भाई को ये सलाह देना चाहेंगे कि देखिए झारखंड सरकार का जो गांव में जो रोड होता है, है ना, और रोड के बगल में किसान का खेत होता है, ठीक है
1: जी,
0: और किसान का खेत और रोड के बीच में कुछ जमीन ऐसी होती है जिसको गैर मजरूआ जमीन बोलते हैं
1: जी जी,
0: है ना। तो उस जमीन पर अभी आदमी को चाहिए कि छोटा छोटा गड्ढा का निर्माण करें, है ना। तो गड्ढा का निर्माण जब करेंगे तो उसमें लागत लगेगा, पैसा लगेगा, है
1: जी।
0: तो किसान अगर उसमें जाकर के मेहनत करता है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा डेली मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ही पूछेंगे कि छोटा गड्ढा 4 फीट बाई 4 फीट का हम बनाने बोल रहे हैं, मान लीजिए एक गड्ढा, तो इसका क्या जरूरत है, इससे क्या फायदा है
1: जी।
0: तो इससे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप गांव में इस तरह का जहां जहां रोड है, आप जरा कल्पना करके देखिए, वहां वहां साइड में अगर आप दोनों साइड में इस तरह का छोटा छोटा गड्ढा बनाते चले जाते हैं गर्मी पर,
1: गर्मजुरुआ जमीन में,
0: और जब बरसात शुरू होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उस गड्ढे में पानी जमा होगा
1: जी,
0: जमा होगा ना, तो पानी तो आपके पास स्टोर करने का जगह मिल गया, जमा करके रखने का जगह मिल गया। अब जब झारखंड में आप देखते हैं कि फसल लगाने के बाद अपलैंड में धान लगा लिए और उसके बाद 15-20 दिन के बाद वहां पर सुखाड़ पड़ने लगता है, है ना
1: जी,
0: पानी नहीं रहता है। यहाँ अपलैंड धान की भी मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर अपलैंड धान जो है आप देखेंगे कि एक महीना का जब धान होता है तो उस समय वहाँ पानी का समस्या होने लगता है, अगर बीच में वर्षा रुक गई तो
1: जी।
0: तो उससे बचने के लिए ये जो गड्ढा हम बनाए हैं और यहाँ जो पानी जमा है, इस पानी को आप चाहें तो वहां पर अपने फसल को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परवेज आलम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को खरीफ के मौसम में खेत की तैयारी करने के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद और जोहार किसान भाइयों।
2: तो एक खन हमरे बहुत बढ़िया जानकारी कर ली कि खरीफ आवे से पहले खेत के हमरे कैसन तैयार करब से कर बारे में बतात रहे डॉक्टर परवेज आलम और बतियात रहे कृष्ण जीवन पौराणिक। तो बहन और भी कुछ जुगाड़ी है का?
3: हाँ, जुगाड़ी है दीदी।
2: हाँ,
3: चलिए एगो कृषि गीत सुनीला जे के गई है सुकुमार और संगीमन जे है खोरठा में।
4: भैया किसान

0: तो पूनम दीदी, एखन हमरे मन कृषि गीत सुनत रही सुकुमार और संगी मनकर गावल गीत, और इकरे संगे तो हमार खेती बारी कर तो बेरा सिरा थे। अब और करीला हमारी दुनिया, और हमारी दुनिया सब सुनोया भाई बहन मनकर स्वागत है।
1: तो बहन एखन देखब कि हमरे अपन गांव घर में रहीला, और कोनो घटना अगर घट जाते घर में तो हमारे रिश्तेदार मन तो आहबे कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमरे देखब कि कोनो भी अगर दुर्घटना हुई जाए, कोनो भी घटना घटना घट जाते घर में, तो हमरे सबसे पहले असरा करीला अपन ये अगल बगल के आस पड़ोस से मन के हमरे असरा करीला कि आओ कटिक मदद कर दे।
0: तांग नहीं दूर ला, लेकिन ये असरा करो दीदी, दूर को तुरंत तो नहीं आबो है। से ले हमरे उनके सब कर से बढ़िया रहे चाहिए, कहो असर तनी मनी तो होते रहेला, लेकिन उतना हो खीस नहीं रखे चाहिए। वो तो कभी भी देखो बात बात में

0: जाएला से ले अच्छा पड़ोसी सच्चा मित्र कहल जाएला।
1: से चलते अपन व्यवहार भी बढ़िया रखे हाँ। चाहिए जेकर से कि जे हमर पड़ोसी है अगल बगल घर वाला मन गांव घर के जे भी आदमी है अगर व्यवहार हमरे बढ़िया रखब
0: हाँ
1: तो बढ़िया से दोस्त भी बन बाए और बढ़िया पड़ोसी भी बन बाए और जरूरत पड़ी तो हमरे के मदद भी कर बाए। और देखो हमरे तो खेती हर आदमी मना ही हर समय तो जरूरत तो पड़ी है जाएला एक दूसरे के हाँ। और इसे में अगर हमरे दूसर के हम और ई भी आसरा करे ना कि खाली उमन से हमरे अपन काम के निकला ले उमन के जरूरत पड़ले हमरे के भी उकर उमन के काम में मदद करे के तब तो उमन हमर काम में थी आबे और हमरे हो आसरा करब
0: हाँ
1: अदला कर बदला तो होबे
0: करे ला हाँ। तो देखो नी एखन कर समय में तो बागरा मतलब निकला के लिए कर खातिर बहुते कोई मिल जाए ना कहो नहीं लेकिन मुदा समय से अपन काम जे आवे ना वही सच्चा मित्र होए ना सब भाई बहन मित्र बदल सके ना मुदा पड़ोसी के नहीं बदल सके ना
1: एकदम एकदम रौरे सही कहा थी।
0: और हर आदमी मन के देखो अपन पड़ोसी मन संगे बढ़िया संबंध रखे खातिर भल करे है दरकार है कहे कि तकलीफ में मुसीबत में बीमारी में दुर्घटना होला चाहे कोनवे अथी में दुख सुख होल से अपन पड़ोसी मन साथ देवे ना दीदी से ले पड़ोसी है जे मन जल्दी पहुँच पा रहे हैं
1: और जे हमार रिश्तेदार हैं से मन भी हमार अपने हैं
0: हाँ,
1: लेकिन अगर तत्काल में अगर कोनो दुर्घटना हो जाते तो वो बेरा तो हमरे एकदम तुरते तो उमन नहीं पहुंच पार
0: पाए
1: का लगिन कि उमन के खबर जाई तब खबर पहुंची तब उमन हुआ से दूसर जगह से आवे तब तक तो बहुत देर हो चुके और उस समय में हमरे देखी ला कि पड़ोसी मन के बहुत बड़ा योगदान रहेला और बहुत कुछ उकर में हमार परिवार लगिन बढ़िया होवेला
0: हाँ।
1: तो अपन व्यवहार के भी हमरे के बढ़िया रखे है और जगर से पड़ोसी भी बढ़िया बन पाए
0: हाँ पड़ोसी मन बढ़िया है दीदी तबे तो हमरो से आसरा करे ना ओहो मन से आसरा करे को ना छोड़ के छुआ मन के छोड़ के जा भल हो बढ़िया देख ले
1: एकदम एकदम और पड़ोसी ऐसे है कि रोरे एकदम सही बात के कहली
0: हाँ।
1: कि छुआ पुता मन के भी हमरे तो काम लगी नहीं हुने जा तो
0: हाँ।
1: हर समय डोरिया के लेके भी नहीं पारल तो सेखन हमरे का करेला कि छुआ पुता मन के भी दूसरा के भरोसा अगर छोड़ देली तो ओहो मन देख देन ओहो मन देख दे अगर घर यहाँ है तो और छुआ मन अगर हिने हुने जात है और गांव घर में तो हमरे देखी ला कि थी पोखरा है तो फिर डोभा है तो कहाँ नदी नाला जे कुछ भी
0: हाँ।
1: तो उस समय में उमन भी देखे ना कि छुआ कने जाते कने नहीं ओह मन टोक बाए और छगरी पटरू चराए गाय छगरी ओहो मन में मदद भेटायला सब
0: हाँ।
1: मिल जुल के थी छगरी गोरू चराए लगिन
0: बढ़िया
1: लगे ला और एकरा एकला चराए के में कितना दिक्कत है
0: हुने
1: कुदा
0: हीने कुदा
1: और छगरी अगर है तब तो और भी दिक्कत है। तो बहन बातचीत तो हमार होते रही तो हमरे गोटे गीत फिर सुन लेती तले का और गुठिया पंच परगनिया लोक गीत है सुभाष कोयरी और संगी बनकर गावल गीत है।

0: तो एखन हमरे बहुत बढ़िया गीत सुनली पंच परगनिया में रहे सुभाष कोयरी और संगी मनकर गावल गीत रहे। और बहिन और भी कुछ जानकारी देखे तो रोरे बताए दे।
1: हाँ दीदी, एगो जानकारी है खोरठा में खोरठा नाटककार और उनकर कृतियाँ तो वार्ताकार हैं महेंद्र नाथ गोस्वामी। चलो तब सुनील।
2: नाटक माने दृश्य कैब के संगे अखरा रंगमंच के जोरनार शुरुआती समय से ही है और नाट्य साहित्य के संगे विकास कर एक दहरे छैब सवांग किलवी माने अभिनय एगो खास कला लगे। कहल जाए जे भाषा के गद्य साहित्य जितना मजबूत जितना समृद्ध रहे ओकर से उ समाज उतने विकसित होवे। खोठा साहित्य में गीते कोनो कमी नहीं है, एक पद साहित्य के भंडार भरल है, लेकिन हमने अपन रोज दिने के कामे काजे बोली व्यवहार पद के व्यवहार तो करे नहीं पा रहा हूँ, एकर लेल तो गद्य करे दरकार है। गद्य के बिना हमने कोनो कामे नहीं हो पा रहे और ई बात सुधे हमने खोठा भाषी करे खातिर नहीं लेकिन संसार के सभी लोग के खातिर लागू होवे। ई लखे खोठा के गद्य साहित्य के मामूली नहीं कहा जा पा रहे मिन्तु गद्य साहित्य कर लेता रहे, एकर में लिखित रूप में नाट्य साहित्य उतना लिखाई ना है, सेले खोरठा के नाट्य लेखन और मंचन में कमी खटके है। असल में संसार में दो लखे संस्कृति देखा है, एक दो एकदम मनगढ़ुआ और दूसर एकदम आया वास्तविक सांच रूपे, माने आया वास्तविक और सांच रूपे खोरठा साहित्य के दूसर लखे संस्कृति देखा है। खोरठा क्षेत्र के पुरखोती कला सबके देते रहे, बहुत तरह के कला है। एक में छौ नाच लखे नाच नाटक लगे जेकर में मुखोटा पिन के बिना बजकले बोलले कहानी के सवांग करवैया कलाकार अपन गाते हाव भाव और अभिनय के किलवी रूपे देखवत। जेकर में स्त्री जात के पाठ भूमिका टाहो पुरुष जाते ही करो, एकर में सुधे वाचिक परंपरा माने बोले बजे छोड़ के बाकी सभे आंगिक सुचार आहार के माध्यम से कथा के विषय वस्तु के पात्र सवांग के जीयत कर दिया। एक संगे खोरठा में नाटक के छोट रूप झारखंड में अंग्रेजी राज्य के आगू से ही राजा रजोटिया जमींदार के समय से ही मौजूद है। सही समय जमींदार सब में नचनी राखे चलन हलै जे उखनिक अपन दरबार के अखराई नाच गायके लोग मनोरंजन करो हली और सही समय नाचेत नाचेत थक

0: पूनम ए पूनम दीदी एखन तो और गोठिया सोचत रही गीत करवा लेकिन देखो नी बेरा तो कहेला कि इतने गोठिया
1: आप चलक चाहिए है नी
0: और दिन भेटाओ तो वे कहो नी
1: हाँ हाँ
0: तो जाते जाते बताई देव थी कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल
1: तो बहिन का कहा थी चलक चाहिए
0: चलक चाहिए
1: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी और हमारी दुनिया। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।
1: तीन महीने में पैसे डबल,
2: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
1: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
3: और कल होगा भी नहीं।
1: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
1: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
3: और फास्ट रिटर्न से बच के
1: और फास्ट बॉलिंग से भी।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा। सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की यात्री
9: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
9: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
9: तेरी वैसा है ना
2: बुद्धू, सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
9: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में बढ़ी है पारदर्शिता। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाडी में रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ हुए यौन शोषण का उठाया मुद्दा, की कार्रवाई की मांग। मौसम में बदलाव जारी, राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा लातेहार, वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। और धनबाद में आयोजित 5वीं झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची जिले के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि CBSE ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है।
1: CBSE ने वर्ष 2014 में OSM की शुरुआत किया था और इसको हम लोगों ने इस वर्ष रीइंट्रोड्यूस किया है। OSM विश्व में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा ये किया जा रहा है और ये एक नॉर्म है जो विदेशों में भी बन गया है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली तरीके से कर पाने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं।
0: सिमडेगा के महुआबुआंग थाना में पदस्थापित एक जवान की अपने ही हथियार से गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं रांची जिले के तिरगा गांव में के रहने वाले थे। घटना उस वक्त की हुई जब जवान अपने हथियार की सफाई कर रहे थे। जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटनावश गोली चलने का प्रतीत हो रहा है।
2: महाबोन थाना से अपना प्राप्त हुई कि इसमें आरक्षी राजू तिरपिन में प्रतियुक्त उनके अपने हथियार से गोली लगने के कारण मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल कार्य का मामला सामने आ रहा है।
0: रांची और आसपास के इलाकों में अपराध का अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस ने कल रात बड़ा अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर जिले भर में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक साथ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 220 से ज्यादा लंबित वारंटों का निष्पादन भी किया गया। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस टीमों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर फरार अपराधियों, वारंटियों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गढ़वा में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य आज से शुरू हो गया है। गढ़वा के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि कर्मचारी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं तथा परिवारों से आवश्यक जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां की गई। राज्य में संचालित केंद्र सरकार की नल जल योजना पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई।

0: है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर नल जल योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना के लिए सरकार के पास खजाने में 7,000 करोड़ पड़े हुए हैं, लेकिन खर्च नहीं किए जा रहे हैं।
1: नल जल योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, सारे देश के सारे राज्यों में योजना बहुत अच्छे प्रकार से प्रत्येक घरों के दरवाजे तक पहुंची है, लेकिन झारखंड में योजनाएं फिजडी साबित हुई है। आज भी सरकार के खजाने में 7,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो उस पैसे को खर्च करने की इनमें मादा नहीं है। और जो पैसे खर्च किए गए हैं इस योजना में, उस पैसे को भी भ्रष्टाचार के आखंड में डुबाने का काम किया।
0: इस मामले में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को भीख नहीं दे रही है, यह हमारा अधिकार है।
2: जल नल योजना किसकी है? केंद्र की है। केंद्र अपनी राशि दे रही है, राज्य सरकार अपनी राशि दे रही है, और राज्य की ये परेशानी है कि जब तक केंद्र अपना आवंटन नहीं करता, राज्य अपने हिस्से का पैसा उस प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकता है। और कोई हम लोग किसी से भीख तो नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। केंद्र हम लोगों पर कोई मेहरबानी नहीं कर रही, लेकिन जो एक भ्रम फैलाने का ये लोग प्रयास करते हैं।
0: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ पिछले दिनों चाईबासा परिसदन में जिला प्रशासन की ओर से किए गए कथित उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज सोशल मीडिया पर कहा है कि किसी का पद स्थायी नहीं होता, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा हर हाल में कायम रहनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अर्जुन मुंडा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, वह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं, प्रशासनिक मर्यादाओं और जनजातीय समाज के सम्मान का भी विषय है। श्री साहू ने आगे कहा कि इसके पहले चाईबासा उपायुक्त की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा के साथ भी असम्मानजनक व्यवहार किया जा चुका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वारड़े स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी पूछ सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक के द्वारा यौन शोषण और गर्भवती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेल IG मामले को दबाने, फाइलें गायब करने और सबूत मिटाने के लिए महिला कैदी को गुप्त स्थानों व अस्पतालों में ले जा रहे हैं, जबकि गवाह कर्मियों का तबादला कर उन्हें चुप कराया जा रहा है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारियों को बर्खास्त कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि सरकार भी इस कृत्य में शामिल है। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और उच्चतम न्यायालय से संज्ञान लेकर झारखंड की जेलों में महिला कैदियों के उत्पीड़न पर कार्रवाई की मांग की है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसका निर्माण प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के मिशन अंतर्गत किया गया है। मौके पर सांसद ने कहा कि इस रेलवे ओवरब्रिज के चालू होने से देवघर से एम्स और रांची की दूरी कम होगी। वहीं लोगों ने इस कार्य के लिए रेल मंत्री वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। झारखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पिछले 15 दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में हो रही बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। आज राज्य का सबसे ठंडा जिला लातेहार रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची समेत कई जिलों में बीते दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। लोहरदगा जिला के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर लोहरदगा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर खेल कूद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। जमशेदपुर में आयोजित झारखंड राज्य कबड्डी संघ की विशेष बैठक में वर्ष 2026-2030 के लिए नए कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। महासचिव संजय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जून के द्वितीय सप्ताह में चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। बैठक में सभी जिला कबड्डी संघों को 31 मई तक अपनी बैठकों का आयोजन कर वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा राज्य संघ को सौंपने का निर्देश दिया गया। वहीं वर्ष 2026-27 के खेल कैलेंडर को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई और सीनियर राज्य कबड्डी प्रतियोगिता 4 जून से धनबाद में आयोजित करने का फैसला किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में बढ़ी है पारदर्शिता। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ हुए यौन शोषण का उठाया मुद्दा, की कार्रवाई की मांग। मौसम में बदलाव जारी, राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा लातेहार, वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। और धनबाद में आयोजित 5वीं झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची जिले के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी रांची है, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
4: जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
1: झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा इस वर्ष आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिमडेगा जिले के टॉप 10 विद्यार्थियों को उपायुक्त कंचन सिंह ने अपने आवासीय परिसर में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि
2: 12th के एग्जाम में सिमडेगा के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, विशेषकर से वाणिज्य और कला के क्षेत्र में जो बच्चे थे उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। और वाणिज्य में तो हमारे ही जिले का एक बच्चा स्टेट टॉपर भी है, तो उनको सम्मानित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देने के लिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के जो टॉपर्स बच्चे थे उनको आज मैंने अपने आवास पर बुलाया था ताकि उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर सकूँ, उनके भविष्य के लिए मोटिवेट कर सकूँ और उनकी अगर कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान कैसे प्रशासन कर सकता है इसके बारे में जान सकते। हर पंचायत भवन में एक ज्ञान केंद्र है जिसमें कि काफ़ी संख्या में पुस्तकें हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है और उसकी सुविधा का लाभ बच्चे उठा सकते हैं, न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बल्कि सामान्य रूप से भी अगर उनको घर में पढ़ने का माहौल नहीं है तो वहाँ पर उनको एक बेहतर माहौल मिलेगा, फिर पढ़ाई कर सकते।
1: सिमडेगा नगर परिषद के अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा ने नगर परिषद क्षेत्र में सभी आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है। नगर परिषद की एक बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि
3: नगर परिषद एरिया है, उस एरिया में जितना स्कूलें हैं विद्यार्थियों के लिए भी कुछ हम लोग प्रोग्राम लाए हैं, एक्टिविटीज लाए हैं जो कि ये सिमडेगा नगर परिषद के लिए पहला मतलब ऐसा पहल है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में बोले चाहे वह खेल के क्षेत्र में बोले। ये हमारे बोर्ड की बैठक में

0: सर्वसम्मति से ये पारित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से खर्चों में कटौती को लेकर की गई अपील पर सिमडेगा वासी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए हमें पहले से ही सावधानी बरतने की जरूरत है।
2: देखिए, इस विषय में कहावत है, आग लगने से पहले कुआं कोड़ना चाहिए। तो ये कहावत जो है, हमारे मुखिया है प्रधानमंत्री जी, और वे पहले ही लोगों को हिदायत कर रहे हैं कि हमें जो है सो उपाय ये है कि वे जैसे घर के बजट को, घर का मुखिया जो है सो सोचता है कि हम किस प्रकार से घर को चलाएंगे, उसका पहले से ही व्यवस्था करने का उपाय सोचता है। इसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के चलते जो है हमारा खर्च में जो हो जाएगा, उस खर्च को बचाने के लिए, कटौती करने के लिए कह रहे हैं कि कुछ हमारे जो है सो इस प्रकार बचत करें। आज युद्ध हो रहा है, कब तक चलेगा कहना मुश्किल है, अपना बजट को बचा करके चले, आने वाला समय में हमें काम दे। इसीलिए इनका अपील बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए, इनको हमें अमल करना चाहिए।
1: सिमडेगा जिले में जनगणना 2027 के तहत प्रथम चरण में 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण एवं आवास संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
3: अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

प्रस्तुत है अगला प्रसारण शतदल, जिसमें आप सुनेंगे कविताएं और लघु कथाएं। प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की।

0: शतदल के आज के इस आयोजन में झारखंड के दो साहित्यकार नीरज नीर और रश्मि सिंह को हम सुनेंगे। नीरज नीर जहां कविताओं के माध्यम से प्रकृति, प्रेम और संबंध के विविध पक्षों को हमारे सामने रखेंगे, वहीं रश्मि सिंह लघु कथा के माध्यम से हाशिए पर परे लोगों की समस्याओं और छींचते जीवन मूल्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराएंगे। मित्रों, साहित्यकार सिर्फ स्वयं को नहीं जीता, संबंधों को जीता है। संबंध का यह धागा सिर्फ कुछ एक लोगों तक सीमित नहीं होता, बल्कि संपूर्ण मानवता को अंगीकार करता है। इससे भी आगे बढ़कर पेड़, पौधे, नदी, झील, पशु पक्षी के साथ भी वह अपने संबंधों को आंदोलित होते हुए देखता है। इसलिए उसकी लेखनी में ये तमाम चीजें बरबस आपको देखने को मिलेंगे। कवि नीरज नीर की रचनाएं भी संबंधों के इस राग से अभिसिंचित है। जंगल की उदासी को भांपते हुए ये कहते हैं, वसंत के मौसम में जब झील का पानी थिर हो जाता है, जाने क्यों मुझे घेर लेती है जंगल की उदासी, जहां पलाश के खिले फूलों के नीचे पसरा है भय। ठेकेदार के आदमी पलाश के फूल नहीं, उसके नीचे की जमीन देखते हैं। पिता की तुलना पुल से करते हुए कहते हैं, पुल गड़े होते हैं मजबूती से जमीन में, जिनके पायों के बीच से गुजर जाती है कठिनाइयों की कीच भरी नदी, मुश्किलों का गहराता हाहाकार करता पानी। विषमता से भरे समाज में स्त्री के लिए नमक का प्रतीक चुनते हुए कहते हैं, पुरुष चाहता है स्त्री नमक भर रहे, दिखे कहीं नहीं पर उसकी मौजूदगी बढ़ा दे जीवन का आस्वाद। तो आइए सुनते हैं कवि नीरज नीर की आवाज में ही उनकी कुछ कविताएं।
1: नमस्कार, मेरी पहली कविता है नमक भर औरत। पुरुष चाहता है स्त्री नमक भर रहे, दिखे कहीं नहीं पर उसकी मौजूदगी बढ़ा दे जीवन का आस्वाद। पुरुष चाहता है स्त्री रहे मौजूद, डफली की थाप में, रसोई की भाप में, बच्चों की हंसी में, आदमी की खुशी में, जीवन के राग में, यौवन की आग में, सौंदर्य में, रूप में, चांदनी में, धूप में, पर रहे उतनी ही जितनी जरूरी है, बस स्वादानुसार चुटकी भर। पुरुष चाहता है स्त्री रहे मौजूद, नृत्य और गीत में, जीवन में, प्रीत में, साफ सफाई में, बच्चों की पढ़ाई में, दिन में, रात में, परिवार की बात में, जीवन की जटिलता में, उसकी हर कुटिलता में, पर रहे उतनी ही जितनी जरूरी है, बस स्वादानुसार चुटकी भर। पुरुषों को लगता है जरा सी ज़्यादा होते ही स्त्री बिगाड़ देती है जीवन का स्वाद, जैसे जरा सा ज़्यादा नमक बिगाड़ देता है भोजन का स्वाद। दूसरी कविता का शीर्षक है मत हारो मन। मत हारो मन जब तक है जीवन, मत हारो मन जब तक है जीवन, आशाएं विगलित होती विखंडित योजनाएं, धैर्य के भग्न शिविर में रूठती हैं कामनाएं, फिर भी सच है जीवन जीवन के दोनों पार्ट, एक नदी सा बहता सुख दुख के छूते घाट, आशाओं के विपर्यय में रखो साहस रहो तन मत हारो मन। उत्साह अधूरे हर चाह बेमानी, अनुत्रित ही रह गए जीवन के प्रश्न मनमानी, तिर्यक यह संसार जीत पर अंत नहीं होता हरदम हर पल हर मौसम वसंत नहीं होता, सावन हो कि जेठ चलना है चले जब तक तन मत हारो मन। अगली कविता आपको जंगलों की ओर ले चलता हूं। शीर्षक है जंगलों में। बंद हुआ क्यों पंछियों का चहचहाना जंगलों में, बंद हुआ क्यों पंछियों का चहचहाना जंगलों में, मिट रहा है वन पखेरू का ठिकाना जंगलों में। हो गया तब्दील मौसम, हो गया तब्दील मौसम जेठ में मधुमास का, भूल गए हारिल के बच्चे मुस्कुराना जंगलों में, भूल गए हारिल के बच्चे मुस्कुराना जंगलों में। राजपथ को ताकते हैं वन्य जीव भयभीत से, राजपथ को ताकते हैं वन्य जीव भयभीत से, था कभी उनका निरापद आसियाना जंगलों में। गंध चंदन की सिमटकर रह गई पूजा घरों में, गंध चंदन की सिमटकर रह गई पूजा घरों में, सुन मशीनों का रहे हैं घर घराना जंगलों में, सुन मशीनों का रहे हैं घर घराना जंगलों में। नाव ठिठक कर रुक गई है नदी के मोड़ पर, नाव ठिठक कर रुक गई है नदी के मोड़ पर, चाहती है जिंदगी फिर लौट जाना जंगलों में, चाहती है जिंदगी फिर लौट जाना जंगलों में। बंद हुआ क्यों पंछियों का चहचहाना।

जंगलों में, मिट रहा है वन पखेरू का ठिकाना जंगलों में। एक और कविता जंगल से ही संबंधित, शीर्षक है जंगल की उदासी। वसंत के मौसम में जब झील का पानी थिर हो जाता है, जाने क्यों मुझे घेर लेती है जंगल की उदासी। जाने क्यों मुझे घेर लेती है जंगल की उदासी, जहां पलाश के खिले फूलों के बीच पसरा है भय। जहां पलाश के खिले फूलों के बीच पसरा है भय। ठेकेदार के आदमी पलाश के फूल नहीं, उसके नीचे की जमीन देखते हैं। ठेकेदार के आदमी पलाश के फूल नहीं, उसके नीचे की जमीन देखते हैं। मेरा मन एक गहरी झील है, मेरा मन एक गहरी झील है, जिसके पानी में चप्पू चलाता है एक बूढ़ा आदमी अपने कमजोर हाथों से। मैं झील से ले जाऊंगा एक अंजुरी जल, मैं झील से ले जाऊंगा एक अंजुरी जल, उस बूढ़े से मांग कर पलाश की जड़ों में डालने के लिए, पलाश की जड़ों में डालने के लिए। अगली कविता संबंधों की कविता है, शीर्षक है पिता पुल होते हैं। पुल गड़े होते हैं मजबूती से जमीन में, पुल गड़े होते हैं मजबूती से जमीन में, जिनके पायों के बीच से गुजर जाती है कठिनाइयों की कीच भरी नदी। मुश्किलों का गहराता हाहाकार करता पानी, मुश्किलों का गहराता हाहाकार करता पानी, ऊपर से चलकर निकल जाते हैं यात्री यात्रा में आगे निर्विघ्न निर्बाध गंतव्य की ओर, बिना मुड़कर पुल को देखे, बिना यह जाने कि पाए झेल रहे हैं पानी का कितना दबाव। पुल वहीं गड़ा होता है, पुल वहीं गड़ा होता है, वहीं खड़ा होता है, देखता है यात्रियों को जाते हुए, देखता है यात्रियों को जाते हुए। बच्चे भी पार कर लेते हैं कठिनाइयों की कीच भरी नदी, बच्चे भी पार कर लेते हैं कठिनाइयों की कीच भरी नदी, बिना कठिनाइयों को अनुभव किए और निकल जाते हैं आगे पीछे मुड़कर देखे बिना। पिता भी जाना चाहते हैं बच्चों के साथ, पिता भी जाना चाहते हैं बच्चों के साथ, चलना चाहते हैं कुछ कदम, पर पुल कभी यात्रियों के साथ आगे नहीं जाता, पर पुल कभी यात्रियों के साथ आगे नहीं जाता। एक कविता प्रेम से संबंधित, प्रेम की स्मृतियाँ। प्रेम की स्मृतियाँ किसी चौराहे पर अलाव सी सुलगती है, प्रेम की स्मृतियाँ किसी चौराहे पर अलाव सी सुलगती है, जहाँ प्रेम में हारा हुआ ठंड से कांपता आदमी सेकता है अपनी देह। स्मृतियाँ जब प्रेम के काम नहीं आती, स्मृतियाँ जब प्रेम के काम नहीं आती, जीवन के काम आती है। अगली कविता है मन का आईना। दिन छोड़ देता है अपनी अंगुलियों के निशान मन के आईने पर, दिन छोड़ देता है अपनी अंगुलियों के निशान मन के आईने पर, रात उसे घिस घिस कर साफ करती है और सुबह पकड़ा देती है एक चमकता हुआ आईना। रात उसे घिस घिस कर साफ करती है और सुबह पकड़ा देती है एक चमकता हुआ आईना मन का, जैसे काम पर जाते पति को पत्नी पकड़ाती है लंच बॉक्स। एक और छोटी सी कविता समय का घोड़ा। पीछे देखते हुए नहीं की जा सकती है घोड़े की सवारी, पीछे देखते हुए नहीं की जा सकती है घोड़े की सवारी। समय संसार का सबसे तेज भागने वाला घोड़ा है, समय संसार का सबसे तेज भागने वाला घोड़ा है, जो पीछे देखेगा गिर पड़ेगा, जो पीछे देखेगा गिर पड़ेगा,
परछाइयों के अंधियारे में।

0: उलझ कर, परछाइयों के अंधियारे में उलझ कर, समय की पीठ से कुचला जाएगा अतीत की टापों से।
1: साथियों, साहित्य की अंतर चेतना में कई धाराएं एक साथ बहती हैं। यह हमें जीवन के अप्रतिम सौंदर्य से परिचित कराता है, तो दूसरी ओर हाशिए के लोगों की अंतर कथा से भी जोड़ता है। आखिर मनुष्यता की बेहतरी का कोई भी स्वप्न अभावों कराहों के दलदल में खिल नहीं सकता। इसलिए शोषित वंचित तबकों की समस्याओं को संवेदनशील दृष्टि से देखना नितांत जरूरी है। इसे किसी वाद और पंथ के चश्मे से देखने की कोई जरूरत नहीं है। रश्मि सिंह जैसी रचनाकार उनकी समस्याओं को बिल्कुल निश्चल निगाह से देखती हैं और अपनी रचना का विषय बनाकर उसे विस्तृत फलक पर ले जाकर उन लोगों के सामने रखती हैं जो उन्हें देखकर भी कभी देख नहीं पाते। इसके साथ ही उन सामाजिक विकृतियों पर भी प्रहार करती हैं जो मिट तो नहीं रही बल्कि नया नया रूप धर रही हैं। महिला सशक्तिकरण को भी ये उस कोण से पकड़ती हैं जहां महिला अपने संघर्ष की राह का पत्थर हटाने के लिए दूसरे से मदद लेने की अपेक्षा खुद जूझना बेहतर समझती है। तो आइए सुनते हैं रश्मि सिंह की आवाज में ही उनकी कुछ लघु कथाएं।
2: मेरी पहली लघु कथा यक्ष प्रश्न। साहब कुछ दो ना, दो दिन से कुछ खाया नहीं। फटे हाल पर साफ सुथरे कपड़े में 10-12 साल के लड़के ने उस भद्र पुरुष से मिन्नतें करते हुए कहा, शर्म नहीं आती? अच्छा भला तंदुरुस्त है और भीख मांग रहा है? भद्र पुरुष ने घुटकी दी। शर्म से पेट नहीं ना भरता है साहब, कितना तो खोजे काम पर कोई देता ही नहीं है तो का करें। सच्चाई लड़के के चेहरे पर झलक रही थी। चल मैं दूंगा काम, चलेगा मेरे घर? छोटे मोटे कुछ काम होंगे और साथ साथ पढ़ाई की भी व्यवस्था कर दूंगा। भद्र पुरुष खुद पर गर्वित होता हुआ बोला, हम तो तैयार हैं, आप सोच लीजिए अच्छा से। आशा की किरण जुगनू सी चमकी उसकी आंखों में। सोचना क्या है, चल कहाँ है तेरे माँ बाप, बात करा मेरी उनसे, समझा दूंगा उनको। एक देव पुरुष सा दिखने लगा वह। मेरा कोई नहीं साहब, माँ तो कब्बे मर गई, बाप बहुते मारता था तो हम भाग आए। कहता था कि हिजड़ा है तू, मांग के ही खाना है तो अभी से मांग। उदासी की रेखा उभर आई लड़के के माथे पर। क्या तू हिजड़ा है, मतलब? देवत्व क्षण में कहीं गुम हो गया, सक पका गया वह भद्र पुरुष। हाँ तो बोलिए ना, चलें आपके साथ, जो करने बोलिएगा करेंगे। अंतिम आस कुछ अनुने सा दिखा उसके चेहरे पर, जो पल में विलुप्त हो गया। भद्र पुरुष बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। मेरी दूसरी लघु कथा छठ स्पेशल। अम्मा की साड़ी, बाबा की धोती, छुटकू की कमीज, मुन्नी के कुर्ते के अलावा 2-3 नए पुराने कपड़ों संग साल भर बाद मिलने की उम्मीद छोटे से सूट केस में डालकर चल पड़ा वह स्टेशन की ओर। इसी डिब्बे में सफर करने में जितने पैसे लगते उसी से तो घर भर के लिए कपड़े खरीदे थे उसने, ऊपर से रिजर्वेशन भी कहाँ मिलती। छप्पर छानने के लिए पहले ही कुछ बचाए हुए पैसे मनी ऑर्डर कर चुका था। अब कैसे भी जनरल बोगी में घुसने का मौका मिल जाए तो छठ मना ले वह सबके साथ। यही हसरत ले स्टेशन पर पहुंच गया वह। स्टेशन पर पहुंचकर वहां के नजारे में तो खो ही गया। इतनी भीड़ मानो पूरा शहर वहीं जमा हो गया हो। प्लेटफॉर्म पर बैठा एक के बाद एक चमकती ट्रेनों को आते जाते देखता, अपनी जैसी भीड़ के साथ अपनी वाली ट्रेन का इंतजार करने लगा वह भी। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकती सजे संवरे सभ्य सुसंस्कृत लोग खूबसूरत ट्रॉली बैग लिए आराम से चढ़ते और ट्रेन आगे निकल जाती। न धक्का मुक्की न दौड़ा दौड़ी, 2-3 ऐसी प्रीमियम ट्रेनें आकर गुजर गई। फिर भी प्लेटफॉर्म पर अब तक खचाखच भीड़ थी, पर यह भीड़ उतनी सभ्य न थी। उद्विग्नता, लाचारी, असहायता और अनिश्चितता के भाव हर किसी के चेहरे पर दिख रहे थे। साल भर संजोए पैसे से प्रियजन के लिए उपहार स्वरूप जरूरत की चीजें अपने कांधे पर समेटे अपनी अपनी ट्रेन के इंतजार में हर पल सजग थे वे सारे, क्योंकि वहां दौड़ लगाकर चढ़ने का और डब्बे में अपनी जगह बनाने का कायदा जो था। अंततः ट्रेन आई, पूरी भीड़ पागलों

0: सी दौड़ पड़ी उस ओर। कितने गिरे, कितने कितनों के द्वारा कुचले गए, कोई हिसाब नहीं। वह भी गिरता गिराता किसी तरह दाखिल हो ही गया एक डब्बे में और किसी तरह गुसलखाने के पास थोड़ी जगह भी पाने में सफल रहा। हर साल ऐसा करते करते उसे आदत जो हो गई थी। ट्रेन खुल गई, जाने कितने छूटे रह गए नीचे ही, छठ मनाने का ख्वाब संजोए, अगली वैसे ही खचाखच भरी एक और ट्रेन के इंतजार में। तभी एक और चमचमाती सुपर फास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। अनुशासित सभ्य यात्रीगण धीरे धीरे उस ओर बढ़ चले। तीसरी लघु कथा, रुतबे की कीमत। नमस्कार कुमार साहब, मैं अनुज का पिता रमेश बोल रहा हूँ। सोचा शादी की तैयारियों को लेकर आपसे सारी बातें खुलकर कर लूँ। लड़के के पिता ने लड़की के पिता को फोन पर कहा। बिल्कुल बिल्कुल, कहिए ना, बेटी के पिता ने तनिक हड़बड़ाते हुए कहा। ऐसा है कि बच्चों की मर्जी के आगे तो हम बड़े नतमस्तक हो गए, पर विवाह तो सामाजिक रुतबे और पारिवारिक मान्यताओं के अनुरूप ही होनी चाहिए ना। लड़के के पिता ने शेखी बघारी। जी जी बिल्कुल, आप खुलकर अपनी बात कहें। लड़की के पिता की पेशानी पर बल दिखा तनिक। ऐसा है कि हमारे कई एक मित्र और रिश्तेदार समाज के बेहद नामचीन लोग हैं, हमारा रुतबा भी आपको पता ही है, तो मैं चाहता हूँ कि शादी की भव्यता और बारातियों के मान आदर उनके स्टैंडर्ड के अनुरूप उपहार देकर उनकी ससम्मान विदाई का आप पूरा ध्यान रखें, ताकि मेरी जगह साई न हो। लड़के के पिता ने सहृदयता से फरमान सुना दिया। माफ कीजिएगा भाई साहब, मेरी बेटी और स्वयं मैं भी दहेज के किसी भी स्वरूप और अनावश्यक तड़क भड़क के बिल्कुल खिलाफ हैं। लड़की के पिता ने लड़के के पिता की उस छोटी सी डिमांड पर होने वाले अकूत खर्च का हिसाब लगाते हुए संवाद का पटाक्षेप कर दिया। अगली लघु कथा, जस्टिस डिलेड। आज फिर एक तारीख पड़ी रतनलाल और सोहनलाल के संपत्ति विवाद की। कोई गहमा गहमी नहीं, कोई उत्सुकता नहीं, बिल्कुल उबाऊ सा न्याय कक्ष, वही घड़ियाल, वही हथौड़ा, दोनों वकील भी वही, बस उन सबके बालों की चांदी मुकदमे की उम्र बयां कर रही थी। सामने बैठे थे वादी और प्रतिवादी, दोनों की झुकाई कमर, पिचके गाल और खाली खाली निस्तेज आंखें हमारी न्याय प्रणाली का ढोल पीटने में काफी थे। दोनों आजू बाजू निर्विकार बैठे जज के आने का इंतजार कर रहे थे। कार्यवाही शुरू हुई, फिर से पुराने किस्से उघड़े, साथ ही उभरा दोनों का दर्द भी। वर्षों की अदालती चक्कर एक एक कर हर तारीख पर छोटे और छोटे उनके खेत। अंततः फैसला आया, सत्य की जीत हुई, रतनलाल मुकदमा जीत गया, पर चेहरे पर हर्ष की एक लकीर नहीं, आंखों में बस एक राहत लिए दोनों साथ साथ ही धीरे धीरे लाठी टेकते बाहर निकल गए, उस न्याय के मंदिर से न्याय का बोझ झुके कंधों पर उठाए। पांचवी लघु कथा, स्वयं सिद्धा। आज फिर घर लौटते हुए शिवा के चेहरे की रंगत उसकी मनोदशा बयां कर रही थी। उस दृश्य की कल्पना से ही अब सिहरन होती थी उसे। एक हफ्ते से यही सब तो झेल रही थी वह। जैसे ही घर से पहली वाली गली से गुजरने को होती, चार लफंगे सड़क पर यूं खड़े होते कि मजबूरन लगभग उन्हें छूते हुए गुजरना पड़ता उसे। फिर आगे बढ़ते ही उन लड़कों के ठहाके और अश्लील फप्तियां कानों में पिघले शीशे से पड़ते। जिन्हें भी वो अपनी ये परेशानी बताती, सब उल्टा उसे ही इन बातों को नजरअंदाज करने की नसीहत देते, यह कहकर कि इन मवालियों से पंगा लेना ठीक नहीं। आज भी वही चार लफंगे वहां उसी तरह अड्डा जमाए हुए थे। जैसे ही वह उनके बगल से निकलने को हुई, एक ने धीरे से उसका दुपट्टा खींच दिया। रोज सहमी से चुपचाप निकल जाने वाली शिवा में आज जाने कौन सी शक्ति का संचार हुआ कि उसने आव देखा न ताव अपनी छतरी से ताबड़तोड़ उन पर वार करने लगी। शेखियां बघारते उन गुंडों को इस अप्रत्याशित हमले का तनिक भी अंदाजा न था। चारों उसकी मार से बचते बाइक घसीटते वहां से 9-2-11 हो गए। गहरी सांस लेती वो छतरी संभाले इत्मीनान से घर वाली गली में घुस गई।
1: इसी के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम शतदल का आज का यह आयोजन संपन्न होता है। आपको आज का यह आयोजन कैसा लगा, हमें ईमेल के जरिए जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है bolorachi@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार पुनः नोट कर लें, bolorachi@gmail.com। इस कार्यक्रम का संचालन किया प्रणव कुमार ने और प्रस्तुति प्रशांत गौरव की।

श्रोताओं, चलते चलते हम आपको बता दें, 7:45 पर आप सुनेंगे संताली समाचार पत्रिका। रात्रि 8 बजे का समय होगा फिल्म गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। 8:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी वेणियां।

रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में। 8:45 का समय होगा समाचार संध्या। 9:00 आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9। 9:15 पर उर्दू में समाचार।

रात्रि 9:31 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जो कि हमारे दिल्ली से प्रसारण होगा। रात्रि 10 बजे रविवार सरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, मुंबई के ए श्रेणी कलाकार विवेक सोनार का बांसुरी वादन।

रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर FM सभा जारी उद्घोषणा। सभा समाप्त, जारी उद्घोषणा।

Tuhan sikir dia. कुड़ी हपन जागे दराम रे केंद्र सरकार जोर गिरिडी कोडरमा सिंहभूम और पलामू रे वन स्टॉप सेंटर रिया स्वीकृति स्वास्थ्य सेवा लगिन कौड़ी रिया मंजूरी रांची रिया सीआईपी मना के आई मित साई स्थापन महा एल्युमिनियम मैट्रेस पहल पठुए को सेलेट हेना और सांताल साउते गोटा पुनोत रे सितुंग ते लोलोईना होय दा हुयुकान गया

अभी आपने सुना संताली समाचार पत्रिका, ये आकाशवाणी रांची है। अगला प्रसारण रजनीगंधा बस कुछ ही पलों में।

श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज बात करते हैं प्रेम के विषय में। प्रेम वो एहसास है जिसमें अपनापन बिना शर्त बहता है और किसी और की खुशी में हमें अपना जीवन भी सुंदर लगने लगता है।

याद उसकी हमें बेचैन कर जाती है, उसकी सूरत हमें हर ओर नज़र आती है। क्या कर दिया है हमें उनके प्यार ने, अब तो उसकी याद में

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, तेरे दिल में हूँ पर तेरे पास नहीं। झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, पर सच कहूँ तो तेरे सिवा कुछ नहीं है।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम रजनीगंधा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया।

0: नमस्कार श्रोताओ, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओ, आज फिर हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
0: श्रोताओ, हमारे भारत को युवा देश माना जाता है। हमें युवाओं को नशे से बचाकर युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में प्रयोग करना है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में अधिकतर युवा हैं नशे की गिरफ्त में हैं। श्रोताओ, नशा एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही स्वयं और परिवार की सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। जो कोई भी नशे के चंगुल में फंस गया वह स्वयं को बर्बाद होता ही है, इसके साथ ही उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। नशा करने वाले व्यक्ति का सबसे बुरा प्रभाव अपनी पत्नी और बच्चों पर पड़ता है। भारत के कई इलाकों में नशा करके औरतों के साथ बदतमीजी से बोलना, उनके साथ मारपीट करना जैसे आम सी बात है। नशा करने के बाद व्यक्ति को उनके व्यवहार का भी कोई होश नहीं रहता और नशा करने वाला व्यक्ति नशे का इतना आदी हो जाता है कि नशे का सेवन ही उसके लिए और उसके परिवार से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को सही समय पर रोकना, नशे की लत से बाहर लाने के लिए मदद करना अत्यंत आवश्यक है। अगर सही व्यक्तियों, परिवार, दोस्तों का सहयोग मिले तो नशे की लत से छूटा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर और देखते हैं नशे का क्या प्रभाव है और नशा हमें किस हद तक बर्बादी तक पहुंचा सकता है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है मेरी लत। रमेश एक दिन अपने काम से घर लौट रहा था, तभी उसे उसका पुराना जिगरी मित्र दिनेश एक दारू के ठेके के पास दिखता है।
2: अरे दिनेश, तू यहाँ? अरे कैसा है तू?
3: अरे रमेश, तू इतने समय बाद? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है?
2: अरे यार, मैं भी अच्छा हूँ, पर तू यहाँ शराब की दुकान के बाहर क्या कर रहा है?
3: कुछ नहीं, यह सब छोड़, चल तू मेरे घर चल, बैठकर बात करेंगे।
2: अरे नहीं नहीं यार, इस समय तेरे घर मेरे घर से निकलवाएगा क्या?
3: मतलब?
2: अरे तेरी भाभी मुझे घर से निकाल ही देगी।
3: तेरी शादी कब हुई?
2: बस यार, अभी 2 साल पहले।
3: सही है, बताया भी नहीं।
2: अरे यार माफ करना, कोशिश तो की थी पर तेरा नंबर या कुछ पता नहीं मिला।
3: चल कोई बात नहीं, अभी तू घर चल, आज लेट घर चले जाना।
2: चलो ठीक है।
3: अरे दिया, दरवाजा खोलो।
4: हाँ अभी आई।
3: ये देखो मेरे साथ कौन आया है, पहचाना तुमने?
4: रमेश भैया है ना।
3: अरे वाह, तुम कैसे पहचानी?
4: एक तो आपकी खुशी से, दूसरा पहले की कुछ फोटो देखे हैं तो बस अंदाजा लगा लिया। अब अंदर भी आ जाओ।
3: दिया जरा चाय नाश्ता बना दो।
4: हाँ अभी लाती हूँ।
3: और बता भाई कैसा है तू, और क्या कर रहा है आजकल, और पत्नी बच्चे कैसे हैं?
2: बस यार सब बढ़िया है, अभी कुछ 7-8 महीने पहले ही यहाँ के किसी पास के अस्पताल में नौकरी लगी, तब से बस यही कर रहा हूँ। हमेशा दूसरे रास्ते से घर जाता हूँ, लेकिन आज जब पहली बार यहाँ से निकला तो तुझे देखा और तू मिल गया।
3: हाँ यार, सच में मैं तुझे बहुत याद करता हूँ।
4: ये लीजिए, चाय नाश्ता तैयार है।
3: चाय पी ले, दिया चाय बहुत अच्छी।

0: आती है।
1: यार खुशबू तो अच्छी आ रही है। वाह वाकई में बहुत अच्छी चाय बनाई है भाभी। पर भाई अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे।
0: अरे इतनी जल्दी जा रहा है, खाना भी तो खाकर जाता।
1: नहीं नहीं भाई, खाने के लिए फिर कभी आऊंगा, बस अभी चलता हूँ।
0: ठीक है भाई।
1: अच्छा वैसे एक बात बता, तू जहाँ हम मिले थे वहाँ क्या कर रहा था?
0: अरे अरे कुछ नहीं यार, इन बातों को छोड़ तू।
1: सच बता दिनेश मुझे, डॉक्टर हूँ, पीने वाले को पहचान ही लेता हूँ।
0: ठीक है, कल मिल सकता है वहीं पर?
1: हाँ ठीक है, कल मिलते हैं।
0: दिया लाइट बंद कर दो, मैं सोने जा रहा हूँ।
2: अरे आपने खाना तो खाया ही नहीं।
0: मन नहीं है, तुम खा लो।
2: क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या, मुझे बताइए।
0: ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला उतना करो, समझी?
2: जी।
1: हाँ रमेश अब बता क्या हुआ।
0: क्या बताऊँ यार, नौकरी सही नहीं चल रही है। एक नया बॉस आया है, हमेशा कुछ ना कुछ करके सबको नौकरी से निकाल रहा है। मुझे भी वार्निंग दी है, तो बस अपना गम दूर करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ।
1: चाहे तू कुछ भी क्यों ना कर, पर यार शराब पीना किसी बात का समाधान नहीं है। और तू ऐसा कैसे कर सकता है यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
0: तो क्या करूँ यार?
1: अरे बस कर यार, उठ और कितना पिएगा, अभी घर जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ।
0: दिया, ओ दिया दरवाजा खोलो।
2: आज आप फिर से पीकर आए हो?
0: फिर से चबड़ चबड़ करने लगी तू?
2: मैंने क्या किया, मैं सही तो बोल रही हूँ, शराब पीना सेहत के लिए बहुत बुरा होता है।
0: चुप हो जा, ज्यादा मत बोल तू।
1: दिनेश, ओ दिनेश, अरे दरवाजा खोलो भाभी।
2: अरे रमेश भैया आप आइए आइए।
1: नमस्ते भाभी, ये मेरी पत्नी है रिया।
3: नमस्ते भाभी।
2: नमस्ते।
3: अरे भाभी ये आपके चेहरे पर क्या हो रहा है?
2: अरे अरे कुछ नहीं, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।
1: भाभी दिनेश कहाँ है?
2: वो तो अभी सो रहे हैं।
1: भाभी आप यहाँ बैठिए, ये दिनेश आजकल जो भी कर रहा है आप मुझे बताइए।
2: पता नहीं भैया इनको क्या हो गया है आजकल, पहले तो ये बहुत सही थे पर आजकल रोज रात को लेट आते हैं, रोज शराब पी कर आते हैं, मैं कुछ समझाती हूँ तो मुझे मारते हैं, पर अब घर में भी किसी चीज का उनको कोई होश नहीं रहता है, वैसे ही तनख्वाह बहुत कम है और अब तो जितनी आती है वो सब शराब में खत्म हो जाती है।
3: अरे अरे भाभी आप रोइए मत, शांत हो जाइए।
1: अरे अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ दिनेश से, मैं समझाता हूँ उसे। दिनेश उठ उठ, तुझसे बात करनी है।
0: अरे भाई तू सुबह सुबह यहाँ?
1: हाँ इधर आ बैठ। ये सब क्या चल रहा है यार, ये तू क्या कर रहा है, शराब पीकर अपना सब कुछ खराब करना चाहता है। तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है फिर भी तू उसकी परवाह नहीं करता, देख भाभी को, और तूने उन पर हाथ भी उठाया।
0: तो क्या करूं, घर आते ही शुरू हो जाती है, कुछ समझती नहीं है ये।
1: दिनेश शराब न पीने की ही तो बात कहती है, और कुछ तो नहीं कहा ना, तो मैं भी तुझसे वही कहता हूँ, तो तू मुझे भी मारेगा?
0: भाई अभी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे अच्छा लगता है शराब पीकर, मैं अपना गम भूल जाता हूँ, क्या गलत करता हूँ पीकर आता हूँ आकर सो जाता हूँ चुपचाप।
1: यही तो गलत है यार, जो भी बात है बता, मिलकर कुछ समाधान निकालेंगे, पर ये इस तरह से शराब पीना कोई समाधान नहीं है किसी चीज का।
0: भाई प्लीज अभी मैं कुछ समझने की कंडीशन में नहीं हूँ, बस अभी मुझे अकेला छोड़ दो।
1: ठीक है यार फिर हम चलते हैं।
2: अरे आप लोग चाय नाश्ता तो करके जाइए।
1: नहीं भाभी फिर कभी, अपना और दिनेश का ध्यान रखिए, और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए।
3: दिनेश भैया शराब की वजह से आपने, आपकी पत्नी, आपका घर परिवार सब मुश्किल में है, सबसे ज्यादा तो आप खुद, आप समय लीजिए और सोचिए और जल्दी से सही होकर हमें बुलाइए खाने पर।
0: जी भाभी जरूर।
1: ठीक है दिनेश चलते हैं।
0: मेरी बेइज्जती करके खुशी मिल गई होगी तुमको, अब बस कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो।
3: दिनेश परेशानियों व दफ्तर के खराब माहौल की वजह से पीना शुरू कर देता है और शराब

0: शराब पीने का आदि हो जाता है। दिनेश को उसके दोस्त, उसकी पत्नी सब समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं समझता। शराब का सेवन और बढ़ता जा रहा है। उसका व्यवहार दिन ब दिन बदतर होने लगता है। अब आगे।
1: दिया, ओ दिया।
2: बस भी कीजिए आप, और कितनी शराब पियेंगे, आपकी हालत खराब होती जा रही है।
3: हेलो भाभी।
2: हेलो
3: भाभी, आप रो रही हैं? सब ठीक तो है ना?
2: रिया, इन्होंने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया है। कुछ खाते पीते भी नहीं है सही से। अब तो इनको उल्टियाँ होने लगी हैं और ये बस दिन भर शराब पीते रहते हैं।
3: ओहो भाभी, मैं रमेश को कहती हूँ, वो जरूर कुछ करेंगे।
2: प्लीज रिया, एक बार जरूर बोलिए रमेश भैया को।
3: हाँ हाँ भाभी, आप परेशान मत हो, मैं अभी उनसे बात करती हूँ, रुकिए।
2: थैंक यू रिया।
1: दिया, ओ दिया।
2: अरे ये क्या हो गया, खून? अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, रमेश भैया को कॉल करती हूँ, वो डॉक्टर हैं, वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। हेलो रमेश भैया।
4: हेलो। हाँ भाभी। भाभी क्या हुआ, आप इतनी घबराई क्यों है? सब ठीक तो है ना?
2: नहीं भैया, दिनेश लगातार शराब पी रहे थे कुछ दिन से और उन्हें उल्टियाँ हो रही थी। आज तो उनको खून की उल्टी हो गई है और वो बेहोश हो गए हैं।
4: अरे भाभी आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ।
2: भैया दिनेश ठीक तो है ना?
4: हाँ भाभी, अभी तो वो ठीक हो गया है। ज्यादा शराब पीने की वजह से बस लीवर में थोड़ी सूजन हो गई थी, पर उसे दवाइयाँ और ड्रिप चढ़ा दी है, थोड़ी देर में उसे अब होश भी आ जाएगा।
2: थैंक यू सो मच भैया।
4: नहीं नहीं भाभी, थैंक यू मत कहिए, इसकी जरूरत नहीं है।
1: दिया, ओ दिया, ये मैं कहाँ हूँ?
4: अस्पताल में।
1: अरे रमेश तू?
4: हाँ मैं। देख दिनेश, डॉक्टर हूँ मैं, इसीलिए मरीज का इलाज करना मेरा फर्ज है, इसके सिवा मैं तुझे नहीं जानता।
1: तू ऐसे क्यों बोल रहा है यार?
4: ऐसे नहीं तो कैसे बोलूं? दोस्त तो है नहीं तू मेरा, अगर दोस्त होता तो एक दोस्त की बात मान लेता। कितना समझाया तुझे शराब मत पी, ये सिर्फ बर्बादी का रास्ता है, पर तुझे तो समझ ही नहीं आया।
3: और तू और शराब की लत में ऐसे फिर गए, अपने अपनी आप को भाभी का भी ध्यान नहीं रखा, क्या हालत हो गई देखो उनकी। और आपने उन पे हाथ भी उठाया? अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, उसके साथ मारपीट करना, ये तो सबसे ज्यादा बुरी बात है भैया।
1: दिया कहाँ है? दिया प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करूँगा।
4: नहीं दिनेश, हम सब तुझसे गुस्सा हैं।
3: हाँ, और अब तो हम भाभी को भी लेकर जा रहे हैं, आप जितना मर्जी चाहे शराब पी लो।
4: हाँ यार, अब तो मैंने तेरे लिए 3-4 कार्टून और मंगवा लिए हैं।
1: अब से मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो दिया।
2: थैंक यू सो मच रमेश भैया और रिया भाभी, आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की, और दिनेश बहुत लकी है कि उनको आपके जैसे समझदार और अच्छे दोस्त मिले हैं।
4: अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, ये तो मेरा फर्ज था।
0: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना आज की कहानी में, किस प्रकार तनाव में आकर दिनेश ने शराब पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वह शराब का आदि हो गया, और इसी लत की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी ने आपको जरूर प्रेरित किया होगा। कहानी से जुड़े विचार और सवाल आप हम तक शीघ्र से शीघ्र पहुँचाएं, उसके लिए हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है
5: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
0: और साथ ही आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। इसी के साथ श्रोताओ, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, तब तक के लिए मुझ राखी की तरफ से आप सभी को

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने पर। भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग लगातार बेहतर हो रहा है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत जी। अनिल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
1: आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि नीदरलैंड्स में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन ने क्या कहा है।
3: तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की नीदरलैंड्स की यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इस यात्रा में जो इसका कंटेंट था और जो इसके जो आउटकम थे, अगर सबको देखें तो इतनी रिच कंटेंट और इतनी बढ़िया बातचीत जो यहाँ के नेताओं से हुई है, इतनी अच्छी बात मुझे लगता है कि बहुत ही समय में ऐसी कभी नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो जब यहाँ के किंग से और क्वीन से उनकी बात हुई, उनके प्रधानमंत्री जी के आदर में उन्होंने एक लंच भी आयोजित किया वहाँ पे बहुत ही विस्तार से और कई विषयों को टच करते हुए बात हुई। और यहाँ के जो किंग और क्वीन हैं उन्होंने लंच में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया ताकि उनसे विस्तार से हर विषय को, जिसमें कि कला भी है और संस्कृति है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी है, यहाँ के कुछ कंपनी के काफ़ी बड़े सीईओ को बुलाया गया था और पूरा का माहौल जो था वो बहुत ही बढ़िया और काफ़ी इनफॉर्मल और ऐसा माहौल था जिसमें कि बहुत ही डिटेल में बात हो सकी उसमें। उसके बाद जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, उसके पहले दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए यहाँ पे। पहला तो ये हुआ कि जो चोला की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का रेस्टिट्यूशन, और इसके बारे में आपने सारी डिटेल देख ली होगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक तरह समझिए कि दोनों देशों के बीच में एक तरह से सांस्कृतिक संबंधों को एक और मजबूत तरीके से ले जाने का एक आधार खुल गया है बिना किसी कंडीशन के। और ये भी जानते हुए कि ये जो चोला की प्लेट्स हैं एक प्राइवेट कलेक्शन में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो लाइडन की है वहाँ पड़ी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने एक कमीशन को रेफर किया और उसकी प्रोवेनेंस तय करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे में हमें भारत को रिस्टिट्यूट करना है। और ये इसके बाद में ASI और लाइब्रेरी उनके बीच में आगे जा करके और रिसर्च करने के लिए और डेटा एक्सचेंज करने के लिए, मेटा डेटा बदलने के लिए, इन सब के ऊपर में काम करने का एक बहुत मजबूत आधार बन गया है। दूसरी चीज हुई कि ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में उन्होंने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अगर आप देखें कि ASML अपनी तरह की एक अनूठी कंपनी है और इस कंपनी की जो खासियत यह है कि वो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिन मशीनों को बनाने वाली कोई कंपनी दूसरी दुनिया में है ही नहीं, जिनसे कि सेमीकंडक्टर फैब बनती है। और ये हमारे यहाँ जो ढलेरा में प्लांट बन रहा है उसमें हमारी शुरुआत करने के लिए बहुत ही मजबूत आधार देगा। और यही नहीं बल्कि जो सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में एक बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है हमारे आने की। जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई उसमें भी कंटेंट बहुत ही रिच था और संबंध के सारे आयामों पे, इसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, डिफेंस है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, हेल्थ है, हर विषय पर बात हुई और साथ साथ विश्व में जो अभी आर्थिक स्थिति है वहाँ भी बात हुई। और इसके बाद आपने जो हमारी वेबसाइट पर देखा है कि एक बहुत ही लंबी लिस्ट निकली है सारे जो अग्रीमेंट्स कंक्लूड हुए हैं, और ये अग्रीमेंट्स आपको इनके जो रेंज है और इनकी जो डेप्थ है ये आपको एक आपको एहसास कराएगी कि जो वार्ता हुई और वार्ता की जो सफलता है वो कितनी गहरी है और कितनी व्यापक है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर में एक रात्रि भोज किया था, उसमें भी बहुत ही सहज माहौल था जिसमें दोनों देश के नेताओं ने आपस में, उन्होंने जो कि उनकी पहली मुलाकात थी फॉर्मल तरीके से, काफ़ी बढ़िया और क्लोज बात की, बहुत विषयों बात की। और यही नहीं इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और बाकी भी उच्च अधिकारी उनको भी मौका मिला अपनी अपनी बात करने का। और मुझको ये लगता है कि इससे हम दोनों देशों का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुई है, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको और कंटेंट को डेवलप करने के लिए

0: एक बहुत ही मजबूत हमारा एक आधार बन गया है। और कल एक हमारी प्रोग्राम का एक पार्ट और भी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, यहाँ आफ्सलाउ डाइक है जो कि वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और यह प्रोजेक्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो सीख है, इसके जो कुछ लेसन्स हैं, उस लेसन्स को हम लोग अपने यहाँ भारत में भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में हम लोग लगा पाए। और जिसमें से एक है कल्पसार, इस पर भी एक लेटर ऑफ इंटेंट पर इसमें भी एक समझौता हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसको भी हम लोग आगे ले जा पाएंगे। तो ओवरऑल मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये एक ट्रूली माइलस्टोन विजिट रही है प्रधानमंत्री जी की, और इससे हमारे दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिक टाइज एस्टैब्लिश होने वाले हैं। धन्यवाद
1: अनिल जी,
0: जी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को भारत यूरोप संबंधों और खासकर स्वीडन जैसे देशों के संदर्भ में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: देखिए, यूरोप हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनर रहा है। सब डेमोक्रेसीज हैं, भारत सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, और सबसे बड़ा देश है आज की डेट में, बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उन लोगों का भी एक इंटरेस्ट है। जहां तक हम लोगों का सवाल है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कई तरह की ब्लैक स्वान इवेंट साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोपियन देशों के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर हो रहा है। अब ये मिडल ईस्ट का जो ईरान यूएस इसराइल का वॉर है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और अभी तक पूरी तरह से पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था वो भी खत्म नहीं हुआ है, नई तरह के वायरस भी आने लगे हैं। तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हो, टेररिज्म के हो, इनोवेशन के हो, रिसर्च और डेवलपमेंट के हो, उन सब में हमारा यूरोप के साथ में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस वर्ष जैसा आपको पता है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, और इसी तरह से कुछ पांच देशों के साथ में यूरोपियन यूनियन के ही हैं, लेकिन उसमें अलग से भारत ने एक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उन दोनों के अंतर्गत हमारे जो दिशाएं हैं एक दूसरे के साथ काम करने की और भी ज्यादा प्रगतिशील होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट इस वक्त हो रही है वो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और अभी देखिए, स्वीडन और बल्कि चारों देश जो बाकी हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, ये जो पांच देश हैं, इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज के रूप से कहते हैं। तो प्रधानमंत्री इस बार स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं। आज वो स्वीडन पहुंचे हैं, नेदरलैंड्स में काफी अच्छी यात्रा रही वहां पर, जैसा कि आपने वहां के एम्बेसडर, जो हमारे एम्बेसडर हैं कुमार तुहिन, की बात से बताया, और प्रधानमंत्री ने भी कहा है। देखिए, वहां करके एक बात कही कि WAH, जैसे वाटर, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, और ग्रीन शिपिंग, ग्रीन कॉरिडोर, डिफेंस सिक्योरिटी में माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स, और हमारे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बार उन्होंने 11th सेंचुरी की जो चोला डायनेस्टी के टाइम की जो कॉपर प्लेट्स थी, इस पे काफी कुछ लिखा है, उनको उन्होंने वापस किया है, भारत को सौंप दिया, और एक रोड मैप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तैयार हुआ है, जिसके चलते और भी हमारे रिश्ते उनके साथ घनिष्ठ होंगे। अब स्वीडन एक ऐसा देश है जिससे मैं समझता हूँ 100 साल से ज्यादा पुरानी हमारी मित्रता है। 1922-23 में मैं समझता हूँ कि वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनी स्वीडिश मैच और ये सब भारत में आई थी, खासतौर से पुणे में एक जगह है जहां पर उनका पूरी सारी कंपनीज, चाहे वो अल्फा लवाल हो या स्वीडिश मैच हो, इन सब के ऑफिसेज और एस्टेब्लिशमेंट थे वहां पर। मुझे याद है जब मैं वहां स्वीडन में था तो एरिक्सन के जो CEO थे और एक वहां के ट्रेड मिनिस्टर थे लेफ पग्रोस्की, उन्होंने मुझसे कहा कि 95% जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर, 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, छोटे से देश हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, R&D के मामले में, और क्लाइमेट चेंज के मामले में हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए हो, उन सब ने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है दुनिया में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लोग इस बात पे करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में सबसे ज्यादा खुश देश माने जाते हैं दुनिया के अंदर, लीस्ट करप्शन माना जाता है वहां पे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, इतना बड़ा मार्केट, और वो लोग अब भारत की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। नॉर्वे में इस बार जो है ये इंडो नॉर्डिक जो समिट स्टार्ट हुई थी, उसका ये तीसरा एडिशन होगा। पहली बार स्वीडन में हुई, दूसरी बार डेनमार्क में, और तीसरी बार जो है यहाँ हो रही है। लेकिन ये समिट जो है ऐसे वक्त में है जबकि हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट का वॉर चल रहा है और

0: invece è Ham Pradhan Mantri Modi ji Norve me swagat hai.
1: अनिल जी, जैसे आपने पहले उल्लेख किया था व्यापार समझौते की बात है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो एफटीए है, ये दोनों पक्षों के भविष्य के आर्थिक संबंधों को आकार देने में अब आगे और कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है?
2: देखिए, जैसा आपको मालूम है कि लगभग 18 सालों से हमारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में डिस्कशन चल रहा था और मार्केट एक्सेस के कुछ बिंदुओं को लेकर के वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन चूंकि इस वर्ष में हुआ है तो एक बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा इस बारे में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक हमारा, अगर हम सबको एक साथ ट्रेड में रखें तो बायलैटरल तो है ही है, वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है ऑलमोस्ट, और टेक्नोलॉजी के रूप में भी हमारे जो भारतीय वहां पर काम करते हैं इतने सारे, और उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी कंपनीज हैं यहाँ पर, तो अब ये है कि सबको थोड़ा कहीं ना कहीं आजकल मार्केट चाहिए और मार्केट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो ये उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और ये एग्रीमेंट में दोनों साइड्स को फायदा होगा, लेकिन भारत की कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होगा जैसा पता लग रहा है। दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फ्री मूवमेंट मोबिलिटी का चांसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं भारत से बहुत ज्यादा होते हैं, खाली गुड्स का ही एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको हमें एक बड़ा मार्केट जो है जिसको कहते हैं कॉमन मार्केट, उसमें पूरी एक्सेस मिल जाएगी हमारी कंपनीज को। लेकिन ये बात सच है कि यूरोपियन यूनियन का जो ढांचा है और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि एक तरह से आपको एक एडवांटेज मिल गया है मार्केट एंट्री के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी भारतीय कंपनियों के लिए काफी अच्छा होगा। देखना पड़ेगा एक दो साल में कितना लाभ इससे होता है और कितनी हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ी है, लेकिन जो अभी तक के इंडिकेशंस हैं, ये दुनिया की जो समस्याएं हैं उस सब के बावजूद भी मैं समझता हूँ वो काफी आशाजनक है।
1: जी, और अंत में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि रणनीतिक हितों की दृष्टि से क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं?
2: देखिए, इसमें काफी सारे जो देश हैं जैसे फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है, यूरोप के खास देश और नॉर्डिक कंट्रीज जिसके स्वीडन नॉर्वे जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो लोग भी डिफेंस और सिक्योरिटी में, शिपिंग के अंदर, ग्रीन कॉरिडोर्स के अंदर में, ग्रीन शिपिंग के अंदर और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, फाइनेंस में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, रिन्यूएबल्स के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सारे आयाम आ जाते हैं, खाली मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं आती है, आजकल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इन सब में ये देश बहुत आगे हैं, और इसलिए उनके साथ जो कोलैबोरेशन है वो हमारे लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन रहेगा जिसमें दोनों साइड्स को बड़ा फायदा हो।
1: जी, तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज हमने भारत और यूरोप के बीच बदलते संबंधों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश की। अनिल त्रिगुनायत जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वरीशे

0: ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, इन तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
6: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को

गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में

0: एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोज़ा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फ़रोग देने और आबी वसायल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोदनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोदनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वजीर आजम वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वजीर आजम का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वजीर आजम मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़ीर-ए-आज़म की एक मुश्तरका खिताब है जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोदनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, एआई, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला वजीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में दो तिहाई से ज्यादा अक्सरियत हासिल की, तहां मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वजीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वी डी सतीशन कल केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वजरा भी हलफ लेंगे। नामजद वजीर आला वी डी सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वजरा की फेहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID के इख्तरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तरा और पेशेवराना तरक्की के मौजूं प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं।
3: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के दो दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मदर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले नव तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतअल्लिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लगने के वाकये की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीजन के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3 टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निजाम फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गया और ट्रेन खुद ब खुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डिब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाजों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदाम एयरलाइंस को जरूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फजाई सफर को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बुहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ्फुज़ से मुतअल्लिक कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गांवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नशीली अशिया पर काबू पाने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगना थांगकिंग तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी, खुफिया मालूमात में इजाफे, तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थांगकिंग तुआंग कई तरह की मनशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। ये केस NCB और मनशियात से मुतअल्लिक कानून नाफिज करने वाली कई एजेंसियों ने दर्ज की थी, जिसमें से NCB ने 2 केस दर्ज किए थे। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिल तजदीद तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगेई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सिफारतखाने ने मजीद बताया कि सिफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूरों की कैफियत दरियाफ्त की। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज आगे या पीछे होने की भी गुंजाइश है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के जनूब मशरकी बहीरे अरब के कुछ मजीद हिस्सों जनूब मगरबी और जनूब मशरकी खलीज बंगाल अंडमान जजायर और बहीरे अंडमान के बाकी हिस्सों और मशरकी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान हालात मुआफिक रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया गया है। बैडमिंटन में आज चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन क्वी युआन को सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने तो रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में ताबुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 माहदों पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
2: ये है मेरा कूपे। जूडिस का प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
3: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
2: कूपे में भी?
3: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
2: जी हाँ, 1 स्त्री और एक पुरुष।

0: दो ही होंगे इस कूपे में, अच्छा सफर कटेगा।
1: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
0: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
1: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
2: अच्छा, मैम साहब आ गई, आप तो कह रहे थे।
0: सुनो कलेक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको शांतना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
1: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल एक कॉफी।
2: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
0: और मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा, 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
1: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
0: ओके, लौट कर बातें होंगी।
1: ओके।
2: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
1: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची, कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही। ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
3: अच्छा, मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
1: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
3: मेरी शादी नहीं हुई है।
1: क्या?
3: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर हैं, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
1: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
3: कई वर्ष हो गए।
1: आपके बहुत मित्र हैं।
3: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ, उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
1: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, एलएसडी आदि का सेवन करती हो?
3: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
1: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
3: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उथार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
1: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज की शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे।

0: क्यों?
1: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है।
2: अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
0: ये मेरी डायरी है।
2: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
0: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
2: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
1: खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो।
2: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
0: सब काम पूछ कर ही करते हैं आप।
2: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
0: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
2: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
0: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
2: प्लीज, साथ देने के लिए एक पैक।
0: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
2: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊँ तो?
0: पीजिए।
2: बुरा मान गई। प्लीज, बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियाँ, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
0: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
2: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
0: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
2: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
0: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
2: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
0: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
2: नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
0: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
2: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times. लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। सर डिक भी तो यहीं था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
0: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
2: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक।

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कंस। प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adhiya. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was recorded

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख

0: डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honour that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honour for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defence, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Tiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah